सुप्रभात, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज मंगलवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। श्रोताओं, आज चंपकर मणि पिल्ले की पुण्यतिथि है। रेडियो आजाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है। जानकारी दे दें आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। सुबह 8 बजे सुनिए का कार्यक्रम वतन का राग, जो केंद्रित है चंपकर मणि पिल्लई पर। 8:30 बजे कार्यक्रम होगा प्रकृति की पुकार। आज का विषय मृदा। सुबह 9 बजे योग संवाद, विषय होगा योग वशिष्ठ धन संपत्ति का वास्तविक स्वरूप। इस विषय पर डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से सुनीता सिंह की बातचीत सुनिएगा।

का हमारा विशेष कार्यक्रम जो केंद्रित है नर्मदा एवं सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। सुबह 10 बजे रेडियो रिपोर्ट, आज सुनेगा संतवाणी समारोह के तीसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट। 10:30 बजे कार्यक्रम होगा आजाद हिंद जो केंद्रित है प्रीति लता वादेदार पर। 11 बजे स्वास्थ्य चर्चा, चर्चा का विषय आयुर्वेद में प्रकृति का स्वास्थ्य से संबंध। और 11:30 बजे सुनना भूलेगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक

थी जानकारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। एक अंतराल के बाद सुनेगा जीवन सौरभ।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।

0: स्वामी विवेकानंद रोज की तरह अपने पीतल के लोटे को मांज रहे थे। काफी देर तक लोटा मांजने के बाद जब वो उठे तो उनके एक शिष्य ने कहा, आप रोज रोज इतनी देर तक इस लोटे को मांजते हैं, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में एक बार या दो बार मांज लें तो भी काम चलाया जा सकता है, इससे इसकी चमक बहुत फीकी तो नहीं होगी। विवेकानंद ने कहा, बात तो सही ही कहते हो, रोज रोज 5-10 मिनट इसमें बर्बाद ही होते हैं। उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। कुछ दिनों में उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। कोई सप्ताह भर बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने उसी शिष्य को बुलाया और कहा, तुमने कहा था तो मैंने इसे मांजना छोड़ दिया था, अब आज तुम फुर्सत में हो तो इस लोटे को साफ कर दो। शिष्य ने हामी भरी और कुएं पर चला गया। बहुत देर लोटे को मांजने के बाद भी वो पहले वाली चमक नहीं ला सका। उसने बार बार बार बार प्रयास किया, तब जाकर लोटा कुछ चमका। शिष्य लोटे को लेकर स्वामी विवेकानंद के पास आया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, इस लोटे से सीखो, जब तक मैं इसे रोज मांजता था ये रोज चमकता रहा। तुमको इसकी रोज की चमक एक सी लगती होगी, लेकिन मैं देख पाता था कि मैं इसको जितना मांजता था ये उतना अधिक चमकता था। हर बार ये पहले से ज्यादा चमकदार हो जाता था। रोज न मांजने के कारण इसकी चमक जाती रही। ठीक ऐसे ही मनुष्य होता है, अगर वो अपने मन को रोज साफ न करे तो संसारी विचारों से उसका मन अपनी चमक खो देता है। ये प्रच्छालन तो रोज करना होता है।
1: जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर रान हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 124 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं उषा और छंद है त्रिष्टुप।
3: उषा उच्छन्ति समिधाने अग्ना उदंत सूर्य उर्विया ज्योतिरश्रेत देवो नो अत्र सविता न्वर्थम प्रसावीद द्विपत्र प्रचतुष्पदित्यै। अग्नि के प्रदीप्त होने पर देवी उषा अंधकार का नाश करती हैं और सूर्यदेव के समान अति तेजस्विता को धारण करती हैं। ये सूर्यदेव हमें उपयोगी धन तथा मनुष्यों और मनुष्येतर प्राणियों को जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करें, अर्थात देवी उषा के आने के बाद हम मनुष्यों, गौ, अश्वादि पशुओं के लिए आने जाने के रास्ते खुल जाएं। अमिनति दैव्यानि व्रतानि प्रमिनति मनुष्या युगानि ईयुषीणा मुपमा शश्वतीना मायतीनाम प्रथमोषा व्यद्यौत। ये देवी उषा अनुशासनात्मक नियमों का पालन करने वाली, मनुष्यों की आयु को लगातार कम करने वाली हैं। निरंतर आने वाली विगत उषाओं के अंत में तथा भविष्य में आने वाली उषाओं में यह सर्वप्रथम प्रकाशित होती हैं। एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी ज्योतिर्वसाना समना पुरस्ताद् ऋतस्य पंथा मन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति। स्वर्गलोक की कन्या रूपी ये देवी उषा प्रकाश रूप वस्त्र धारण करने वाली, श्रेष्ठ मन वाली तथा प्रतिदिन पूर्व दिशा से आती हुई दिखाई देती हैं। जिस प्रकार विदुषी नारी सत्य मार्ग से जाती हैं, उसी प्रकार दिशाओं में अवरोध न पहुंचाती हुई ये देवी उषा जाती हैं। उपो अदर्शी शुंध्युवो न वक्षो नोधा इवा विरकृत प्रियाणि अद्मसन्न ससतो बोधयन्ति शश्वत्तमागात पुनरेयुषीणाम। शुद्ध पवित्र वक्षस्थल के समान देवी उषा समीप से ही दिखाई देती हैं। नई वस्तुओं का निर्माण करने वाले के समान ही देवी उषा ने अपने किरण रूपी अवयवों को प्रकट किया है। जिस प्रकार गृहस्थ महिलाएं सोए हुए परिवारजनों को जगाती हैं, वैसे ही मनुष्य में आने वाली उषाओं में सर्वप्रथम ये देवी उषा दोबारा जगाने के लिए आ गई हैं। पूर्वे अर्धे रजसो अप्त्यस्य गवाम जनित्र्यकृत प्रकेतुम व्युप्रथते वितरम वरीय ओभा प्रणन्ति पित्रो रूपस्था। विस्तृत अंतरिक्ष लोक के पूर्व दिशा भाग में रश्मियों को उत्पन्न करने वाली देवी उषा ने प्रकाश रूपी ध्वजा को फहराया है। द्युलोक भूलोक रूपी माता पिता के पास रहकर दोनों लोकों को प्रकाश से परिपूर्ण करती हुई ये देवी उषा विशिष्ट तेजस्वी प्रकाश से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करती हैं। एवे देशा पुरुतमा दृशे कम ना जामिम न परि वृणक्ति जामिम अरेपसा तन्वा शाशदाना नार्भादीशते नमहो विभाति। विस्तृत होने वाली ये देवी उषा सुख व आनंद के लिए जिस प्रकार विरोधी का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार आत्मीय जनों को भी अपने प्रकाश से वंचित नहीं करती। प्रकाश रूपी निर्दोष शरीर से प्रकाशित होने वाली देवी उषा जिस प्रकार छोटे से दूर नहीं होती, उसी प्रकार बड़े का त्याग नहीं करती, अपितु छोटे बड़े का भेद किए बिना दोनों को प्रकाशित करती हैं। अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्ता रुगिव सनये धनानाम जायेव पत्य उशति सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सह। बिना भाई के बहन जिस प्रकार निराश्रित होने पर वापस अपने माता पिता के पास चली जाती है, अथवा जिस प्रकार कोई विधवा धन में हिस्सा पाने के लिए न्यायालय में जाती है, उसी प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके सूर्य रूप पति से मिलने की इच्छुक ये देवी उषा मुस्कराती हुई अपने किरण रूपी सौंदर्य को प्रकट करती हैं। स्वसा स्वस्रे ज्यायस्यै योनि मारै गपैत्यस्याः प्रति चक्ष्येव व्युच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्यांज्यंते समनगा इव व्राह। जिस प्रकार छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के लिए स्थान रिक्त कर देती है, वैसे ही रात्रि रूपी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन देवी उषा के लिए मानो अपने स्थान से हट जाती हैं। सूर्य देव की रश्मियों से अंधकार को हटाती हुई ये देवी उषा उत्सव में जाने वाली स्त्रियों की तरह अच्छी प्रकार चलने वाली किरण समूहों के समान अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। आसाम पूर्वा साम हसु स्वस्रिणा मपरा पूर्वा मभ्येति पश्चात ताह प्रत्नवन्न व्यसीर नूनमस्मे रेव दुच्छन्तु सुदिना उषासह। जो उषा रूपी बहिने पहले चली गई हैं, उन दिनों के बीच में अंतिम देवी उषा के पीछे से एक एक नवीन देवी उषा क्रम से आती हैं। वे उषाएं पूर्व की तरह नवीन दिन अर्थात नई उषाएं भी हमारे लिए निश्चित ही प्रचुर धनयुक्त श्रेष्ठ दिवस को प्रकाशित करती रहें। प्रबोधयोषः प्रणतो मघोन्य बुद्ध्यमानाः पणयः ससंतु रेवदुच्छ मगवद्भ्यो मघोनि रेवतस्तोत्रे सूनृते जारयंती। हे धनवती उषे, आप दाताओं को जगाएं, न जागने वाले लोभी व्यापारी सोते रहें। हे धनवती उषे, धनवानों के निमित्त धन देने के साथ यज्ञी भावना की प्रेरणा भी प्रदान करें। हे सुभाषिणी उषे, संपूर्ण प्राणियों की आयु कम करने वाली आप स्तोताओं के निमित्त अपार वैभव से युक्त होकर प्रकाशमान हो। अवेय मश्वै द्युवति ही पुरस्ताद् द्युङ्क्ते गवा मरुणा नामनीकम् वि नूनमुच्छादसति प्रकेतुर् गृहं गृहमुप तिष्ठाते अग्निः। तरुणी स्त्री के समान ये देवी उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित हो रही हैं। इन्होंने किरणों रूपी लाल वर्ण के अश्वों को अपने रथ में जोता हुआ है। ये देवी उषा निश्चित ही विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। उसके प्रकाश रूपी ध्वजारोहण के साथ ही घर घर में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है। उत्ते वयश्चिद्वसते रपप्त नरश्च ये पितुभाजौ व्यष्टौ अमासते वहसि भूरि वाममुषो देवी दाशुसे मर्त्याय। देवी उषा के प्रकाशित होते ही पक्षीगण अपना घोंसला त्याग देते हैं। मनुष्य भी अन्न की कामना के लिए प्रेरित होते हैं। देवी उषे, आप गृहस्थ जीवन में रहकर यज्ञ और दानदाता मनुष्य के लिए प्रचुर धन संपदा प्रदान करें। अस्तोढ्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे विवृधध्व मुषति रुषासः युष्माकं देवी रवसा सनेम सहस्रिणं च शतिनं च वाजम्। हे स्तुतियोग्य उषाओं, हमारे इस स्तवन से आपकी प्रार्थना संपन्न हो रही है। सभी उषाएं प्रगति की कामना से हम सभी प्रजाजनों को समृद्ध करें। हे देवत्व संपन्न उषाओं, आपके संरक्षण साधनों से हम सैकड़ों और हजारों प्रकार के धन धान्य से संपन्न सामर्थ्य शक्ति अर्जित करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 124 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओ, सर्दी गर्मी सुख दुख अमीर गरीब प्रेम द्वेष ये सब मनुष्य के लिए केवल स्पर्श मात्र होते हैं। जीवन में केवल वही सफलता प्राप्त करता है जो इन सब से विचलित हुए बिना आगे बढ़ता है।

श्रोताओं, हर समय प्रभु के नाम का जाप करने वाला स्वर्ग और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, बल्कि परमात्मा द्वारा बताए गए रास्ते पर बिना रुके चलने वाला मनुष्य ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है।

0: इसी भजन के साथ आज का भक्ति संगीत संपन्न करने की अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को। नमस्कार, आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई का।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

हम भारतवासियों के लिए भारत मात्र एक भूभाग नहीं है। हमारा भारत हमारी अनुभूतियों में धड़कता है, हमारी सांसों में बहता है। हमारा भारत हमारी आत्मा का संगीत है। यही कारण है कि देश से जुड़ी हमारी भावनाएं जब भी घनीभूत होती हैं, हम मुखर कंठ से कह उठते हैं जय हिंद। पराधीन भारत में जय हिंद का ये नारा हमारी आजादी का स्वप्न था। आज ये नारा विभिन्न अवसरों और राष्ट्रीय पर्वों में हमारे राष्ट्र प्रेम की चरम अभिव्यक्ति बन जाता है और हमारे वीर सैनिकों की जुबान पर जय हिंद का ये नारा दुश्मन के लिए ललकार बनकर सजता है। और माना जाता है कि जय हिंद के इस नारे को गढ़ने वाले वो महान देशभक्त थे चंपक रमन पिल्लई। उनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उनका अधिकांश जीवन जर्मनी में बीता। उनका नाम क्रांतिकारियों की उस सूची में आता है जिन्होंने विदेशी सरजमी पर रहकर भारत की आजादी के लिए सघन प्रयास किए। उन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत से ब्रिटिश राज की समाप्ति हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। चंपक रमन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर सन 1891 को भारत के तिरुअनंतपुरम में हुआ था। ये एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी पिल्लई और माताजी का नाम नागम्मल था। उनके पिता हालांकि तमिल थे लेकिन पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के कारण तिरुअनंतपुरम में ही आकर बस गए थे। थैकोट के मॉडल स्कूल से चंपक रमन पिल्लई ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और यहीं से हाई स्कूल की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनकी भेंट ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक सर वॉल्टर स्ट्रिकलैंड से हुई जो वनस्पतियों के नमूने लेने तिरुअनंतपुरम आया करते थे। ऐसे ही एक बार जब वो यहां आए तो उन्होंने चंपक रमन पिल्लई और उनके चचेरे भाई पद्मनाभा पिल्लई को अपने साथ आने को कहा और दोनों भाई उनके साथ हो लिए। हालांकि पद्मनाभा पिल्लई कोलंबो से ही लौट आए लेकिन चंपक रमन पिल्लई सर वॉल्टर स्ट्रिकलैंड के साथ यूरोप चले गए। ऑस्ट्रिया में सर वॉल्टर स्ट्रिकलैंड ने उनका दाखिला एक स्कूल में करवाया और स्कूली पढ़ाई के बाद चंपक रमन पिल्लई ने एक तकनीकी संस्थान में प्रवेश लिया ताकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकें। इस तरह तिरुअनंतपुरम में जन्मा एक जीवन नए फलक पर विस्तार पाने लगा क्योंकि उसे तो अपनी भारत भूमि के लिए बहुत कुछ करना था।

चंपकरमण पिल्लई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यंत प्रभावित थे तथा तिलक जी के विचारों ने ही उन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। यूरोप के अपने जीवन में वो इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में रहे। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। सितंबर सन 1914 में उन्होंने इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन किया। वो इसके अध्यक्ष हुए और ज्यूरिख में इसका मुख्यालय स्थापित किया। इसी समय के आसपास जर्मनी के बर्लिन शहर में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी नाम से प्रवासी भारतीयों का भी एक गुट तैयार हो रहा था, जिसमें वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, ए रमन पिल्लई, तारक नाथ दास, मौलवी बरकतुल्ला और वीरेंद्र सरकार जैसे देशभक्त शामिल थे। अक्टूबर सन 1914 में चंपक रमन पिल्लई बर्लिन गए और वहां इस बर्लिन कमेटी से जुड़ गए। उन्होंने मजबूती के साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य से बर्लिन कमेटी को अपनी प्रो इंडिया कमेटी के साथ जोड़ दिया। ये कमेटी यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखती हुई भारत की आजादी के लिए सक्रिय हो गई। लाला हरदयाल भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। थोड़े ही समय में इस इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की शाखाएं एम्स्टर्डम, स्टॉकहोम, वॉशिंगटन के साथ ही यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में स्थापित हो गईं। भारत की स्वाधीनता हेतु अनेक प्रयास आरंभ हुए और ये विचार हुआ कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध का ये समय है और ब्रिटिश साम्राज्य कुछ कठिनाइयों में नजर आ रहा है, तो ऐसे समय में क्यों न रणनीतिक चाल चली जाए, विदेशी मदद से भारत की आजादी का प्रयास किया जाए। उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन था जर्मनी। इस तरह जर्मनी की मदद से भारत की आजादी के प्रयास की योजना बनाई गई। गदर पार्टी और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी दोनों के इस प्रयास को अंग्रेजों ने हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से पुकारा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में जर्मनी को खुद भी साथियों की तलाश थी और बात बन गई। जर्मन फॉरेन ऑफिसर्स और भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर दिसंबर 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारत सरकार का गठन कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप इसके राष्ट्रपति हुए, मौलाना बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और चंपक रमन पिल्लई विदेश मंत्री बने। योजना बनी कि 20,000 तुर्क और जर्मन योद्धा काबुल पहुंचेंगे और ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे और इसके बाद गदर आंदोलन के साथी भारतीय फौज में विद्रोह करा देंगे। पूरे जोश के साथ योजना की तैयारी शुरू हो गई और सबके मन में भारत की आजादी का विश्वास बढ़ने लगा।

काबुल में भारत की अंतरिम सरकार में चंपक रमन पिल्लई की गतिविधियां पूरे जोश के साथ आरंभ हुई। इसी बीच समय ने करवट ली। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई और अंग्रेजों ने इन सभी क्रांतिकारियों को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद चंपक रमन पिल्लई यूरोप में ही रहे। वो एक टेक्नीशियन का काम करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे। इन सालों में उन्होंने जर्मनी और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिशें भी की। सन 1933 में वियना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी भेंट हुई और दोनों के बीच एक राष्ट्रीय सेना यानी नेशनल आर्मी के गठन की बात हुई। इस बीच चंपक रमन पिल्लई की पहुंच जर्मनी की सरकार के उच्चाधिकारियों तक बन गई। कुछ समय बाद वो जर्मनी की नेशनल पार्टी के सदस्य भी बने और हिटलर के उदय के साथ ही उन्होंने हिटलर से कामकाजी रिश्ते बनाने की कोशिश की ताकि भारत की आजादी में जर्मनी का सहयोग हासिल हो सके। ये ठीक वैसी ही कोशिश थी जैसी आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। लेकिन जैसे जैसे हिटलर की ताकत बढ़ रही थी उसके बयान भी तीखे होते जा रहे थे। हिटलर ने एक बार कह दिया कि भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और भारत इस बात का उदाहरण है कि एक गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये बात चंपक रमन पिल्लई को चुभ गई और उन्होंने हिटलर को एक पत्र लिखकर कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगे और माफी के लिए उन्होंने एक नियत तिथि भी तय कर दी थी। हिटलर का जवाब आया, माफी भी आई, लेकिन एक दिन देर से। और आगे के विवाद पर इतिहास अपनी तरह से चर्चा करता है, लेकिन ये घटना ये बताने के लिए और जता देने के लिए काफी थी कि चंपक रमन पिल्लई चाहे दुनिया के किसी भी भूभाग पर रहें, भारत उनके अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था, देश उनके लिए सर्वोच्च था। सन 1931 में मणिपुर की लक्ष्मीबाई से वो बर्लिन में मिले और दोनों का विवाह सम्पन्न हुआ। लेकिन विवाह के थोड़े ही समय बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। इलाज किया गया लेकिन दवाओं का असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से अंतिम समय में वचन लिया कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां भारत लाकर विसर्जित की जाएं। 28 मई सन 1934 को बर्लिन में उन्होंने अंतिम सांस ली। पत्नी ने अपना वचन निभाया। उनकी अस्थियां भारत लाई गईं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अस्थियां कन्याकुमारी में प्रवाहित कर दी गई। ये चंपक रमन पिल्लई की अंतिम इच्छा थी कि उनकी राख को उनके परिवार के मूल स्थान नंजिलनाडु कन्याकुमारी में छिड़का जाए। इस तरह भारत भूमि के लिए जीवन जीने वाला भारत माता का एक सच्चा सपूत भारत की मिट्टी में ही समा गया। नमन ऐसी महान विभूति को।

0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
4: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।
5: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे
6: डॉक्टर संजीव गर्ग जी से, जो कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
7: जी धन्यवाद।
6: सर, मिट्टी का जिक्र हो रहा है, सॉइल का जिक्र हो रहा है और हम सब मिट्टी ही के बने हैं, तो सबसे पहले सर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और किस तरह का आपका सफर रहा अब तक?
7: मैं एक कृषक परिवार और बिजनेसमैन परिवार में मैं जन्मा
6: जी,
7: और मैं मूलतः मुरैना जिला जो कहा जाता है और डाकुओं का क्षेत्र है उसमें मेरा जन्म हुआ
6: जी,
7: और वहाँ की मृदा बहुत ही जो चंबल का बैड जो बोला जाता है
6: जी,
7: उसमें पला। और मूलतः मेरा जो बैकग्राउंड था वो बिजनेस था, बट मैं कृषि से मैं थोड़ा बहुत जुड़ा, तो मैंने कृषि की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा ग्वालियर से हुआ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर से हुआ। उसके बाद मैंने PhD महात्मा गांधी चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय चित्रकूट से की
6: जी।
7: और उसके बाद मैंने विभिन्न जगह, मैं सबसे पहले मैं ब्यावरा राजगढ़ में भी रहा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद मैं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में 3 साल, फिर मैं CIE भोपाल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करौत भोपाल में भी रहा 5 साल, उसके बाद मैं इंदौर में भी 1 साल रहा, उसके बाद मैं यहाँ लास्ट 8 ईयर से मैं कृषि विज्ञान

0: के लिए सार्थक थे और 2002 में ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस ने भी इस तारीख को सिफारिश की
1: जी।
0: और दिसंबर 2013 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एफओनेस ने औपचारिक रूप से इसको मनाने का सेलिब्रेशन किया
1: जी, जी।
0: इस उद्देश्य मिट्टी के संरक्षण के लिए
1: जी,
0: मिट्टी के महत्व के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए, इसका चाहे कटाव हो चाहे पॉल्यूशन हो, सभी प्रकार से मिट्टी से बचाने के उसके उद्देश्य को मनाया जाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एफएओ इस दिवस को मनाने में इसकी क्या भूमिका रहती है?
0: एफएओ इसको मुख्य रूप से पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में इसको प्रमोट करती है कि इसको बचाया जाए और फूड के लिए, क्योंकि हमारा जो खाद्य है
1: जी
0: वो हमारी मिट्टी से ही आता है
1: जी।
0: जब तक हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, पूरे विश्व की मृदा पर ही पूरा मानव जीवन ह्यूमन हेल्थ है वो डिपेंड करती है
1: जी।
0: तो इसका फूड है वो मिट्टी से बचता है, मिट्टी से ही मिट्टी को खाते हैं। तो इसमें जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका अहम रोल रहता है और इसका सेलिब्रेशन के रूप में वो 2014 से पहला सेलिब्रेशन इसको 2014 में किया।
1: सर एक नारा भी है कि होल्ड सोइल इरोजन सेव आर फ्यूचर, तो इन नारों का क्या किस तरह से हमारी लाइफ में हमारे जीवन में महत्व है?
0: बिल्कुल, नारा विशेष रूप से अगर किसी को अवेयर करना है, जागरूक करना है, तो हम कोई ना कोई एक अभियान लेके चलते हैं
1: जी।
0: और अभियान में हम किसी न किसी को वर्ड को चुन के और वो एक नारे के रूप में, हम किसी को जागृत करना है तो हम एक नारा लेके चलते हैं
1: जी।
0: तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को अगर हमें मिट्टी के प्रति जागरूक करना है तो इस अभियान को लेके चलना पड़ेगा। हमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों का चयन करके जिससे लोग जागरूक हों, उनके मन में उसके प्रति जागरूकता आए
1: जी,
0: और एक रिश्ता बने मिट्टी से। क्योंकि लोग सिर्फ अभी अपनी लाइफ में कह पैसा है ना, आजीविका हमने मिट्टी को खेत को बना के किसान ने भी कर लिया है, पर धीरे धीरे इसके प्रति भी प्रेम करें
1: जी।
0: अभी देख रहे हैं कि सॉइल में बहुत सारी वर्निंग हो रही है
1: जी,
0: हैवी पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हैवी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो अनबैलेंस फर्टिलाइजर्स हो, इरोजन हो कहीं भी हमने सॉइल को किसी प्रकार से, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है
1: जी।
0: और नेचुरल रिसोर्स का अत्यधिक दोहन भी हो रहा है, हमने कई पहाड़ काट दिए, कई कुछ कर दिया
1: जी।
0: तो सॉइल को उसको बचाना बहुत ही अहम हमारा रोल है। जैसे हमें कुछ कैंपेनिंग लेके चलना पड़ेगा जिससे पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, हमारे भारत देश में
1: जी
0: के प्रति लोग जागरूक हो, चाहे वो शहर की पॉपुलेशन हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र
1: जी जी।
0: तो इसको ऐसे कुछ नारे हमको लेके चलना पड़ेगा जिससे हम लोगों को, किसानों को अवेयर।
1: अच्छा सर, सर एक बड़ा अहम सवाल यह है कि जो सॉइल पॉल्यूशन है उसको योगदान देने में कौन से प्रमुख जो कारक वो कौन कौन से हैं, और इसे रोकने में इंसान या व्यक्ति किस तरह से अपना योगदान दे सकता है?
0: सॉइल्स में हमारी चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक हो, अन्य बहुत सारे कारक हैं जो धीरे धीरे हमारे सॉइल्स को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स भी हो, क्योंकि हैवी पेस्टिसाइड और हैवी फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डालने से हमारी सॉइल कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड पॉल्यूशन हो रही है
1: जी,
0: दूषित हो रही है। दूषित होने का कारण है कि उसमें माइक्रोब्स की संख्या कम होना और हमारे जो न्यूट्रेंट हैं वो कम होना
1: जी, जी, जी।
0: प्लास्टिक का मिलना, प्लास्टिक पॉलिथिन, और कुछ एग्रीकल्चर ऐसी प्रैक्टिस भी हैं जो हम कहते हैं बैड प्रैक्टिस
1: जी, जी, जी।
0: उनके आने से भी हमारी जो सॉइल है, मृदा है, वो धीरे धीरे दूषित हो रही है। कुछ हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो हमने शहरों का कचरा लिया और हमने डाल दिया और उड़ के वो गाँव में आ गया
1: जी।
0: कुछ हमारी ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री भी है जो पॉलीथिन में बहुत सारा पैक करते हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र में आ जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में उसको फिर कहीं ना कहीं डालते हैं और वो पॉलीथिन हमारे खेतों में धीरे धीरे जा रही है
1: जी।
0: तो ऐसे कुछ प्लास्टिक है, कुछ इंडस्ट्रियल वेस्टेड मटेरियल है, शहरों का कचरा है, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनके कारण भी हमारी सॉइल जो है वो दूषित हो रही है
1: जी। किस तरह से रोका जा सकता है और एक लोग अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं जागरूकता के लिए और इसमें सुधार आ सके?
0: बिल्कुल, लोगों को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। कभी भी हमको अगर बाजार में, मार्केट में जाना है तो कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा हम कपड़े की पॉलिथिन, कागज की पॉलिथिन, इनका उपयोग करें
1: जी।
0: किसान भाइयों को भी ज्यादा से ज्यादा, जो गांव में हम शहर से कोई भी सामान ला रहे हैं तो कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का बैग्स या अन्य जो हमारे सॉइल को या हमारे जीवांश पदार्थ है, खाद है, विदेशी खाद है, उनको दूषित ना करें। जो हमारे घरों पर पता रहे वो पॉलिथिन जा रही है, तो किसान भाई भी मार्केट से जो सामान लेके आ रहे हैं उनको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कागज की पॉलिथिन, कपड़े की पॉलिथिन उसमें लाए। एक दूसरा काम कि हमको विशेष रूप से जो हमारी सॉइल्स को पॉलिनेट कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो उसमें प्लास्टिक सोडियम, उनको हम डीकम्पोज करें
1: जी,
0: है ना। और हम नगर निगम है, नगर पालिका है, इनमें हम जो है उसका सही सॉल्यूशन करें। ऐसा नहीं हमने उठा के जहाँ हमारा गोबर का इकट्ठा हो रहा है और वहीं हमने पॉलीथिन भी डाल दी, कांच भी डाल दिया और अन्य कोई भी सिस्टम वो भी डाल दिया जो डीकम्पोज हो ही नहीं सकता, या कई सालों में होते हैं, और वो हमने उठा के फिर खेतों में डाल दिया
1: जी,
0: नदियों में पानी में चला गया, वो जमीन में पहुंच गया कहीं दूसरी जगह, और हमने पानी दिया, कहीं कैनाल है, अन्य चीजें हैं, बहुत सारे हमने पेस्टिसाइड हैं जिसमें जीवांश पदार्थ या अन्य माइक्रोब्स को वो डैमेज कर रहे हैं, संख्या कम कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें भी हम नहीं स्प्रे करें, अवॉइड करें उनको। बहुत सारे फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डालने से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी खत्म हो रही है
1: जी,
0: तो ऐसे करके हमें इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, जहां तक कोशिश है वो करें
1: जी।
0: हमें कम से कम पॉलीथिन का और इनका तो हमें बिल्कुल करना ही पड़ेगा, एक ही जगह स्थान पर इकट्ठी करें और उसको हम डीकम्पोज करें, हमें घूरे पे या खेत पे कहीं, कोई बच्चे हैं बच्चों को भी हम अवेयर करें कि भाई गांव में तो किस अक्सर ये होता है बच्चे कुछ भी लाए
1: जी
0: और उन्होंने पॉलीथिन फाड़ी और वहीं फेंक दी
1: जी,
0: और वो उड़ के पता चला गांव के घूरे पे चली गई, घूरे से वो खेत में चली
1: जी,
0: तो इससे बहुत सारी हमारी जमीन में हमारी मृदा का बहुत दूषित हो रही है और बहुत सारी चीजें उसमें
1: जी। मतलब लोगों में जागरूकता जरूरी है और वहीं से शुरुआत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से ही हम अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं हमारी मृदा इससे बहुत दूषित हो रही है और ये हमें एक्टिस नहीं करना है, चाहे कोई भी किसी प्रकार की पॉलीथिन हो, प्लास्टिक हो, प्लास्टिक का कंटेनर हो, तो पता चले कि वहां हम नहीं डालें, ऐसा स्थान पर इसको इकट्ठा करें और किसी भी कबाड़े वाले को रिसाइकिल करें, रिसाइकिल की जगह जाए वो रिसाइकिल हो। गवर्नमेंट को भी इसमें फोकस करना चाहिए कि प्लास्टिक को रिसाइकिल ज्यादा से ज्यादा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में उसको रिसाइकिल करना चाहिए, पॉइंट बनाना चाहिए पंचायत स्तर पर, नगर परिषद स्तर पर, नगर निगम स्तर पर कि वहां वो प्लास्टिक को खरीदें,
1: धूलें,
0: प्लास्टिक पॉलीथिन है, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस करने की आवश्यकता है जिससे वो खेतों में और वहां ना जाए।
1: सही बात,
0: क्योंकि बहुत ज्यादा खेतों में पॉलीथिन अगर गई तो एक दिन हमारे मृदा बिल्कुल ही दूषित हो जाएगी।
1: सर एक सवाल और है कि सतत मृदा प्रबंधन पद्धतियां क्या हैं, जैसे न्यूनतम जुताई, फसल चक्र, जैविक पदार्थ जो होते हैं इनका उपयोग, और ये क्यों आवश्यक होते हैं?
0: बहुत सारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है फार्मर्स को
1: जी
0: वो गुड ही करना चाहिए, जिसे हमें जितनी जुताई की आवश्यकता है
1: जी,
0: हमें जिस क्रॉप के लिए कहें कि एक बार हमें कल्टीवेटर करना है तो एक बार ही करें। अधिक कल्टीवेशन करने से भी हमारी सॉइल कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है, डिस्टर्बेंस मतलब हम जितनी ज्यादा सॉइल को डिस्टर्बेंस करेंगे, जुताई करेंगे खेत उतना ही ज्यादा सॉइल महीन होगी।
1: अच्छा अच्छा,
0: उसकी पोर स्पोर कम होगी
1: जी,
0: जब पोर स्पोर कम होंगे तो हमारी मृदा जो हम कहें बहुत सिंपल भाषा में सीमेंट जैसी हो जाएगी
1: जी, जी, जी।
0: सीमेंट बहुत ही महीन होती है
1: जी,
0: और जब महीन कोई चीज होगी तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी
1: जी,
0: उसका ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं हमारी मृदा है वो अनफर्टिलिटाई होगी
1: जी,
0: है ना, उसकी उर्वरता शक्ति खोएगी, और अगर और ज्यादा महीन हुई तो हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की
1: जी
0: वो धीरे धीरे कम होगी, कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरा सीपेज जो नीचे हमारा वाटर जाता है वो नहीं जाएगा
1: जी,
0: और बाढ़ आने की स्थितियां बढ़ेंगी
1: जी जी जी।
0: तो हमें मृदा की जुताई, जितनी हमारी कोई क्रॉप है उसको कितनी आवश्यकता है
1: जी जी,
0: एक बार कल्टीवेटर चलाना है, दो बार चलाना है, तीन बार चलाना है, उतना ही एस पर अनुशंसित
1: जी,
0: ऐसा नहीं कि हमें तीन बार चला दिया खेत नहीं बना, और खेत की कंडीशंस क्या है
1: जी जी,
0: उसी के अनुसार हमारी किसान भाई खेतों में कल्टीवेटर चलाए
1: जी जी,
0: रोटावेटर चलाए या अन्य और कोई भी इम्प्लीमेंट है तो उस इम्प्लीमेंट को चलाए।
1: अच्छा,
0: बार बार नहीं चलाए, बार बार चलाने से हमारी मिट्टी
1: कहीं
0: ना कहीं बहुत महीन होती है और पोर अपनी फिजिकल जो होती है वो अपनी खोती है।
1: मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाते?
0: हम अगर बात करें बहुत ही सिंपल बात, अगर रेगिस्तान और हमारी जो फर्टाइल सॉइल है ना, बंजर भूमि और उर्वरक भूमि
1: जी,
0: अगर हम कहें कि बंजर भूमि क्या है
1: जी,
0: तो सिंपल भाषा में माइक्रोब्स और न्यूट्रेंट
1: जी,
0: जिस मृदा में सॉइल में माइक्रोब्स नहीं है
1: जी
0: और न्यूट्रेंट नहीं है, वो जमीन बंजर जमीन की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ। और जिस मृदा में हमारे माइक्रोब्स हैं
1: जी जी,
0: बेनिफिशियल सेल्स माइक्रोब्स हैं
1: जी,
0: और न्यूट्रेंट है
1: जी जी,
0: न्यूट्रेंट इज द ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, बोरॉन है
1: जी,
0: ये सब है, तो वो हमारी फर्टाइल सॉइल
1: जी जी जी,
0: और यही माइक्रोब्स उस न्यूट्रेंट को प्लांट को अवेलेबल करवाते।
1: अच्छा अच्छा जी।
0: तो प्लांट की ग्रोइंग के लिए
1: जी
0: अहम रोल माइक्रोब्स निभाते हैं
1: जी जी जी।
0: किसी भी क्रॉप के रेसिड्यू डिकम्पोज करने के लिए
1: जी
0: सबसे बड़ा रोल माइक्रोब्स का ही होता है
1: जी,
0: नहीं तो सालों वहां कुछ भी फसल का अवशेष पड़ा रहेगा, अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो उसको वो डिकम्पोज नहीं करेगा। तो मृदा की जीवित रखने के लिए सबसे अहम रोल माइक्रोब्स का और न्यूट्रिएंट्स का।
1: अच्छा अच्छा जी।
0: इतना बड़ा रोल है हमारी मिट्टी की, मिट्टी में माइक्रोब्स होने का। बोलते भी हैं एक चुटकी मिट्टी में, एक ग्राम मिट्टी में लाखों की संख्या में जीव होते हैं।
1: सही सही
0: है ना। तो बिल्कुल राइट बात है कि हमारी मिट्टी में जीव नहीं होंगे तो वो मिट्टी नहीं होगी।
1: सर अगर आप कोई सुनने वालों को उदाहरण दें, जो विश्व स्तर पर लागू किया गया कोई सफल मृदा संरक्षण का ऐसा अभ्यास हो, ताकि सुनने वाले और बेहतर तरीके से उसको समझ सके।
0: हम कहेंगे पूरे विश्व में
1: जी
0: हरी खाद
1: जी जी जी
0: का अगर उपयोग करें
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी
1: जी
0: जो है
1: जी
0: वो बिल्कुल उर्वरक होगी और उसमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी
1: जी जी जी,
0: हमारे किसान भाइयों के लिए उत्पादन में भी सहायक होगी
1: जी,
0: और अन्य अन्य असंख्य जो हमारे जीव जंतु हैं उसमें
1: जी
0: उनमें भी वो सहायक होगी
1: जी,
0: क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी मृदा अगर जीवित नहीं होगी तो बायोडाइवर्सिटी को भी सुरक्षित रखना बड़ा
1: जी जी जी जी।
0: तो विश्व स्तर पर अगर ग्रीन मैट्रियल का अगर उपयोग किया जाता है
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से ये बड़ा लाभकारी काम
1: जी होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी जिक्र होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड की ये जो योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए, ये किस प्रकार से सहायक रहती है?
0: मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड हेल्थ योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
1: जी,
0: भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है
1: जी।
0: आज वर्तमान में जो किसानों के लिए
1: जी
0: उनकी मृदा का स्टेटस कहें कि क्या हमारी सॉइल है
1: जी,
0: हम अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितनी है, सीबीसी कितना है, हमारी हाइट कितनी है
1: जी जी जी,
0: है ना, अन्य नाना प्रकार की हम जांच करा के और हम अपने बॉडी के लिए पता करते हैं। इसी प्रकार से सैम
1: जी
0: कि हमारी सॉइल में किस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए क्या है,
1: क्या
0: हमारी मृदा की स्थिति क्या है
1: जी,
0: उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है
1: जी,
0: उसकी भौतिक स्थिति कैसी है, रेत है, लॉमी है, सैंडी है, एल्यूवियल है
1: जी,
0: है ना, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसका पीएच कितना है, ईसी कितना है, नाइट्रोजन परसेंट कितना है उसमें, फास्फोरस कितना है, पोटाश कितना है
1: जी,
0: ये सारी स्थिति हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी अति महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: उनको जानने के लिए सरकार ने कि हमें किस क्रॉप के लिए कितना फर्टिलाइजर डालना है
1: जी,
0: कितना फर्टिलाइजर लगेगा, हर क्रॉप के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन फर्टिलाइजर है
1: जी।
0: तो किसान भाई की हमारी सॉइल में कितना है
1: जी जी,
0: एक सिंपल भाषा में कहूँ, हमारी थाली में दो रोटी रखी हुई और उनको भोजन करना है चार रोटी
1: जी,
0: तो हमें कितनी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी? दो रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, कि दो ऑलरेडी हमारी थाली में रखी हुई,
1: सही बात,
0: जो की हमको और पड़ेगी, हम चार रोटी खाते हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार से सॉइल में
1: जी
0: कितने उर्वरक है उसमें मात्रा में
1: जी,
0: और कितने की और आवश्यकता है जो हम क्रॉप फसल को लगा रहे हैं
1: जी जी जी।
0: तो किसान भाइयों को भारत सरकार की जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, फ्री में किसी भी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक ऑफिस में अपना सॉइल सैंपल दे के
1: जी
0: और वहां से अपना सॉइल का स्टेटस चेक करवा सकते हैं
1: जी जी,
0: फ्री कॉस्ट
1: जी जी।
0: और साल में दो बार
1: जी
0: ये भी है
1: जी,
0: खरीफ से पहले
1: जी
0: और रबी से पहले,
1: ठीक है,
0: साल में दो बार फ्री कस्ट, और अपने सॉइल के हिसाब से क्या मेरी फसल लगानी है, हमारी फसल में क्या क्या हमको डालना है, मीटर से पता।
1: अच्छा अच्छा।
0: 2014 में ये लागू हुई
1: जी
0: और उसके बाद से आज तक ये चालू है।
1: सर एक सवाल ये भी है कि शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए शहर मृदा स्वास्थ्य पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को कैसे अपनाया जा सकता है?
0: जो मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है
1: जी,
0: उसका शहरीकरण से क्या प्रभाव है? मैं इतना कुछ समझ पा रहा हूँ।
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो उससे हमारा जो कल्टीवेटेड भूमि है
1: जी जी जी,
0: वो धीरे धीरे कम हो रही है।
1: जी जी,
0: जितनी भी कल्टीवेटेड भूमि है
1: जी,
0: वो हमारी कम होती जा रही है। शहर को हमेशा ये देखना चाहिए कि वहाँ मृदाओं में कचरा ना फैलना, जैविक अपशिष्ट खाद को बनाना
1: जी,
0: है ना, पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ लगाने से हमारी मृदा का कटाव रुकता है और इसी के पेड़ के पौधे पत्ते जब गिरते हैं तो हमारी मृदा के लिए बहुत वो आवश्यक होती है और खाद मिलते हैं और जीवांश पदार्थ बढ़ता है। वर्षा का जल संरक्षण हमेशा संरक्षण है, वो भी करना चाहिए समय में। आप जहाँ स्टोरेज टैंक है, ड्रेनेज टैंक है, उनमें भी हम संरक्षण करके और सॉइल में वर्षा जल संरक्षण करना चाहिए। मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे प्रयास करना चाहिए कि हमें चेक डैम है
1: जी,
0: है ना, वो बनाना चाहिए। रोड सीमेंटेड रोड है वो कम से कम बनाना चाहिए। उनके आसपास है वो पेड़ खाली रखना चाहिए, कैसे एरिया और जिसमें हम पेड़ लगा सके, पौधे लगा सके, वो करना चाहिए। ये सारी चीजें निश्चित रूप से शहरीकरण में होना चाहिए मिट्टी के लिए
1: जी,
0: और करना चाहिए।
1: सर एक ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एक अहम सवाल है कि मृदा संरक्षण की अगर हम लोग उपेक्षा करेंगे तो क्या इसके परिणाम हम भुगतेंगे, देखने को मिल सकते हैं?
0: बहुत ही आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
1: जी जी।
0: और निश्चित रूप से किसान भाइयों को और जो लोग सुन रहे हैं
1: ठीक,
0: अगर हम मृदा को उपेक्षित करते हैं
1: जी
0: तो मानव जीवन बड़ा संकट में आ
1: जाता है। जी बिल्कुल,
0: है ना
1: जी।
0: कैसे? क्योंकि हमारा फूड, जितना भी फूड है
1: जी,
0: चाहे हमारी बायोडाइवर्सिटी हो, जल, जमीन और वायु
1: जी,
0: ये तीन मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है
1: जी जी।
0: और अगर हमने उसमें से जमीन को हटा दिया, मृदा को हटा दिया
1: जी,
0: तो हमारा जीवन पूरा बायोडाइवर्सिटी विश्व का हो चाहे भारत का हो
1: जी,
0: उसमें संभव नहीं हो
1: जी।
0: तो मृदा हमारे लिए बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट है। अगर हमने इसको अवहेलना की
1: जी,
0: और अगर इसको हमने नहीं देखा तो निश्चित रूप से हमारी सॉइल को अनफर्टाइल सॉइल होने में समय नहीं लगेगा और हमारा मानव जीवन एक
1: जी।
0: पूरी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, मृदा स्वास्थ्य हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, बहुत सारी स्कीम्स को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर काम कर रही है हमारी सरकार, रोशन कर रही है
1: जी।
0: और बहुत सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सॉइल पे, लेकिन बहुत चाहे पूरी मैपिंग हो, कौन सी कहाँ किस प्रकार की सॉइल है, क्या क्या आवश्यकता है, कहाँ बहुत सा पॉल्यूशन हो रहा है, इन चीजों को लेकर भी बहुत अवेयरनेस आ रही है। तो निश्चित रूप से हमने अगर अभी ना की तो बड़े दुष्परिणाम देखे।

0: है, कृषि खाद है, यही मिट्टी का भोजन है, यही मिट्टी उनके लिए उर्वरक बनती है
1: जी।
0: तो सबसे बड़ा काम है कि वृक्ष लगा दें हमारी मिट्टी स्वास्थ्य।
1: सर आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का बड़ा इस्तेमाल है, वो बढ़ता ही, मतलब बिना उसके तो लाइफ आजकल है ही नहीं, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए?
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया का भी एक बड़ा उपयोग किया जा सकता है
1: जी।
0: अगर हम कुछ अच्छे वीडियोस हैं, कुछ अच्छे क्लिप्स हैं
1: जी,
0: जो लोगों को जानने के लिए बहुत शॉर्ट
1: जी,
0: और यंग जनरेशन को हम इसमें अवेयर कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें हमको रोल ये करना पड़ेगा कि इसके दुष्परिणाम हमको पहले प्रेजेंट करने होते हैं।
1: अच्छा।
0: आज हम मिट्टी को किससे दूषित कर रहे हैं और उससे क्या हानि हो सकती है आने वाली जनरेशन के लिए, और वर्तमान में
1: जी जी
0: क्या समस्याएं आ रही
1: जी।
0: जैसे हम कहें, आज एक समस्या बड़ी देखने को मिल रही है मेडिकल साइंस में
1: जी।
0: हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो एंटीबायोटिक के साथ में जिंकोविट
1: जी
0: या मल्टीविटामिन टैबलेट पहले लिखता है
1: जी।
0: जो विटामिन्स की, मिनरल्स की जो डिफिशियंसी हमारे शरीर में, मानव शरीर में आ रही है, वो कहाँ से आ रही है?
1: जी जी,
0: हमारे मिट्टी से आ रही है, क्योंकि मिट्टी में डिफिशियंसी है, इसलिए वो जो मिट्टी से ग्रो हो रहा है फूड, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे ग्रेन्स हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, पल्सेज हो, सीरियल्स हो
1: जी,
0: क्योंकि सारा विटामिन मिनरल्स हमें इन फ्रूट से ही मिलता है
1: जी।
0: अगर मिट्टी में नहीं होगा तो फूड में भी नहीं आएगा, और फूड में नहीं होगा तो हमारे शरीर में भी नहीं आएगा, सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो हमें मिट्टी में ये सारी चीजें रखना आवश्यक है
1: जी।
0: मिट्टी में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फूड भी हमारी साइकिल में होगा और हम फिट रहेंगे।
1: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या कुछ भूमिका रहती है इसमें, और क्या कुछ कार्यक्रम भी चलते हैं गाँव में स्टूडेंट्स के लिए जागरूक करने के लिए, और क्या कुछ आप लोग करते हैं?
0: बिल्कुल, कृषि विज्ञान सारे समस्त पूरे भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है
1: जी जी।
0: और समस्त कृषि विज्ञान केंद्र सॉइल हेल्थ को लेकर, चाहे वो उनका टेस्टिंग हो, चाहे नरवाई प्रबंधन हो, चाहे माइक्रोब्स की बात हो, चाहे न्यूट्रेंट्स की बात हो
1: जी जी,
0: सॉइल हेल्थ को लेके समय समय पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण है, अवेयरनेस कार्यक्रम है
1: जी,
0: चाहे बायो फर्टिलाइजर्स हो, उस सभी प्रकार के ट्रेनिंग फार्मर्स को अवेयर कराता है गांव में जाकर या ऑन कैंपस कृषि विज्ञान केंद्र में। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र तो 100% जैविक कृषि कर रहा है पूरे नर्मदापुरम में, क्या हम तो पूरे मध्य प्रदेश में ही कह सकते हैं कि ये 100% हमारा पूरा 100% जैविक केंद्र है
1: जी।
0: किसी प्रकार का हम कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं
1: जी जी।
0: तो निश्चित रूप से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, समस्त कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी सालों साल टिकाऊ रहे और उपजाऊ रहे
1: जी।
0: और हमें समस्त पूरे रास्ता का हमें फूड देती रहे।
1: सर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी आप लोग, मतलब वहां पर भी होता है या गांव वगैरह में या शहरों में भी? क्या
0: बिल्कुल, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं वो हम गांव में भी देते हैं और हमारे कैंपस में भी देते हैं, बट लेकिन हमारी सीमाएं हैं
1: जी।
0: हम नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट जिले में समस्त गाँव में
1: जी,
0: और हमारे यहाँ अपने केंद्र पर भी देते हैं
1: जी।
0: और 5 दिसंबर को भी हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण सहयोग हो रहा है, एक सेमिनार कर रहे हैं किसानों को, और जो किसान सुन रहे हैं वो हमारे केंद्र पर आ सकते हैं, उसके विषय में पूर्व चर्चा करके और किसानों को इसको इसके बारे में भी अवेयर करें।
1: सर अब हम इंटरव्यू को समाप्त करें, आखिर में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक स्थायी मृदा प्रबंधन के लिए आप क्या क्या लोगों से कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, किन बातों का वो ख्याल रखें ताकि जो हमारा आज है, जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको कोई परेशानी ना हो और वो खुलकर अपना जीवन जी सकें।
0: इसके पहले ही मैंने कहा कि धरती हमारी माता है
1: जी।
0: और अगर वसुधैव कुटुंबकम रखना है
1: जी,
0: तो हमें मृदा स्वास्थ्य को बहुत रखना बहुत जरूरी है
1: जी जी।
0: और इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि अंधाधुन दौड़ में
1: जी
0: हम कहीं ना कहीं धरती माता को ना पीछे छोड़
1: जी।
0: जिस प्रकार से हम फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम पेस्टिसाइड्स हैं, जहर हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं
1: जी,
0: जिस प्रकार से हम नरवाई जला रहे हैं
1: जी,
0: तो ये सारी चीजें करना ठीक नहीं है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हम अपनी धरती माता को बचाकर रखें
1: जी,
0: और इसको टिकाऊ रखें, जिससे हमारा जीवन और ये धरती हमेशा चलती रहे
1: जी।
0: फसल चक्र अपनाए, नरवाई प्रबंधन करें, हरी खाद का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद का उपयोग करें, इन सभी चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से किसान का देश पूरा विश्व खुशहाल रहेगा।
1: हम कोई दिवस आता है तो उस दिन कर लेते हैं सारी चीज, लेकिन रोज इंसान अपनी प्रैक्टिस में इन चीजों को लाए और सब लोग लाएं, बच्चे भी लाएं, बुजुर्ग भी लाएं, बड़े भी लाएं, सब लोग लाएं शहरों में गांवों में, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है।
0: देखिए, निश्चित रूप से सही कहा कि हर व्यक्ति को इसमें प्रयास करना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि इसमें एक ही चीज किसान का ही नहीं
1: जी,
0: चाहे शहर हो, चाहे मानव जीवन का हर व्यक्ति, चाहे भले ही वो खेतिहर मजदूर ना हो
1: जी,
0: और मतलब खेती वाला करने वाला किसान ही ना हो
1: जी,
0: उसका भी बड़ा अहम रोल है
1: जी,
0: क्योंकि फूड तो कहीं ना कहीं वो जमीन से ही खा रहा है, जमीन से आ रहा है, लेकिन बट हमें पॉलिथिन्स है या हमें अन्य चीजें हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उन चीजों का भी बिल्कुल ध्यान, हर व्यक्ति का इसमें रोल है
1: जी।
0: अगर वो ये कहे कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या होगा
1: जी,
0: ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे सीड्स वॉल हैं, ले जाके अगर जंगल में ही डाल देंगे या हम पेड़ के किनारे डाल दें
1: जी जी,
0: धीरे धीरे करके हमारा एक चीटी जैसा भी योगदान
1: जी,
0: एक बड़ा योगदान बन जाता है
1: जी जी।
0: लोग सोचते हैं कि यार हमारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा
1: जी,
0: लेकिन हमारे एक पेड़ से अगर हम सारे लोग एक एक पेड़ लगा दें तो आज 150 करोड़ हमारे पूरे भारत में पेड़ लग सकते।
1: सही बात है,
0: तो सभी का एक चीटी का भी योगदान होता है, तो निश्चित रूप से वो बड़ा योगदान हो जाता है और हम सभी का योगदान उसमें करना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो, मदा साहब की मदा संरक्षण के लिए हम सबको धीरे धीरे प्रयास करके और उसको हमको समझती हो ले जाना चाहिए।
1: सर, इतने अच्छी बात पर हम इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सर, आपने रेडियो आजाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम तक, के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है 90.8 MHz पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम योग संवाद।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम के बहाने इन दिनों हमने प्रवेश किया है योग वासिष्ठ के अमूल्य कथा संसार में। श्री राम की वैराग्य दशा पर चर्चा करते हुए आज हम पहुंच रहे हैं अहंकार और चित्त दोष के विषय तक, जिसमें प्रश्न है कि मनुष्य के सारे दुखों का मूल क्या है। क्या बाहरी परिस्थितियां हमें बांधती हैं या हमारे भीतर छिपा अहंकार और चित्त की अशुद्धियां ही बंधन का कारण बनती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मन के इन्हीं सूक्ष्म दोषों की जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाते हैं, चर्चा अहंकार की जो स्वयं को केंद्र मानकर भ्रम पैदा करता है, और चित्त दोष की जो मन को अशांत, अस्थिर और मोहग्रस्त बनाए रखते हैं, क्योंकि अहंकार और चित्त दोषों के साथ मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं उतर सकता है। तो आइए सुनते हैं आत्म जागरण की वो वाणी जो मन को भीतर से प्रकाशित करती है और जीवन को नई दृष्टि देती है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
3: योग वासिष्ठ ग्रंथ खुला हुआ है योग संवाद कार्यक्रम में। भगवान श्री राम की वैराग्य दशा है और वो जो कुछ अपनी बात कह रहे हैं उसके बहाने हम सबके प्रश्नों का समाधान उत्तर मिलता जा रहा है। तो आज हम अहंकार और चित्त दोष पर बात करेंगे
4: जी।
3: और मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि मनुष्य के जीवन में विपत्ति का क्या कारण बताया गया है योग वासिष्ठ में।
4: राम जी जब संसार भ्रमण पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जब लोगों को देखते हैं
3: जी।
4: तो देखने के बाद जो उनको दिखाई देता है तो वो ये पाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो आपत्ति है या जो विपत्तियां हैं उसका मूल कारण उनको अहंकार दिखाई दिया। और ये गुरु जी से वो कहते हैं, वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैंने ये देखा कि व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर दुख और विपत्तियों को आमंत्रित करता है। और जबकि लोगों को लगता है कि हम अपने विवेक या अपने मैपन से हम दुख और विपत्तियों को दूर कर रहे हैं, जबकि सच ये नहीं है। वो कहते हैं सारे के मूल में जो है वो अहंकार है। अहंकार ही मनुष्य पर आने वाली आपत्ति है जो उसे शारीरिक कष्ट भोगने के लिए मजबूर करती है। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं भी होती हैं
3: जी।
4: अब आप कभी विचार करिए कि क्या बिना अहंकार के हम सुखी और दुखी हो सकते हैं? अहंकार का मतलब हुआ कि जहां आपने कोई आकार ले लिया, चाहे देह का ले लिया और चाहे मानसिक रूप से आपने अपनी कोई विशिष्टता बना ली कि मैं अमुक हूं
3: जी, जी,
4: या
3: जी।
4: मेरे साथ किसी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आपने पहले से तय कर लिया
3: जी।
4: ठीक है, आपने जिन परिस्थितियों में ये व्यवहार तय किया उन परिस्थितियों से वो व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है। आपने अपनी मानसिक दुनिया में उस व्यक्ति को वहां रख करके उस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कर ली
3: जी, जी, जी।
4: और जब उस व्यक्ति के पास गए तो चूंकि वो दुनिया मानसिक आपकी थी, वो व्यक्ति उसमें था नहीं और उसने अपनी दुनिया के अनुसार आपसे व्यवहार किया जो आपकी दुनिया से अलग हो सकता है और होता भी है।
3: हाँ, हाँ।
4: तो फिर आप दुखी हो गए या आपके अनुसार कर दिया तो आप सुखी हो गए, जबकि सच ये था कि मात्र कोइंसिडेंट था। तो अहंकार मतलब अपने को विशेष मान लेना। अहंकार हमेशा विशेषता की तरफ आपका ध्यान ले जाएगा कि अहंकार का मतलब मैं का आकार।
3: हाँ, हाँ।
4: चाहे वो देह हो और चाहे मैं आपके उपाधियों का मैं हो, भाई उपाधियां भी तो मैं बनाती हैं कि मैं ये हूं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो कहते हैं कि सारी आपत्ति और मानसिक जो व्यथाएं होती हैं वो अहंकार से होती हैं।
3: अहंकार से होती हैं। ये भी अद्भुत बात है कि हम सभी जीवन में हैं, संसार को हम सब देखते हैं, यात्राएं हमने भी अनेक की हैं, लेकिन एक किशोर बालक श्री राम जब एक यात्रा करते हैं तो वो किस दृष्टि से संसार को देख रहे हैं, अद्भुत बात है ये।
4: 14 साल की उम्र है, लेकिन ये साफ साफ इससे ये देखिए साबित होता, क्योंकि यहाँ पर हम एक बात ध्यान दें कि जैसे गीता की बात हमने की तो गीता में अर्जुन जीव का प्रतीक है, यहाँ राम जी ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म जीव कैसे देखता है ये देख रहा है। ये देखिए कितनी बेबाकी है। इसलिए ये ग्रंथ बड़ा अद्भुत और दुर्लभ है। कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने खुद ही कहा कि ऐसा संसार का कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस योग वासिष्ठ में नहीं है, और अगर समाधान योग वासिष्ठ में नहीं है तो कहीं कोई समस्या भी नहीं है, ऐसी उनकी घोषणा है।
3: जी,
4: तो ये इतना दुर्लभ ग्रंथ है कि ब्रह्म जब इस जगत को देखता है तो कितने सूक्ष्म दृष्टि से देखता है कि उनको जो लोगों की परेशानियां विपत्तियां आपत्तियां दिखाई दी वो किसी विषय वस्तु से नहीं अहंकार से दिखाई दी। और हम लोग आज भी विषय वस्तु को मानते हैं कि ये हमारी विपत्ति का कारण, अहंकार को नहीं मानते।
3: जी। अच्छा, तो फिर अहंकार का त्याग कैसे किया जाए?
4: जी, अहंकार का त्याग, बड़ा सुंदर आपने कहा कि ऐसे अहंकार का त्याग, राम जी कहते हैं कि इस अहंकार का त्याग मैं इस तरह से करता हूं, अपना उन्होंने खुद बताया, कहा कि मैं ना अमुक नाम वाला हूं, ना विषयों में मेरी रुचि है, और ना मन ही मेरा है, मैं शांत होकर मन को जीतने वाला महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहता हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि मैं ना अमुक नाम वाला हूं, यानी आपने जो एक नाम, आपका नाम है ही, आपके संबंधों के भी नाम होते हैं, यानी देखें तो आप नाम का ही समुच्चय हैं एक प्रकार से, है ना, किसी पद पर है तो उस पद के नाम से आप नामित हैं कि मैं ये हूं। तो अहंकार उसी नाम को चोट पहुंचाता है, देखा जाए जो नाम आप बन के बैठे हैं, जिस नाम को आपने धारण कर रखा है उसी धारणा की वजह से आपको दुख सुख होता है। तो कहते हैं कि हमने नाम ही त्याग दिया, तो जब नाम त्याग दिया तो नाम से होने वाला सुख दुख भी खत्म। और थोड़ा सूक्ष्म ये कहते हैं, मैं, मेरी किसी विषय में रुचि नहीं है। आप बिना किसी विषय में रुचि रखे आप सुखी दुखी नहीं हो सकते। रुचि के नाते ही वो विषय मिली तो सुखी हुए, रुचि के नाते ही वो विषय नहीं मिली तो दुखी हुए, अगर रुचि नहीं था तो न सुख था न दुख था
3: जी,
4: है ना। तो देखा है, तो वो कहा कि मेरी किसी विषय में रुचि ही नहीं है, तो ये भी उन्होंने अनासक्त भाव पैदा किया वहां। और कहते हैं न मन ही मेरा है, ये जो मन, जो ये तमाम जो मतलब अहंकार की रचना करता है, या मन ही अहंकार बन के घूम रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की हम लोग बात करते हैं ये वेदांत में, तो मैंने मन का जो सबसे कंडेंस फॉर्म है वो अहंकार है। तो कहते हैं जब मन ही मैं नहीं हूं तो फिर अहंकार होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अहंकार का जो त्याग है वो इसी तीन सूत्रों से हो सकता है, न मैं अमुक नाम वाला हूं, अपनी उपाधि त्याग दें, और न किसी विषय में रुचि रखें। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि विषय में रुचि, इसका अर्थ उदासीनता है। पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा क्योंकि उदासीनता कई बार हमारे राग की वजह से आती है, इस उदासीनता की बात यहाँ नहीं है। रुचि का न होना मतलब राग का न होना, ये है निष्कामता। निष्कामता का मतलब उदासीनता है। निष्कामता एक बहुत ऊंची अवस्था है। जैसे हम लोग कई बार प्रेम प्यार के झमेले में फंस जाते हैं और हम अपनी आसक्ति को प्रेम का नाम दे देते हैं, जबकि प्रेम आसक्ति नहीं है। प्रेम देखें तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपकी कोई कामना ही नहीं होती, और आसक्ति बिना कामना के नहीं होती। इसीलिए आसक्ति अक्सर वासनात्मक होती है और प्रेम वासना से मुक्त होता है, परम पवित्र होता है। तो ये जरा समझने जैसा है। तो ऐसे ही ये उदासीनता कि न मैं कोई मेरी रुचि है और न मन ही मेरा है, तो जब ये स्थिति आएगी तो आपका अहंकार ऐसे ही निर्मूल हो जाएगा, क्योंकि यही तीन अहंकार को खड़ा करते हैं, मन मेरा है, मेरी इसमें रुचि है, और मेरा ये नाम है। तो आप देखें तो ये पूरा अहंकार का संगणित रूप खड़ा हो गया। तो त्याग इन्हीं से राम जी ने कर दिया। तो कहते हैं ऐसे ही आदमी भी कर सकता है।
3: अच्छा, मानसिक चिंताओं को दूर करने का क्या उपाय है?
4: मानसिक चिंताओं को दूर करने का उपाय अहंकार का त्याग है, क्योंकि मानसिक चिंताएं जो उसी से हैं, तो निश्चित ही उसका त्याग करके अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती हैं। यानी जैसे अच्छा अहंकार का मूलोच्छेदन करेंगे आप, तो वो क्या है? वो है अविद्या। जैसे अविद्या बस ही आपने किसी नाम को किसी विषय को, मैं कहता हूं जिस विषय में आपकी रुचि है वो विषय जब नहीं था तो क्या आप नहीं थे, या रुचि हमेशा बनी रहेगी क्या? नहीं बनी रहेगी। तो एक तरह से देखें तो अगर आपको ज्ञान हो गया, वास्तविकता का ज्ञान हो गया, जो विद्या की शरण आपने ली, विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करी वेको आतुर, हनुमान जी के बारे में कहते हैं, विद्यावान और विद्वान दोनों में अंतर है।
3: जी जी।
4: विद्यावान होने के बाद अविद्या का मतलब कहते हैं ना विद्या नष्ट हो जाती है, अविद्या का नष्ट होना ही अहंकार का मूलोच्छेदन है, क्योंकि अहंकार की जननी अविद्या है।
3: जी। अच्छा, जो विवेकवान पुरुष है वो अहंकार को किस रूप में देखता है?
4: ये सुंदर सवाल किया आपने। विवेकवान पुरुष जो है अहंकार को अतिशय दुख रूप देखता है।
3: अच्छा।
4: जैसे जो विवेकवान नहीं है वो भी दुख तो नहीं चाहता। जैसे हम जिन भी वस्तुओं या विषयों के साथ हमारा दुख का अनुभव है, उन विषय वस्तुओं से हम अपने को विरत रखते हैं, दूर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमें दुख देता हो, उसके आने की खबर मिलने पर हम उससे मिलना नहीं चाहते, या कोई बहाना कर देते हैं कि हम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव क्या है कि इस आदमी ने मुझे दुख दिया था तो इस बार भी दुख देगा। ठीक है। तो जो हमारे अंदर जो उससे दूर रहने का भाव आया, दुख के नाते आया, तो ये कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष है वो अहंकार को ही दुख का मूल मानता है। वो कहते हैं कि ये जो अहंकार ही है यही अतिशय दुख रूप है, तो वो अहंकार से हमेशा अपने आप को बचाता है। अहंकार से बचाने का अर्थ, न मैं अमुक नाम वाला हूँ, न मेरी अमुक वस्तु में रुचि है, और न मन ही मेरा है, यही अहंकार से बचने का उपाय है। तो हर पल वो अपनी इस जागरूकता को बनाए रखता है, जैसा कि राम जी बना के रखे हुए हैं, और वो जो उनके वैराग्य की स्थिति दिखाई दे रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। जी।
3: अच्छा, चंचल चित्त से जो ये जगत है, संसार है, वो किस प्रकार का दिखाई देता है?
4: चंचल चित्त से जो ये संसार है ना, आपको ये विषयों के चिंतन के क्षोभ में हमेशा घुमाता रहेगा, जो चित्त की चंचलता है। आप देखिए, जब चित्त क्या करता है, बार बार क्षणभंगुर जो विषय हैं, आप कभी भी, हम कहते हैं कुछ मत करिए, योग वासिष्ठ जो कह रहा है, और आप अपने अनुभव को देखिए, क्योंकि राम जी ने भी लोगों के व्यवहार को ही देखा। हम एक बार अपने व्यवहार का आत्मन्वेषण करें तो हम ये पाएंगे कि जो ये चंचल मन है, ये कहीं कोई भी इसे अनुकूलता प्राप्त नहीं होती। चंचल चित्त जो है ये कभी भी अनुकूल स्थिति नहीं देगा, क्योंकि अनुकूलता में भी प्रतिकूलता ढूंढने की इसकी प्रवृत्ति होगी, है ना? जैसे हम प्रतिकूलता देख रहे हैं तो हम अनुकूलता खोज रहे हैं, जब अनुकूलता में आए तो प्रतिकूलता। इसके संदर्भ में आपको एक उदाहरण दूंगा मैं, कि जैसे आपने कल्प वृक्ष की कथा सुनी होगी कि एक व्यक्ति जाता है एक पेड़ के नीचे और बहुत थका है, कहता है बड़ी गर्मी है, थोड़ी हवा चलती तो हवा बहने लगती है, ठंडक आती है, तो फिर उसे भूख का एहसास होता है, कहता है भोजन मिल जाता तो भोजन भी आ जाता है, फिर ऐसे कहते हैं अब तो थोड़ा विश्राम करना बनता है, थोड़ी नींद आ जाती तो सो भी जाता है, फिर जागता है तो वो सारे दृश्यों को याद करता है कि ये जो जो भी मैंने इच्छा की सब पूरी हो गई, क्या है कहीं कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं है, और कहीं ऐसी शक्ति तो नहीं है जो मुझे ही मार डालेगी, तो फिर मार भी डालती है। तो ऐसे कल्पना एक है। तो ये जो चित्त है, ये या जो चंचल चित्त है, वो इसी तरह का है। आप देखेंगे कि वो सुख के साथ साथ दुख भी खोजने में माहिर है, दुख कहीं और से नहीं आता। इसीलिए जो विवेकवान लोग रहे हैं वो कहते हैं कि अगर आपने सजगता पूर्वक जीवन जीना सीखा, यानी होश के साथ आप बाहोश होके जीने लगे, तो आप अपने चित्त के उन स्मृतियों को कभी भी नहीं जागृत करेंगे जिन स्मृतियों से आपको दुख हुआ था या होता है। और आप जब भी दुखद स्मृतियों के साथ आप होते हैं तो आप देखिए संसार में फिर सुख खोजना आपके लिए मुश्किल होता है। और जो आजकल आज सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में आप देखते हैं, वो क्यों आता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि जीवन को बचाने का अब कोई आधार शेष नहीं बचा, तो ऐसे में जीवन मिटा देते हैं। और इसके पहले जब उनके पास जीवन जीने के आधार होते हैं तो जीवन जी रहे होते हैं।
3: बिल्कुल।
4: तो वो हमेशा से वो अलर्ट रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं कि कोई उनको, मैंने कोई ऐसी चीज, जैसे हम कहते हैं अपने दरवाजे पर हम घर की सफाई करते हैं, तो ऐसे वो मन को चित्त को इतना साफ रखने का प्रयास करते हैं कि उसमें दुखद स्मृतियां ना आने पाए, जिसकी वजह से वो दुख का सानिध्य कर पाए।
3: जी। अच्छा शशिकांत जी, मैं चाहती हूँ कि अब हमारे सुनने वालों को आप ये बताएं कि व्यक्ति को दीनता का जो अनुभव है क्यों होता है, क्या कारण है इसका?
4: व्यक्ति के दीनता का अनुभव चंचल चित्त उसका कारण है, चित्त की चांचल्यता उसकी दीनता का कारण है। चित्त कभी भी आप, क्योंकि आप देखिए जिस चित्त में आपको अपनी दीनता का बोध हुआ है, कभी वही चित्त आपको सर्वश्रेष्ठता का भी बोध कराता है। जब कभी कोई दूसरा व्यक्ति आपको आपकी दीनता के ताने कसे तंज दे तो उस समय आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि आपको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, और आप जो ये बात बोल रहे हैं ये आप शायद ये बात बोलने के लायक भी नहीं हमारे सामने, तब आप अपने उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो चित्त में उत्कृष्टता का भाव कहां से आता है, आप ही लाते हैं। यानी अगर वो चित्त की चांचल्यता न हो तो निश्चित ही आप हमेशा उस उत्कृष्टता के साथ जी सकते हैं, लेकिन चित्त की चांचल्यता ही आपको दीन भी बनाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो लोग चित्त पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो जिसे इंद्रिय जयी हो जाते हैं, है ना, जितेंद्रिय जिसे कहा जाता है वो लोग होते हैं। और इंद्रियों में सबसे जो प्रभावशाली इंद्रिय है जिसको उभयेंद्रिय भी कहते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्रदान करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म के लिए आपको उत्सुक करती हैं, तो ऐसे ही मन जो है, मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों का कारण है, इसलिए मन को उभयेंद्रिय कहते हैं। इसलिए सबसे प्रभावशाली इंद्रिय है वो, और उस पर जो काम करता है वो समझिए वो विजय प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जो लोग मन से हार जाते हैं वो समझिए फिर उनको किसी भी चीज के लिए खड़ा खड़पना मुश्किल होता है, जिसके लिए अर्जुन की दशा है। और यहाँ राम जी मन से हारे नहीं है, मन के साथ उनके जो मन ने उनके संसार का जो सच देखा है उस सच का वो कारण लोक कल्याण के लिए वो प्रकट करना चाहते हैं कि लोग सच्चाई जान सकें कि ये अहंकार या चित्त ही सारे दोषों की वजह है। अगर हम इसको वास्तव में बोध में ला पाएंगे तो हम दोषों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे।
3: तो मन के क्षोभ का कारण भी यही है।
4: जी जी, देखिए विषयों के चिंतन से मन क्षोभ को प्राप्त करता है। यह मन मंदराचल के आघात से उछलती हुई क्षीर सागर की दुग्ध राशि के समान दशों दिशाओं में दौड़ता और भटकता फिरता है। सोचिए आप, ये उपमा दिया है इन्होंने इस ग्रंथ में कि ये किस तरीके से, मतलब ये मन शांति को नष्ट करता है। तो इस प्रकार जो है मन बार बार आपको संसार में भगाता है। तो इस मन को अगर ठीक से हम समझ पाएं तो मन को समझ पाना ही मन से मुक्ति है। एक्चुअल में मन से लड़ना नहीं है। लोग बात क्या करते हैं, मन का विरोध करना शुरू करते हैं। विरोध से तो और भी आप उसे शक्ति देते हैं, और भी वो प्रभावशाली तरीके से आपका विरोध करता है। जब मन का विरोध आप करते हैं तो मन का एक, मन दो भागों में बढ़ जाता है, एक लड़ाई करता है आपसे और एक उसके विरोध में खड़ा होता है। कहते हैं मन को समझ लो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जी
3: अच्छा, देखिए हर इंसान सुख की खोज में है संसार में, है ना, सबको सुख की आकांक्षा है, लेकिन शाश्वत सुख जो है उसका अनुभव क्यों नहीं हो पाता है?
4: देखिए शाश्वत सुख का अनुभव इसलिए नहीं हो पाता है कि चित्त जो है उसके लिए चित्त में एकाग्रता का भाव होना बहुत आवश्यक है, और शाश्वत सुख विषयों से विरत होने पर प्राप्त होता है। शाश्वत सुख जो है वो विषयों में प्राप्त नहीं होता। विषयों में हमेशा, आप कभी अनुभव को ही देखें तो किसी भी विषय के साथ आप शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। कुछ देर के बाद आपका उस विषय से राग मिट जाता है।
3: जी
4: ठीक है। तो ऐसे में शाश्वत सुख विवेक के द्वारा होता है, और विवेकवान लोगों ने यह कहा है कि प्राप्त विषयों से विरत हो जाना यह शाश्वत सुख है, जिसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में प्रत्याहार कहा है।
3: जी,
4: कि इंद्रियां जैसे विषयों का आहार करती हैं, विषयों का आहार करके ही राग द्वेषात्मक भाव के साथ व्यवहार करती हैं, ऐसे ही जब विषयों से वो अंतर्मुखी होती हैं, प्रति आहार प्रति प्रसव जिसको कहा उन्होंने, यानी प्रति प्रसव का मतलब हुआ कि वो फिर जन्म नहीं ले रहा है चित्त, चित्त के अंदर चांचल्यता जन्म नहीं ले रही है। तो ऐसे में जब आप चित्त से विषयों का त्याग करते हैं, विषयों से विरत हो जाते हैं, तो आपको शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। वही परमानंद है, वही आनंदमय स्थिति है आपकी, जहां जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आनंद और सुख के बीच के भेद में ये बात कही जाती है कि सुख शाश्वत नहीं होता, आनंद शाश्वत होता है। हम लोग कई बार पर्यायवाची में इसका प्रयोग कर लेते हैं। जी
3: अच्छा, मन का मूल स्वभाव क्या है, ये जरूर हमारे सुनने वालों को आप बताएं।
4: देखिए मन का मूल स्वभाव जो है ना, ये जो है चंचल इसकी वृत्ति है, कहीं ये स्थिर नहीं होता, चिंताओं को जन्म देता रहता है। इस तरह से जो मन का मूल स्वभाव है वो हमेशा विचलित होते रहना और विचलित करते रहना है। स्थिरता इसका मूल स्वभाव नहीं है। और ये जो हम लोग कहते हैं ना कि मन को शांत करो, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शांत रहना मन का स्वभाव नहीं है। जो अभी हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि मन से मनन करके अमनी दशा को प्राप्त हो जाओ, ये स्थिति है। तो जब अमनी दशा जो है वो मन की दशा नहीं है, वो मन से मनन करके मन से मुक्त हुआ जाता है, फिर मन वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। तो ऐसे में मन को शांत करने का जो उपाय है वो मनन है, चिंतन है, चिंता नहीं है। और चिंता हमेशा विषयों के साथ रत होने पर होता है, विषयों से विरत होने पर चिंता नहीं होता। विषयों से विरत होके चिंतन होता है और विषयों से रत होकर चिंता होती है। चिंता और चिंतन का ये फर्क है। और कहते भी हैं कि चिता और चिंता दोनों एक जैसी है,
3: एक जैसी है
4: ना। चिंता जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद जलाती है। तो ऐसे में चिंता यही है तीनों ताप जिसमें जीव जलता है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, जिसको हम लोग भागवत में कहते हैं ना, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो वो श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण के चित्त को देखिए, राम जी के चित्त को देखिए, कि राम जी ने जगत के चित्त को जब देखा तो कहा ये चित्त ही सारे दोषों का कारण है। जी
3: अच्छा, संसार का सबसे महान कठिन कार्य क्या है?
4: संसार का सबसे कठिन कार्य है मन को वश में करना, ये कह सकते हैं ना, ये सबसे कठिन कार्य है। वैराग्य प्रकरण में देखें आप तो बहुत तरह के ऐसे आपको दृष्टांत आएंगे जो बार बार मन के वशीभूत हो जाने के कारणों पर बात हो रही है। तो मन को वश में कैसे कर लिया जाए, ये कठिनतम कार्यों में से राम जी ने कहा ये एक है, जो मैंने जगत को देखा, गुरु जी से कह रहे हैं कठिनतम कार्यों से, क्योंकि सारा जगत जो है मन के वश में है और मन के वशीभूत होकर वो मरकट नाचें नर मरकट की नाई, गोस्वामी जी कहते हैं बंदर की भांति कूद रहा है, उछल कूद, बंदर से तुलना की गई चित्त की, तो कूदता रहता है इस डाल से उस डाल। तो ऐसे ही मन को वश में करना सबसे कठिनतम कार्य है। इसको कबीर साहब भी कहते हैं कि जैसे तन का जोग तो सब कर लेते हैं, मन का जोग कोई विरला करता है। तो मन का जोग है मन को वश में करना।
3: जी। अच्छा, तीनों लोकों की जो सत्ता है उसका क्या कारण है?
4: तीनों लोकों की सत्ता का मूल कारण है चित्त। इसमें ये कहते हैं भगवान राम कि चंचल चित्त को वश में कर लेना इससे भी कठिन कार्य है। संपूर्ण पदार्थों का चिंतन करने वाला जो ये चित्त है, इस चित्त को अपने वश में करना। कहते हैं कि ये चित्त ही जो है ये तीनों लोकों की सत्ता को प्रकट करता है। और हम देखिए हम लोग कैसे हैं कि हम लोग तीनों लोकों की सत्ता को मान करके ही जगत में व्यवहार करते हैं। यानी पूरे जगत का व्यवहार जो हो रहा है वो चित्त के कारण हो रहा है
3: जी।
4: तो ये चित्त का दोष है कि अगर चित्त के दोष को आप समझ सकें तो ऐसे में जो मोक्ष की बात की जाती है वो तीनों लोकों से मुक्त होने की बात यही हो सकती है, बसरते चित्त की वास्तविक स्थिति या चित्त के सत्य को हम जान पाएं और जान करके उसे अपने जीवन में अंगीकार कर सकें।
3: तो मैं चाहती हूँ कि चलते चलते हमारे सुनने वालों को आप अहंकार से मुक्ति की जो बात, अहंकार को त्यागने की जो बात थी, वो कैसे त्यागा जा सकता है, एक बार एक दोबारा आप बता दें। और चित्त दोष, मन को स्थिर करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, एक बार आप बता।
4: देखिए चित्त बिना अहंकार, चूंकि चित्त का आधार जो है वो अहंकार है, अहंकार का मतलब होता है कि जहां आपने कोई आकार, कोई उपाधि ग्रहण कर ली है, कोई चुनाव आपने कर लिया है और उस विशेषता के साथ आपने अपने को परिच्छिन्न कर लिया है, अलग कर लिया है। तो जैसे ही आपके अंदर खंडित होने की बात आती है, ये जगत एक अखंड भाव में है, आप देखें तो जैसे वसुधैव कुटुंबकम जब ऋषि ने कहा तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी वसुधा को आपके अस्तित्व का उसने कारण माना कि आप अगर हैं तो वसुधा अगर विभिन्न जीवों के साथ जो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है, उस जैव विविधता की वजह से आपका होना है। तो चित्त में आप जब इस बात को ठीक से उतार लेते हैं या कह सकते हैं ये निर्द्वंद रूप से ये बात आपके चित्त में समा जाती है तो आप चित्त के दोषों से प्रभावित नहीं होते। चित्त का दोष भी कहना उसे मतलब कहें आप, लेकिन चित्त के दोषों से प्रभावित न होने का उपाय है चित्त के दोषों को जान लेना। जैसे किसी चीज को आप जान करके उससे अपने आप को बचा सकते हैं
3: बिल्कुल।
4: और रही बात आपने कहा अहंकार की, तो कहते हैं अहंकार का जो मूल कारण उन्होंने बताया कि मैंने वो नाम, जिस नाम की उपाधि ले रखी है हमने, उस उपाधि का त्याग किया। और अब देखें तो हम कहते हैं जीव ने उपाधियों के नाते ही अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध से अपने को वंचित कर लिया, क्योंकि वो है तो ब्रह्म ही, लेकिन जो नाम रूपात्मक उपाधियां हैं उन उपाधियों ने उसे आवरण से ढक दिया, जैसे बादल ने सूर्य को ढक दिया
3: जी।
4: तो ऐसे में वो उपाधियां छोड़ दें। दूसरी बात, विषयों में जो रुचि है उस रुचि का त्याग करें, क्योंकि विषयों की रुचि कभी विषयों से पुष्ट नहीं होती
3: जी।
4: क्योंकि रुचि समाप्त होती तो आज तक बहुत सारे विषयों का हमने सेवन किया, लेकिन रुचियां तो कभी खत्म नहीं हुई, लगातार वो बढ़ रही है, नए नए विषयों की तरफ भाग रही है, तो और प्रज्वलित हो रहा है वो। तो वो कहते हैं एक तो ये है, और दूसरा सबका जो मूल कारण मन है, उस मन को भी मैंने त्याग दिया कि ये मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं। ये भी अहंकार के विसर्जन का एक मूल कारण है
3: जी।
4: इसको फिर उन्होंने कहा कि अब योग में आ जाइए, तो योग में कहते हैं ये अविद्या है, मैं मन हूं, या मैं अमुक नाम रूप वाला हूं, या अमुक अमुक मेरी रुचि और अरुचि का विषय है, ये सब जो है अविद्या के कारण जन्म लेता है
3: जी।
4: तो अहंकार की जननी अविद्या, और अविद्या से ये जो चित्त की चंचलता, विषय में आकर्षण, विषय में द्वेष, राग द्वेषात्मक जो वृत्ति है, इन वृत्तियों का जन्म होता है। तो ऐसे में इनका त्याग करके हम अपने जीवन को शांत कर सकते हैं और संतुष्ट रह सकते हैं।
3: तो बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की है। आज हमने योग संवाद कार्यक्रम में अहंकार और चित्त के दोष पर बातचीत की। आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं।
4: नमस्कार।
3: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में अहंकार और चित्त के दोष पर ये बातचीत उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें मुझे। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार। नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बातें होती हैं कहने के लिए कि शायद एक सत्र के या पूरे एक वर्ष में भी कहते रहें तो वे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, और साथ में मुझे एक और आदेश भी दे दिया गया था कि अपनी कविता भी सुनानी है, तो 10-12 मिनट में अपनी बात कह करके 3 मिनट में अपनी कविता सुना करके कोशिश करूँगा कि जो कहना चाहता हूँ उसके कुछ सूत्र आपके समक्ष रख सकूँ। जब हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बात, चूँकि बहुत सारे युवा भी आए हैं तो एक बात ठीक से समझनी होगी कि हम भारत में संस्कृति की इतनी बात क्यों करते हैं। भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है। संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधाराएं वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, यहाँ भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास ही मंडीदीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे, और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वही वैसी तरह से रात गुजारते थे, और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का इतिहास, उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यहाँ नहीं। अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए ये सिद्ध भी हो गया कि ये 5000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5000 साल पुराने हैं या 4000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने, और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर के घर्षण हुआ कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई, और जहां धरती ऊपर उठ गई वहां आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूंगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है, कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं, भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है, संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है, कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, अभी मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वह इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तो मुझे पता चला कि एक कल्चुरी राजवंश था। इस कल्चुरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चुरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था, लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चुरी राजवंश की जो राजधानी थी, जिसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियाँ बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अलहन देवी। वो लगभग कल्चुरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि राज्य बच जाए। और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी जो इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय। ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कौल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कौल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए, एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर अब वर्तमान में, तो राज्य नहीं बचा, जब आक्रमण अधिक होने लगे तो वहाँ लाखों करोड़ों प्रतिमाएँ थी, सब ने सोचा कि ये आएंगे और आक्रांता आएंगे और इन प्रतिमाओं को तोड़ेंगे, तो हर खेत में गड्ढे खोदे गए और उन लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को उन गड्ढों में दबा दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ, तो मैंने तेवर में जाकर के जो पहला दृश्य देखा, वहाँ कोई भी आदमी, ये मैं आपको कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2006 में मैं उपन्यास लिख रहा था, और जब मैं तेवर में गया, जो मैंने पहला दृश्य देखा, वहाँ हर खेत में से मूर्तियाँ निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है, हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते। नर्मदा आपसे कहती है, इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है, वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रहा हूँ। तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मैंने मुझे आदेश दिया गया था, इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा, और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एक कारण और शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं सामवर्तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एक कारण हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे हाथ, वही दिन रात चलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन, दग्ध दग्ध दिग दिग्दिगंत है, दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत है, काल प्रलय घनघोर गहन, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन, दग्ध दग्ध दिग दिग्दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग्दिगंत, गड गड गड गड गड गड, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत। तो एकारणो, तो एकारणो के निवृत्त मेर में निष्ठ चेतना चल स्थिर में, गंध लीन रस तेज लीन है, परसनाथ स्थिर चेत स्थिर में, जल जल जल जल जल जल जल जल जल जल अनंत, उदय परत जल जल जल जल अनंत जल जल अनंत, काल प्रलय घन घोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन, दग्ध दग्ध दिग दिग्दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग्दिगंत, गड गड गड गड गड गड, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत। तो रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो नर्मदा, प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में, दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है, हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा, हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा, शुभम वरेण्य सदा सर्वदा, नर्मदाति पुण्य नर्मदा, हरिनिनाद शम शम निनाद, शंभू निनाद जलधार सर्वदा, शिव स्थापन हृदय हृदय, हर हर हर हर हर मात नर्मदा। कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो नर्मदा, काल नहीं बाधा प्रवाह में, मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहु निरंतर बहु नर्मदा, नर्मदा नर्मदा नर्मदा। बहुत
2: शुक्रिया। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य, विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
1: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर अपनी ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आज़ाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश गान।

अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश गान 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां 24 मई को 3 दिवसीय संतवाणी समारोह का समापन हुआ।

0: इस मौके पर दो प्रस्तुतियां हुई। पहले भक्ति पदों का गायन हुआ अनुषा शर्मा का।
1: तो हम आग्रह करते हैं अनुषा जी से अपने भक्ति पद गायन का आरंभ करें।
2: नमस्कार। आज की प्रस्तुति में संत कबीर तुलसीदास जी एवं संत एकनाथ सूरदास जी ऐसे सभी संतों की एक एक प्रस्तुति मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजन श्रोतागण सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी की आज्ञा से मैं अपना गायन शुरुआत करता हूँ।

0: और यह है भक्ति गायन आरती अंकलीकर टीकेकर का।
1: ये जो पुराने लोगों ने ये जो कंपोज भी किए हैं भजन अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल से, तो ये एक राजस्थानी स्टाइल में जो है, 2 मिनट के लिए सुनाती हूँ फिर अवधारणा देगा।

0: संतचरणों की रचनाएं जो ऐसी कंठ से निकलती हैं तो दर्शकों का सुनने वालों का मन मीरा सा हो ही जाता है। ऐसा लगता है कि ये स्वर ये संगीत कानों तक ही नहीं बल्कि अंतरात्मा तक उतर जाता है। सभी संगीतकारों का बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार।
1: ये थी रेडियो रिपोर्ट संतवाणी समारोह के समापन दिवस की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे। इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था। लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था। 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी टीम क्या है रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मेरा नाम है इतिहास और मैं उन व्यक्तित्वों को कभी भुलाई नहीं भूल पाता जिन्होंने गुलामी के दौर में यह विश्वास हमेशा बनाए रखा कि हम हमेशा गुलाम नहीं रहेंगे और जो सोचा वो कर भी दिखाया।
1: ये तारीख भी सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। मैंने हमेशा उन यादों को तारीख के साथ इतिहास के पन्नों में उतारा है जो ये समझकर शहीद हुए थे कि ईश्वर ने हमें केवल देश को आजाद करने की ही जिम्मेदारी दी है।
0: तारीख, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी युग की प्रथम शहीद महिला की, जो मुक्ति संग्राम में आत्मविसर्जन के लिए हमेशा भयानक विष पोटेशियम साइनाइड लेकर के साथ चलती थी।
1: जी हाँ इतिहास, हम बात कर रहे हैं प्रीति लता वादेदार की।
0: आजादी की लड़ाई के इतिहास में प्रथम शहीद महिला के रूप में गोलपांडा चटगांव की बेटी प्रीति लता वातेदार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। 5 मई सन 1911 को गोलपांडा चटगांव में जन्मी प्रीति लता के पिता जगबंधु वातेदार चटगांव म्युनिसिपैलिटी में हेड क्लर्क थे। 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। प्रीति लता की माता प्रतिभा भी देशभक्त और शिक्षा प्रेमी थी। बचपन से ही प्रीति लता में देश प्रेम की भावना बलवती हो उठी। उनके पिता कहते थे, मेरी यह बिटिया एक दिन चटगांव की सरोजनी नायडू बनेगी, और उन्होंने कर भी दिखाया।
1: किंतु जलियांवाला बाग की कहानी सुनकर प्रीति लता के मन में भी बंगाल के अन्य युवाओं की तरह ये भावना घर कर गई थी कि सशस्त्र संग्राम ही स्वाधीनता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए जब 1928 में प्रीति लता ने प्रवेशिका परीक्षा पास कर ढाका के ईडन कॉलेज में प्रवेश लिया तो बंगाल के क्रांतिकारी दल श्री संघ की नेत्री लीला राय के दल में शामिल हो गई बिना किसी भय के और कहा,

0: प्रीति लता के साथ उसकी प्रिय सहेली कल्पना दत्त भी कलकत्ता से चटगांव आकर के महिला सम्मेलन में शामिल हो गई। उन दिनों चटगांव क्रांतिकारी दल का संचालन महानायक मास्टर दा यानी सूर्य सेन कर रहे थे। प्रीति लता और उसकी सहेली की दिली इच्छा उनके दल में शामिल होने की थी, पर उस समय क्रांतिकारियों के दल में महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता था, अतः उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाए। इसी बीच प्रीति लता ने ढाका विश्वविद्यालय से आईए पास करके कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में बीए में प्रवेश ले लिया।
1: ठीक उसी समय 18 अप्रैल 1930 की रात इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने जिले के सभी शस्त्रागारों पर कब्जा कर मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में भारत की प्रथम गणतांत्रिक सरकार की घोषणा कर दी और सभी नर नारियों छात्र छात्राओं का देश की आजादी के लिए काम करने का आह्वान किया।

0: इसके बाद की घटनाओं ने युवक युवतियों को गहरे से प्रभावित किया। इस समय प्रीति लता और कल्पना दत्त का प्रभावित होना भी स्वाभाविक ही था। जलालाबाद का पहाड़ युद्ध, अमरेंद्र के आत्म उत्सर्ग, कालारपुर के खंड युद्ध, चंदन नगर की लड़ाई, ढाका में लोमेन की हत्या, चांदपुर में तारणी मुखर्जी हत्याकांड आदि घटनाओं ने उनके मन में भी क्रांतिकारियों के गोरिल्ला युद्ध का हिस्सा बनने की ललक तीव्र हो उठी।
1: उस समय चटगांव के क्रांतिकारी दलों के स्थानीय छात्र नेता मनोरंजन राय कलकत्ता में थे। उन्हें कलकत्ता से काफी मात्रा में एसिड चटगांव पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए उन्हें लड़कियों की जरूरत थी, क्योंकि खुफिया पुलिस पुरुषों पर नजर रखती थी, लड़कियों पर नहीं। प्रीति लता और कल्पना दत्त ने इस अवसर को भुना लिया और उनके दल में शामिल हो गईं। अब उन्हें मातृभूमि के लिए काम करने का रास्ता मिल गया था।
0: इसी दौरान प्रीति लता की भेंट क्रांतिकारियों की मददगार गुनुबुआ से हुई, जिनकी सहायता से

0: सन 1931 में ही प्रीतिलता और कल्पना दत्त को मास्टरदा, निर्मलदा, तारकेश्वर दस्तीदार, शैलेश्वर चक्रवर्ती और काली किंकर के दल में शामिल कर लिया गया। इसी वर्ष बीए पास करने के बाद 1932 में प्रीतिलता चटगांव के नंदन कानन उच्च बालिका विद्यालय में प्रधान अध्यापिका हो गई। साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। शीघ्र ही उसे सशस्त्र संग्राम का अनुभव भी मिल गया, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया। साथ ही भारी गोलाबारी के दौरान प्रीतिलता के साथी निर्मलदा और अपूर्व सेन शहीद हो गए।
1: सन 1932 की जुलाई में उन्हें यह खबर मिली कि चटगांव के सभी उच्च अधिकारी यूरोपियन क्लब में इकट्ठे होकर के मदिरा पी रहे हैं और नशे में नाच रहे हैं। बस फिर क्या था, योजना बनाई गई कि सभी को वहीं ढेर कर दिया जाए। क्रांतिकारी शैलेश्वर चक्रवर्ती के नेतृत्व में 10 अगस्त 1932 को आक्रमण की योजना बनी, पर वह सफल नहीं हो पाई। शैलेश्वर ने असफल होने पर विष खाकर के आत्मसर्ग कर लिया।
0: आखिर इस योजना को सफल बनाने का दायित्व प्रीतिलता के नेतृत्व में महिला प्रभाग को सौंपा गया। 24 सितंबर 1932 को आक्रमण का दिन निश्चित हुआ। प्रीतिलता के नेतृत्व में आक्रमण सफल हुआ। सारा इलाका घायलों की चीख पुकार से दहल उठा।

मुंह में डाल दिया और प्रीति लता ने शपथ के अनुसार आत्म आहुति दे दी, जैसे कह रही हो, विदा करो मां, अब तो हम जाते हैं।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति की ही उपज है और सभ्यता के विकास के साथ ही हमने अपने हर प्रश्नों हर समस्या का समाधान भी इसी प्रकृति से ही तो प्राप्त किया है। विशेष रूप से यदि भारतीय ज्ञान और परंपराओं की बात की जाए तो सदियों से हमारी यही विचारधारा रही है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव, उनके निर्माण में प्रकृति के 5 तत्वों जिन्हें की पंच महाभूत जाता है, इन्हीं का हाथ है। ये तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी इन्हीं तत्वों से संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज बनी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। और इन्हीं 5 तत्वों पर टिका है हमारा स्वास्थ्य भी। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विषय विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य श्री शैलेश मानकर जी। मानकर जी विगत 25 वर्षों से प्रैक्टिसरत हैं, लगभग 15 वर्षों से सुवर्ण प्राशन संस्कार एवं गर्भ संस्कार के नियमित परामर्शदाता और अनुसंधानकर्ता भी रहे हैं। ये अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जो आयुर्वेद के अध्ययन, परामर्श और चिकित्सा में समर्पित हैं। सन 2018 में मानकर जी को प्रतिष्ठित पंडित उद्धव दास मेहता राज्य स्तरीय चिकित्सा सेवा सम्मान से विभूषित किया गया है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: आज हम इस कार्यक्रम में आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की परंपरा रही है, उसमें हमारे स्वास्थ्य के संबंध में क्या प्रावधान है और इसमें प्रकृति की क्या भूमिका है।
2: आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है
1: जी।
2: हम जितने भी भारतीय लोग हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, यह सारा का सारा ज्ञान प्रकृति से ही अर्जित किया हुआ है। हमारी सारी परंपराओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। हमारे यहाँ एक सेंटेंस कहा जाता है, जैसा जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा वैसा इस पिंड में है। तो जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज हो रही है, वही चीजें रिफ्लेक्ट हमारे शरीर में, हमारे किसी भी पिंड में भी वही चीज हो रही है। मतलब हमने उनको एकाग्र किया है कि प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ हमारा कैसा एकाकार है। आपने मूल तत्व इसमें बता ही दिए हैं, जो हमारे पंच महाभूत होते हैं
1: जी।
2: जो पंच महाभूत में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है
1: जी।
2: यही हमारे तत्वों के, हमारे शरीर के, हमारे सृष्टि का मूल आधार है
1: जी।
2: इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। हम लोक भाषा में भी बोलते हैं ना, सामान्य रूप से ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा
1: जी।
2: ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जब हम दिनचर्या में, लोक भाषा में आराम से बोलते हैं। और यही इसका सार है कि जो पंच महाभूत है, उसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पंच महाभूत में ही हमारी सब्जियां भी उग रही है
1: जी,
2: हमारे पेड़ पौधे भी है, इसी जल का उपयोग भी हमारे शरीर में हो रहा है। हमारे शरीर का जो रिक्त स्थान है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी श्वास प्रश्वास को हम प्राण बोलते हैं
1: जी, प्राणवायु,
2: प्राणवायु
1: जी।
2: यह प्राण को ही हम वायु के रूप में हम देख रहे हैं। आकाश महाभूत से जो हमारा अंदर अंग है, जो खाली स्थान है
1: जी,
2: जो आमाशय है, पक्वाशय है, ऐसे जो स्टमक वगैरह है, इनमें जो होलो स्पेस है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: जो वायु हम सांस ले रहे हैं, यह हमारे प्राण को, वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे शरीर में जितना रक्त है, लसिका है, जो भी चीजें दो द्रव रूप में, तरल रूप में बह रहा है, वो हमारे सारे जल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: और हमारी मांस है, हड्डियां हैं, यह हमारे सर्व जो है वो सब का सब पृथ्वी महाभूत को ये कर रहा है।
1: और
2: साथ में रह गई बात अग्नि की, तो अग्नि जो हमारी पाचन अग्नि है, हम बोलते ही है कि हमारे शरीर में जठर अग्नि होती है, हमारा खाना जो पचता है वह अग्नि के माध्यम से ही पचता है। हमारी जितनी मेटाबॉलिज्म होती है वो 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में बता के रखी हैं।
1: 13 प्रकार की अग्नियां,
2: 13 प्रकार की अग्नियां। तो जठर अग्नि के साथ में हमारे सारे धातुओं का पोषण करने वाली, हम आज के समय में जो मेटाबॉलिज्म वगैरह बोलते हैं, यह सारा का सारा अग्नि के स्वरूप में हमारे ज्ञान परंपरा में उसको वर्णित किया है।
1: अच्छा।
2: और उत्तर उत्तर एक के बाद एक धातु पूरी तरह से जब सम्यक रूप से समान अवस्था में बनी रहेगी तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। मतलब हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से बताया है कि ये जो पंच महाभूत है
1: जी।
2: या हम आयुर्वेद के हिसाब से जो दोष सप्त धातु वगैरह सभी लेते हैं, इनकी सबकी साम्य अवस्था, ये सब एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो ही हम स्वस्थ कहलाएंगे।
1: अच्छा।
2: ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज बढ़ी है कम हो, वो चीज जो होती है इसके सम्यक रूप से, हमारे इसमें कहा भी गया है कि जब हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, जब हमारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हो
1: जी,
2: है ना, हमारी मानसिक स्थिति सम्यक हो और हमारी आध्यात्मिक भी, हम भारतीय परंपरा में आध्यात्म को भी मानते हैं, तो इनका जब सम्यक रूप से समान अवस्था जब रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ की परिभाषा ही ऐसी देके रखी है।
1: अच्छा।
2: स्वस्थ रहने के लिए सबका बैलेंस कॉम्बिनेशन होना
1: जरूरी
2: बेहतर है। और एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय हम पे छह चीज की काम करती हैं, छह तत्व काम करते हैं
1: जी।
2: जिसमें हमारे माता के भाव होते हैं, पिता के भाव होते हैं, उसी के साथ में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव होता है
1: जी।
2: जो मन का जो हमारा प्रभाव, जब ऐसी हमारी मानसिक स्थिति होती है
1: जी, जी।
2: उसका भी प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ में जो जीवात्मा है वह अपने कुछ गुणधर्म लेके आती है, तब जाके एक जीव का
1: निर्माण होता है,
2: निर्माण होता है और उसमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनता है और इसके कारण वह अस्तित्व में रहता है। यह सारा का सारा कॉम्बिनेशन, ये सारा कार्य जो है वो पंच महाभूत से बने हुए शरीर पर ही हो रहा है।
1: अच्छा, तो सर यहाँ पर एक प्रश्न मन में ये उठता है कि ये जो पांच तत्व है वो क्या हर मनुष्य में समान अनुपात में होते हैं या इनके अनुपात भी मनुष्य मनुष्य में अलग अलग होते हैं?
2: बिल्कुल सहज रूप से इसमें हर मनुष्य में इसके अनुपात में थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए हमको मनुष्यों में विभिन्नता मिलती है।
1: हाँ, अच्छा, मतलब रंग रूप जो है या हमारा स्वभाव है,
2: स्वभाव है, रंग रूप है, उनकी आदतें हैं, उनका आकार प्रकार है ना, उनके बाल, उनके अंगों का सब स्वरूप जो है, ये सारा का सारा उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे ही रहता है।
1: अच्छा।
2: और वो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन रहेगा तब वो अस्तित्व में आएगा
1: जी। तो ये तो बात हो गई पंच महाभूतों की, जिनकी हमारे शरीर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, हम बने ही इन्हीं पंच तत्वों से हैं। एक और टर्म आती है आयुर्वेद में त्रिदोष की, वात, पित्त और कफ। तो ये जो त्रिदोष हैं, पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि इन्हें त्रिदोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोष से हम आम इंसान तो दोष यानी कुछ एक कमी समझते हैं, और फिर उसके बाद एक बात ये आती है कि क्या इन त्रिदोषों का भी इन पंच तत्वों से कुछ संबंध है?
2: निश्चित रूप से
1: जी।
2: जो मूल तत्व है वो तो पंच महाभूत ही है
1: जी जी।
2: इसको जब हम शरीर रचना के रूप में देखते हैं तो हमारे त्रिदोष होते हैं, सप्त धातु होते हैं और तीन मल
1: जी,
2: ऐसे करके हमारे शरीर में मुख्य घटक आते हैं, समझ में आते हैं। ये जो तीन दोषों की बातें की गई है
1: जी,
2: ये बहुत स्पष्ट रूप से ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इसको धातु भी कहते हैं।
1: अच्छा,
2: है ना
1: जी।
2: लेकिन जब इनका प्रमाण कुछ कम ज्यादा होता है या बढ़ जाए या घट जाए तो ये उन स्त्रोतों को, शरीर के सिस्टम को, धातुओं को जब वो उसमें दोष उत्पन्न करते हैं, इसके कारण इनको दोष कहा गया है।
1: अच्छा।
2: इन दोषों के लिए जो हम गलती करते हैं सामान्य रूप से एक डायरेक्शन की, यार कफ बढ़ रहा है तो कफ को सुखा दो, है ना
1: जी।
2: पर कले के लिए कफ जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर कफ का ही स्थान है
1: जी।
2: तो जहाँ कफ की आवश्यकता है उसकी है, तो उसको हमको सुखाना नहीं है, इसलिए मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया कि आपको सम्यक अवस्था रखना है, उसको एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में ही रखना है। तो कफ के प्रमाण को सम्यक करना, उसको बैलेंस करना,
1: यानी हमें जितना जरूरी है उतना होना
2: उसके
1: चाहिए।
2: होना चाहिए
1: जी। ना कम ना ज्यादा,
2: ना कम ना ज्यादा, और उस व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए।
1: अच्छा, यानी हमारा स्वभाव और हमारे शरीर की जो गुणधर्म है उस पर भी ये चीज निर्भर करती है।
2: निर्भर करेगी
1: जी।
2: ये स्वाभाविक है हमारे प्रकृति में, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों की शरीर कदकाठी अलग होती
1: जी,
2: है
1: जी, बिल्कुल।
2: हमारे जो साधारण देश होता है वहाँ की कदकाठी अलग होती है, और जो गर्म देश रहते हैं वहाँ के लोग, तो उनके खान पान में भी उसके कारण अंतर आ रहा है
1: जी।
2: उस जगह के हिसाब से तुलना, उसको बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ये जो विभिन्नताएं आपको दिख रही है
1: जी,
2: ये विभिन्नताओं का प्रैक्टिकली हमको अप्रोच रखना चाहिए, इसलिए हमको हमारी बुद्धि लचीली रखनी चाहिए।
1: अच्छा, बिल्कुल सही बात है।
2: हम जब रिजिड होते हैं
1: जी,
2: तो हम फिर गलती करते हैं कि यहाँ ऐसा है, यह
1: जी।
2: तो हमको वो सारी गणनाओं के साथ में अपने आप को अपनी गणना करनी चाहिए।
1: तो सर अब प्रश्न यही आता है कि यदि ये त्रिदोष हैं और हमारे शरीर में इन तीनों की उपस्थिति है, अब इन तीनों का बैलेंस कैसे बना रहे?
2: एक विषय को बता देता हूँ कि हमारा जो वात दोष है, वात पित्त और कफ, ये तीन तत्व है। वात मतलब वायु, पर ये जो वायु बोल रहे हैं इसमें वायु तत्व और आकाश तत्व इनका सम्मिलित रूप है।
1: अच्छा, यानी पंच महाभूतों में से,
2: पंच महाभूत में से
1: आकाश और जो वायु है वो वात को बनाते हैं।
2: वात को बनाते हैं,
1: ठीक है।
2: इसमें जो पित्त होता है वह अग्नि और जल इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और जहाँ पे पृथ्वी महाभूत है वहाँ पे जल और पृथ्वी,
1: अच्छा,
2: जो हमारा कफ है, कफ दोष है। तो कफ कैसा होता है? थिक होता है, चिकट होता है। हमारा शरीर ही सबसे पहले मिट्टी से बना है ना, तो मिट्टी, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत मिलने के बाद जो कफ होगा उससे ये पिंड बनेगा। एक सरल सा उदाहरण देता हूँ, मिट्टी का घड़ा बनता है तो सबसे पहले मिट्टी और जल को मिला के
1: पेस्ट सा
2: बनेगा, उसको एक गूथेंगे तो एक ठोस आधार बनेगा। फिर हम उसके ऊपर, उसको चके के ऊपर रखेंगे, फिर उसका गतिमान करेंगे, तो वायु से उसके आकार का निर्माण होगा। उसको हम धीरे धीरे गति देने के बाद उसको आकार देंगे। आकार देने के बाद उसकी खाली जगह, भरी जगह जो आकार होगा, उसके बाद में हम उसका पचन करेंगे, उसको अग्नि में, उसको
1: पकाएंगे,
2: इस अस्तित्व में रहने के लिए जो उसका पाचन होगा, उसकी क्रियाएं रहेंगी, तब जाके एक मटका अस्तित्व में। ऐसी प्रकार से हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ का, कि वात के कारण हमारे जो सारे प्राण श्वास मैंने बोला था अंगों का निर्माण होगा, और पिंड जब तक रहेगा, पिंड को आकार देने का कार्य वात करेगा, और उसके मेटाबॉलिज्म, उसके पोषण का, उसमें हर समय जो चलने वाली जो क्रियाएं हैं उसको पाचन करके निर्माण करने के लिए हम पित्त का कार्य करेंगे।
1: तो यानी वात पित्त और कफ, ये पंच तत्वों की
2: देन है,
1: और इन्हीं का बैलेंस जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बना के रखता है।
2: स्वास्थ्य बना के रखता है। इसमें हमारे अंगों में भी जो विभाजन किया हुआ है, जो गले के ऊपर का जो छाती वाला कफ जैसा है, और कंठ और सिर, ये हमारे कफ को रिप्रेजेंट करता है।
1: अच्छा,
2: ये कफ का है
1: जी।
2: जो आपके नाभि के आसपास का एरिया, मध्य शरीर है हमारा, यह पित्त को रिप्रेजेंट करता है, और कमर से नीचे का हिस्सा वात को रिप्रेजेंट करता है।
1: जी।
2: ऐसे ही हमारा दिन की साइकिल है, ब्रह्म मुहूर्त हमारा जो दिन निकलने के पहले का जो समय है वो वात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन निकलते समय हमारा कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोपहर का समय हमारा फिर पित्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमारा शाम होने वाला समय फिर वात को रिप्रेजेंट कर रहा है,
1: अच्छा,
2: फिर शाम के बाद रात का समय जो है वो कफ को, और मध्य रात्रि जो है वो पित्त को। ऐसा हमारा डिवाइडेशन वात पित्त कफ के हिसाब से किया हुआ है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: हमने जो पैरामीटर बनाया, पंच महाभूत मूल आधार है, लेकिन वात पित्त कफ के हिसाब से हमने उसका व्यक्ति के शरीर में भी डिवाइडेशन किया हुआ है, दिनचर्या दिन में भी उसका डिवाइडेशन किया है, और वर्ष में भी डिवाइडेशन किया हुआ है।
1: अच्छा, वर्ष में किस तरह से सर?
2: वर्ष में हमारे 12 पूरे महीने होते हैं, उसमें 6-6 महीने का साइकिल, उसको दो हिस्सों में बांटा है, आदान काल विसर्ग काल।
1: अच्छा।
2: सरल भाषा में हम समझे तो हम पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति आती है
1: जी।
2: मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं
1: जी।
2: यहाँ से हमारा शरीर घटना शुरू होता है।
1: अच्छा।
2: और जुलाई के माह में कर्क संक्रांति आती है
1: जी।
2: जब भगवान दक्षिणायन होते हैं तब हमारा शरीर वहाँ से बनना शुरू होता है।
1: अच्छा।
2: तो ये 6 महीने हमारा शरीर घटता है, 6 महीने हमारा शरीर।
1: तो सर जो आप ये बोल रहे हैं शरीर का घटना या शरीर का बढ़ना, इससे क्या अभिप्राय है?
2: शरीर का घटना या बढ़ना से अभिप्राय यह है कि हमारी जितनी भी वाइटल एनर्जीज हैं, हमारी अग्नि है वही पचन का कार्य कर रही है ना
1: जी।
2: तो वो धीरे धीरे कम होते जाती है। जैसे हम मकर संक्रांति के बाद जब हमारा शरीर पूरी तरह से बलवान होता है तो जो फाल्गुन महीना आता है, जो होली का समय है
1: जी,
2: उस वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ का सबसे ज्यादा आधिक्य होता है। तो हमारा कफ प्रकोप का समय बता के रखा है।
1: अच्छा।
2: उसके बाद में हमारा कफ, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कफ धीरे धीरे शमन होने लगता है
1: जी।
2: उसके बाद में हम जो वात का समय है वो वर्षा ऋतु है।
1: अच्छा।
2: उस समय हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है और हमारा शरीर कम हो रहा है, हमारी अग्नि सबसे कम है, हम अपने शरीर में सबसे कम इम्यूनिटी वाले टाइम में जो है वो वर्षा
1: ऋतु में,
2: इसलिए आपने देखा होगा हमारी अग्नि भी कमजोर है उस समय, इसलिए हमारे मैक्सिमम उपास वो उस कालखंड में आते हैं।
1: संक्रमण का काल भी वही है।
2: तो मूवमेंट भी कम होना चाहिए और इम्यूनिटी वाइज हमने ऐसे पैरामीटर्स बनाए कि आप उससे सुरक्षित रह सके। तो हम कम खाना खाते हैं, सुपाच्य खाना खाते हैं और हल्का खाना खाते हैं। वैसे ही जैसे शरद ऋतु आती है तो नवंबर दिसंबर के महीने में जब शरद ऋतु, तो शरद पूर्णिमा हमारा एक ऐसा माइलस्टोन है जब हम दूध को औटा औटा के गाढ़ा करके पीते हैं। मतलब कर्क संक्रांति के बाद धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ना शुरू होती है तो पहला माइलस्टोन हमको मिलता है शरद पूर्णिमा का।
1: अच्छा
2: जी। कि हमारी अग्नि अब बढ़ गई
1: है,
2: अब आप गरिष्ठ भोजन भी आप कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इस तरीके से फिर हम वहां से भारी अन्न लेते हैं और हमारा शरीर, हम हेल्दी सीजन बोलते हैं ना, इस समय जो भी खाइए वो पच जाएगा। हाँ। आपके शरीर को लगेगा
1: जी। ठंड की ऋतु में जैसे बहुत फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, घी खाइए,
2: आपका खाना पूरा सारे षड्रसात्मक होके उसको पूरा बलिष्ठ होके उसमें सारे न्यूट्रिशन हो, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी।
1: अच्छा जी।
2: सामान्य ऋतुओं के हिसाब से और इस समय हमारे शरीर का निर्माण होगा। तो शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का काल है, ऐसा हमारा डिवाइजेशन हो गया। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप है, वर्षा ऋतु में आपका वात का प्रकोप है और जो शरद ऋतु है उसमें पित्त का प्रकोप
1: जी। यानी सर यदि हम दिन देखें तो उसके अलग अलग कालखंड में वात पित्त और कफ का प्रभाव अलग अलग है। महीने देखेंगे या वर्ष देखेंगे या ऋतुएं देखेंगे तो उसमें भी हमको वात पित्त और कफ का अलग अलग प्रभाव है। और शायद यही हमारे खान पान में भी हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम किस मौसम में किस तरह की चीजें लें या फिर दिन में और रात में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए।
2: निश्चित रूप से अभी वर्तमान में आपके पास में ऐसे लोगों की बढ़ोतरी होगी कि सर देखिए मैं इतना संभल के रहता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो भी बीमार हूँ
1: जी।
2: तो मैं उनसे वही आग्रह करता हूँ कि जब मौसम बदला तो अपने अपने कपड़े बदले, तो मौसम बदला तो अपने अपना आहार क्यों नहीं बदला।
1: जैसे सर्दी में हम स्वेटर यूज कर रहे हैं या गर्मियों में पतले कपड़े यूज कर रहे हैं, सेम ऐसे ही हमें हमारा आहार भी मौसम के अनुसार
2: करना चाहिए,
1: बदलना चाहिए।
2: हाँ, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको ये परिवर्तन करना ही चाहिए। हमारी दिनचर्या में, हमारी ऋतुचर्या में, हमारे शास्त्र में बता के रखा है
1: जी,
2: कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, उसको वो अपने गति से चल रही है।
1: जी।
2: उसमें ऋतुएं बदल रही है, उसके स्वरूप है, उसके मापदंड सामने आ रहे हैं। हमको हमारे शरीर को उसके अनुसार बदलना है। देश काल में हमको कुछ कुछ अंतर मिलते हैं, इसलिए कई बार हमको पता चलता है कि इस सीजन में ये लोगों का एडॉप्ट काम करने के तरीके में और वहाँ के काम करने के तरीके में अंतर है, क्योंकि वो देश का प्रभाव है। तो इसीलिए मैंने बोला कि लचीली बुद्धि के साथ अगर आप एकदम से रिजिड हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऋतु और उसके हिसाब से तालमेल बिठाना।
1: अब सर ये तो बिल्कुल ऊपरी बातें हो गई आयुर्वेद से संबंधित, तो आप जो दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे हम उसी पर आते हैं कि हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए।
2: दिनचर्या भी जो हमारी दोषों के हिसाब से ही होनी चाहिए।
1: अच्छा, वात पित्त और कफ के हिसाब से।
2: वात पित्त कफ हमने डिवाइडेशन करके रखा हुआ है। अब एक सहज प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए।
1: हाँ जी,
2: इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है यह वात दोष का समय है।
1: अच्छा।
2: हमारे शास्त्र में स्पष्ट बताया हुआ है कि हमारे शरीर में जो पित्त है, जो कफ है, हमारी जो 37 धातुएं हैं वो सब के सब पंगु है। इसको जो मूवमेंट देना है वो वात करेगा।
1: अच्छा।
2: तो जब आपके शरीर के मूवमेंट को उसको गति देने का कार्य करना है तो वात के कालखंड में वह गति देने का कार्य सबसे उत्तम रीति से हो सकता है।
1: जी बिल्कुल।
2: अर्थात जब हम जो धातु या जो व्यक्ति जिस समय बलवान है उससे उसी का कार्य कराना चाहिए।
1: सही बात है।
2: बिल्कुल सरल सहज भाषा में तो जब हमारा वात बलवान है तो हमको वात का कार्य कराना चाहिए।
1: अच्छा।
2: तो जब हमको गति देने का कार्य है इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे यहाँ वात भी 5 प्रकार की है, पित्त भी 5 प्रकार के है और कफ भी 5 प्रकार के, ये उनके कर्मों के हिसाब से डिवाइडेशन है।
1: अच्छा अच्छा जी।
2: तो वात में हम बोलते हैं ना, हम पूजा करते हैं तो उसमें प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, तो इसमें जो अपान वायु है वो अपने शरीर से मल भाग को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको एक वेग आएगा और हमारा जो मल है उसको निष्कृषण करने में हमको सहायता होगी। इसीलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसी तरीके से सोने का भी समय, रात्रि के समय हम जल्दी खाना और जल्दी सो जाना, जब हमारा पित्त का समय चल रहा है
1: जी,
2: और वात का समय, तब हमको शरीर को रेस्ट दे रहे हैं
1: जी।
2: रात के खाने के बाद 100 कदम चलना, क्योंकि उसके बाद हमारा सारा शरीर शिथिल होने वाला है
1: जी,
2: और फिर हमको सोना, ऐसा एक संतुलन बनाने के कार्य दोषों में बता के रखा हुआ है।
1: तो सर, दिनचर्या में जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, अब उसके बाद हमारी एक आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?
2: हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद हमारे इसमें जो नियम बताया हुआ है कि हमको शौच के लिए जाना है। सबसे पहला कर्म मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद हमको जो इच्छा है, तो उठने का क्या नियम बताया है, बहुत सरलता से बताया हुआ है कि रात्रि का भोजन पचा है या नहीं पचा है, इसका चिंतन करना, और उसके बाद में बिस्तर से पैर नीचे करना।
1: अच्छा,
2: कि अगर हमने लेट खाया है,
1: है ना?
2: तो हमको थोड़ा सा, एक बहुत अच्छा सा उसमें सम्यक रूप से बताया कि आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और सो जाइए।
1: अच्छा जी,
2: है ना? तो ये जो हम थोड़ा सा सोते हैं कि अलार्म बजने के बाद में हमको जो छोटी सी नींद आती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है,
1: जी, ये तो होता है।
2: उसी तरीके से रात में जब हम इसका चिंतन करके हमको देखते हैं कि पेट थोड़ा भारी लग रहा है या ऐसा है, और हम थोड़ा सा सो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी तेज होके फिर आपको हल्कापन शरीर में आता है।
1: अच्छा,
2: आप बिल्कुल प्रैक्टिकल इसको देख पाएंगे। और उसके साथ ही सवेरे उठते समय हमारे यहाँ कुछ नियम बताए कि कराग्र वस्ते करना है
1: जी, जी,
2: मतलब आपको हाथ जोड़ना है, हाथ में भगवान का आराधना, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, और उनको देखना है। उसके बाद हमको हाथ को रब करना है, रगड़ना है। हाथ को गर्म करने के बाद उसको आंखों पे सेक देना है
1: जी।
2: मतलब हमारा शरीर एक सामान्य तापमान पे कार्य करता है, उसको प्रकृति के साथ जब तालमेल आप बिठा लो, तब आप धरती पे पैर रखो। तो उसके पहले हम धरती के विषय भी क्षमा मांगते हैं, विनम्रता का भाव लाते हैं, साथ में हम उस टेम्परेचर के साथ एकाकार होने के बाद में बिस्तर से उठ के बाहर जाते हैं, क्योंकि हम रात भर अपने शरीर को ढके हुए रहते हैं
1: जी,
2: और हमारा शरीर का एक तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है
1: जी। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कीजिए सर, कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है?
2: ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो बहुत स्पष्ट बता के रखा है कि सूर्य उदय के 48 मुहूर्त पहले।
1: अच्छा जी,
2: मतलब घोर अंधकार वाला जो समय होता है 3:30 से 4 बजे का, 4-4:30 बजे का जो समय रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त वाला है, और उस समय हमको उठना चाहिए। इसमें
1: तो हम अब उठ गए और हम फ्रेश भी हो गए, उसके बाद फिर हमारी क्या दिनचर्या है?
2: इसके बाद में हमको अपना दंत धावन, अपने दांतों को जो मुंह में है, क्योंकि रात भर का जो भी कफ है
1: जी,
2: जो सिक्रेशंस हैं, जो हमने रात को भोजन किया वो हमारे मुख में है, और उस कफ का आवरण है। मैंने फिर बताया कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो कफ का कालखंड होता है।
1: अच्छा,
2: तो अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो सूर्योदय के बाद उठने के बाद आपके मुंह में एक कफ का आवरण मिलेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो कफ के आवरण का प्रमाण बहुत कम हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: और आपके जितने मुख के रोग है उसमें कफ का आवरण रहेगा तो ही मुख के रोग बढ़ने वाले हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: जिसके कारण हम बोलते हैं कि मंजन करना है। अब मंजन कैसे करना है, तो मंजन के लिए अपने शास्त्र में बताया कषाय चीज, जैसी चीज जो थोड़ी सी रूखीपन लेके आए, जो कफ का शमन करे।
1: अच्छा,
2: तो इसलिए हमने दतून बताई, है ना? हम राख की बात की, तो राख मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो कंडे की राख होती है उसको ऊपर के हटा के जो बीज का सफेद राख होती है उसका इस्तेमाल करना, और एकदम महीन
1: महीन जी,
2: उसको आप जब घुमाएंगे तो वो सारा कफ निकल जाएगा, और उससे मुंह में एक सूखापन आपको समझ में आएगा, कफ का आवरण खत्म हो जाए। तो हमको मंजन उससे करके फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए।
1: तो सर, जैसे आपने बताया कंडे की राख, और वो भी कंडा जो है वो मतलब बिल्कुल बारीक राख, तो हर एक व्यक्ति को तो आज तो उपलब्ध नहीं है, या वो अरेंज नहीं कर सकता, तो उसका कोई वैकल्पिक उपाय है?
2: वो एक प्रकार है, हमने उसका एक उदाहरण दिया था, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जैसे बबूल,
1: हाँ,
2: हम बोलते हैं बबूल, नीम है, बबूल है, इनके जो दांत होती है, आपका वज्रदंती है,
1: अच्छा,
2: है ना?
1: जी जी,
2: इनका उपयोग होता है ना? तो ऐसे जो औषधि द्रव्यों के जो चूर्ण होते हैं उनके माध्यम से हम अपना मंजन कर सकते हैं। और एक सरल सा है कि हमारे यहाँ पहले मुख स्वच्छता में, खाना खाने के बाद, पंगत में बैठने के बाद नमक से भी,
1: हाँ, जी, जी, मुंह,
2: क्योंकि
1: जी,
2: नमक जो रहता है वो कफ के आवरण को हटा देता है,
1: हटा देता है जी।
2: पहले इसका लोगों ने मना किया, फिर टूथपेस्ट में नमक की मार्केटिंग करने लगे, तो वो आपको उस कफ के आवरण को हटाने वाली जो चीज़ें
1: जी
2: हैं
1: जी
2: उनको
1: हाँ
2: अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप अपने मुख को स्वस्थ रख पाएंगे। और
1: अच्छा
2: ऐसा करना है कि वो इतने कड़े ना हो कि
1: हाँ
2: आपके मसूड़ों को और दांतों
1: छिल
2: को
1: जाए जी
2: नुकसान पहुंचाए,
1: जी
2: इसलिए
1: जी
2: जितना सॉफ्ट और जितना महीन होगा उतना उसका ध्यान रखना है।
1: सर एक चीज़ और आती है कि ज़्यादातर ऐसा आता है कि सुबह उठकर आप से जितना भी पानी पीते बने कम से कम एक ग्लास आप पानी पिए, तो ये क्या दिनचर्या में होना चाहिए हमारे?
2: निश्चित रूप से हमारे यहाँ उषापान ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है।
1: अच्छा जी
2: उषापान मतलब शरीर के तापमान का गुनगुना पानी हमको पीना है, ना ठंडा पीना है ना गर्म पीना है। प्रकृति के हिसाब से जिसकी जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से हमारे पानी का प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, पर 1 लीटर एक गिलास से 2-3 गिलास तक पर्याप्त है, इससे
1: अच्छा।
2: ज्यादा पानी की
1: एक
2: आवश्यकता
1: वयस्क व्यक्ति को,
2: एक व्यक्ति को
1: जी, तो ये आदत तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही डलानी
2: हाँ
1: चाहिए कि
2: उसके आजकल बोलचाल में हम बहुत आसानी से बोलते हैं ना कि हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना है,
1: जी जी
2: तो पानी की रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। तो उसके कारण भी हमको क्योंकि सवेरे लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फायदा ही करेगा, पर शरीर तापमान का पानी लीजिए।
1: अच्छा नहीं ना तो बहुत गर्म ना ठंडा।
2: ठंडा
1: अब हमने मंजन कर लिया, उसके बाद अब दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है?
2: इसके बाद जो है हमको जो है आंखों का कान नाक
1: जी
2: इनकी स्वच्छता भी रखनी चाहिए, स्नान
1: जी,
2: करना चाहिए।
1: हाँ जी
2: है ना, स्नान करने से उसका बहुत महत्व है कि उससे आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है,
1: अच्छा
2: आपके शरीर में लाघवता आती है, प्रसन्नता आती है, और आपका जो फ्रेश तो स्वाभाविक है हमारा जितना आलस्य उससे खत्म होता है, पेट की अग्नि भी दीप्त हो रही है मतलब हमको उसके बाद भूख भी लगने वाली है,
1: अच्छा
2: और हमारी दिनचर्या को एक अच्छा मिलना चाहिए। तो शरीर की स्वच्छता लोकल हाइजीन जो हम मेंटेन करते हैं, जैसा ओरल हाइजीन हमने मेंटेन किए
1: जी,
2: वैसे हमको जितनी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी स्वच्छ रखना चाहिए। और उसको स्वच्छ रखने के बाद स्नान, तो हमारे पूरे शरीर को स्वच्छ रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
1: अच्छा।
2: उसके बाद में हमको निश्चित रूप से जो अल्पाहार, तो उसके पहले हम भारतीय परंपरा में क्या करते हैं कि अपना जितना कार्य रहता है समर्पण से करते हैं, तो पूजा करते हैं या भगवान के सामने अपना शांत मन से जो सवेरे का अल्पाहार हमको करना चाहिए।
1: तो सर अभी तो हम जो चीज देखते हैं कि नाश्ता जो होना चाहिए वो बहुत हैवी हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद लंच जो हो आपका वो, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत आगे खसक गया है लंच का, लंच टाइम जो है वो 1:30 बजे 2 बजे वाला हो गया, तो वो लाइट हो जाए, बट जो सुबह का ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप अल्पाहार बोल रहे हैं, वो बहुत हैवी होना चाहिए, ये सही है ये कंसेप्ट या हमारे हिसाब से गलत है आयुर्वेद के हिसाब से?
2: सही गलत का विषय नहीं है, एरिया एरिया वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे। आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पे परंपरागत रूप से उनका जो सवेरे का नाश्ता रहता है वो बहुत हैवी रहता है,
1: जी जी पराठे आलू के पराठे
2: सब चीजें। हमारे यहाँ पे उतना हैवी नाश्ता हम नहीं करते
1: नहीं।
2: लेकिन इसमें सवेरे आपको कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में ही अन्न ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा।
2: हमारा कंसेप्ट बहुत सीधा है, हमको दोपहर का जो भोजन है वह 9:10 से लेके 12 बजे के बीच में, मैंने समय का कालखंड थोड़ा सा ज्यादा रखा है लेकिन हमको इस बीच में हमको कर ही लेना चाहिए।
1: अच्छा।
2: तो 12 बजे तक अगर आपका भोजन हो जाता है तो वो भोजन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। सादा सा नियम है कि दोपहर का भोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, रात का भोजन दोपहर के भोजन से कम होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: ऐसा एक हमारे यहाँ पे नियम है। दोपहर के भोजन के बाद हमको बाई करवट लेटना है।
1: अच्छा।
2: और रात के खाने के बाद हमको कम से कम 100 कदम चलना है, स्वस्थ रहने का ये नियम है, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं हमारे शरीर की गति बनी रहती है, रात को हमको शिथिलता के ऊपर, तो खाना खाने के तुरंत इमीडिएट बाद नहीं सोना है, उसके 2 घंटे बाद सोना है
1: जी।
2: तो इस तरीके से हमारा भोजन का नियम है, सवेरे जो है वो कम मात्रा में, दोपहर का जो भोजन है वह थोड़ा सा अधिक मात्रा में जो हमारी शरीर क्षमता के हिसाब से, और उसका भी नियम ये बताया हुआ है कि आपको जब भी भोजन करना है तो आपको आधा पेट भोजन से, 1/4 भाग पानी से और 1/4 भाग खाली रखना है।
1: अच्छा।
2: ऐसा एक कैलकुलेशन करना चाहिए कि हमको जितनी भूख है उसको हम जब खा रहे हैं तो पेट में इस तरीके की मात्रा हमको अन्न की रखना चाहिए।
1: जिस तरह से आपने दिनचर्या को बताया उसी तरह से आप हमें रात्रिचर्या के बारे में भी बताइए।
2: रात्रिचर्या का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीन मुख्य सूत्र दिए हुए हैं, तो निंद्रा का महत्व इसी से सिद्ध हो जाता है। तो जब हम रात को सो रहे हैं तो नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात्रि भोजन के बाद में आपको कम से कम 100 कदम चलना है और 1.5 से 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाना है
1: भोजन के जी,
2: है ना। तो इससे हमारा जो भारीपन होता है पेट का वो भी कम होगा और रात में जो डाइजेशन की समस्या आने वाली है वो नहीं आएंगी।
1: अच्छा,
2: इसके साथ में हमारे यहाँ दिनचर्या में कुछ चीजें जुड़ी हुई थी। जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको पैर के तलवों पे घी और पानी की मालिश करनी चाहिए।
1: अच्छा,
2: उसको तेल पे जितनी तेजी से उसको रगड़ेंगे उसके कारण हमारे दिन भर के जो पैरों की थकान होती है वो भी कम होती है और हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है। हमारा जो सोने का बिस्तर होना चाहिए वो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, सरल हो, बहुत ऊंची गर्दन, तकिया भी नहीं लेनी है
1: जी।
2: मुख्य रूप से हमको गर्दन पे सहारा देके सोना चाहिए
1: जी।
2: और जब हम सो रहे हैं तो शांत चित्त हो। इसीलिए फिर से बहुत सारे लोग उस समय हमारे इष्ट का ध्यान करते हैं
1: जी,
2: कि
1: जी।
2: आज हमने दिन भर में जो भी गलतियां की है उसकी क्षमा याचना करके हमको फ्रेश होने के लिए। तो जब आपका मन स्थिर होगा तभी आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी
1: जी।
2: तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको सोना चाहिए। तो और हमारे पैरों के मैंने मसाज के बारे में आपको बता ही दिया। आंखों के में भी है कि हमको उसमें आई ड्रॉप वगैरह कुछ डाल लेना चाहिए तो दिन भर का जो हमारे आंखों पे स्ट्रेन है वो ठीक होता है। साथ में रात में सोते समय 1 से 2 बूंद नाक में गाय का घी अवश्य डालें।
1: अच्छा,
2: क्योंकि हमारा जो नाक है वो हमारे मस्तिष्क का, सिर का द्वार ऐसा

0: तभी हमारी नींद की क्वालिटी को हम उत्तम मिलते हैं। जब सवेरे उठते हैं तब हमको हल्कापन लगना चाहिए, आसानी से आंखें खुलनी चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए, है
1: हाँ, हम
0: ना,
1: खुश होके उठे
0: खुश होके
1: जी।
0: उठें, तो हम सम्यक नींद, एक अच्छी नींद जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें सामने हमको मिलती है, इसका चिंतन करना चाहिए।
1: चलिए सर, आपने आज इतनी आयुर्वेद का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है उसे समझाया, हमारी क्या दिनचर्या होना चाहिए, ये जो पांच पंच महाभूत है जिन्हें पांच तत्व जो कहा गया है, उनसे हमारा जो शरीर बना है, उनके साथ जो वात पित्त कफ इनका जो बैलेंस है वो हमारे शरीर में किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण और सार गर्भित जानकारी दी। सर आप यहाँ आए, अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने ज्ञान में से मैं जितना आपके समक्ष बोला हूँ उससे आपके श्रोताओं को स्वास्थ्य का लाभ होगा, यही इच्छा के साथ में आप सभी को प्रणाम।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और समन्वय सहयोग सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि स्वास्थ्य लाभ करने के लिए स्वामी जी हिमालय की यात्रा पर गए थे। वे अल्मोड़ा से उत्तर प्रदेश होकर पंजाब गए और फिर कश्मीर की तरफ चल पड़े। सेवियर दंपति भी उनके साथ जाने वाले थे, पर श्रीमान सेवियर की तबीयत बिगड़ जाने पर वे दोनों मरी में ही रुक गए। उन्होंने अगली यात्रा के लिए स्वामी जी को 800 रुपए भिजवा दिए, परंतु स्वामी जी ने अपने एक दोस्त से कहा,
1: योगेश, हम लोग तो फकीर हैं, इतने रुपए लेकर क्या करेंगे, रहने से ही खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा होगा कि आधा ही लेकर बाकी लौटा दूं, इतने से ही मेरे तथा मेरे संगियों के भ्रमण का खर्च पूरा हो जाएगा।
2: मैरी से तांगे पर सवार होकर 8 सितंबर को वे बारामुल्ला पहुँचे और वहाँ तांगे को छोड़कर तुरंत ही श्रीनगर जाने के लिए नाव में चढ़ गए। कई मायने में ये नौका भ्रमण बड़ा ही आनंददायी था। 10 सितंबर को श्रीनगर पहुंचकर वे लोग कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश श्री ऋषिवर मुखोपाध्याय के घर अतिथि बने। मुखोपाध्याय महाशय ने अपने स्वभाव सुलभ अतिथि परायणता के चलते स्वामी जी के लिए हर प्रकार की सुविधा की व्यवस्था कर दी। इसी सुअवसर का लाभ उठाकर वहाँ के निवासियों ने भी उनके विद्वतापूर्ण उदार और सरल वार्तालाप को सुनकर स्वयं को धन्य माना।
0: 13 सितंबर को वे राजप्रसाद देखने गए। वहाँ दो उच्च पदस्थ राज कर्मचारियों ने उनका सप्रेम स्वागत किया और उनमें से एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें बताया कि राजा के भाई तथा सेनापति राजा राम सिंह अगले दिन उनका दर्शन पाने के उत्सुक हैं। तदनुसार अगले दिन उन्होंने महाराजा के भाई राम सिंह के साथ भेंट की। महाराजा उस समय जम्मू में थे। राम सिंह ने स्वामी जी के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करते हुए उन्हें कुर्सी पर बैठाया और स्वयं मित्रों एवं कर्मचारियों के साथ नीचे बैठे। वहां पर स्वामी जी ने धर्म, हिंदुओं की विभिन्न समस्याओं और उनकी उन्नति के उपाय के विषय में 2 घंटे तक महत्वपूर्ण तथा मनमोहक चर्चा की। इस पर मुग्ध होकर राम सिंह ने कहा कि वे भी स्वामी जी की योजनाओं को रूप देने में यथासाध्य सहायता करने को प्रस्तुत हैं।
2: श्रीनगर के अनेक साधु, पंडित, विद्यार्थी, राज कर्मचारी और जिज्ञासु लोग स्वामी जी के व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर उनके निवास स्थान पर आया करते थे। प्रातः और संध्या के समय प्रायः ही धर्म चर्चा और उसके बाद संगीत आदि होता था। शंका समाधान के लिए आने वाले अधिकांशतः कश्मीरी या पंजाबी लोग होते थे, इसलिए चर्चा हिंदी या अंग्रेजी में हुआ करती थी। सभी आगंतुक उनसे वार्तालाप करके संदेह मुक्त एवं खुश लौटते थे। एक बार आने से ही किसी का जी नहीं भरता, पूछने को कुछ न कुछ बाकी रह जाने से और केवल उनका दर्शन मात्र करने और उनकी मधुर बातें एवं संगीत सुनने के लिए ही लोग बारंबार आया करते।
0: स्वामी जी स्वयं भी भूस्वर्ग कश्मीर की इस सुंदर नगरी के सुंदर परिवेश तथा शीतल जलवायु के बीच रहकर काफी आनंद का अनुभव कर रहे थे। राजा अमर सिंह के वजीर क्रमशः उनके भक्त हो उठे और राजा के आदेश पर उन्होंने स्वामी जी के लिए एक हाउस बोट की व्यवस्था कर दी। इसके बाद से अवसर पाते ही स्वामी जी उस पर घूमने जाते। नैसर्गिक सौंदर्य का भंडार कश्मीर में झील के सतह पर नाव में निवास तथा भ्रमण करने में सचमुच अपना एक अलग ही माधुर्य था। बीच में स्वामी जी नौका में सवार होकर आसपास के स्थानों का भ्रमण भी करने जाते तथा बाजार में घूमते तथा कश्मीरी वाद्य संगीत या गाने कंठ संगीत सुनते।
2: इसी प्रकार 20 सितंबर को उन्होंने पामपुर नामक स्थान पर जाकर वहां केसर के खेत देखे और रात को वहीं रुके। 22 तारीख को उन्होंने अनंतनाग एक और बीज बिहार का मंदिर देखा। अगले दिन पैदल ही मारतंड नामक स्थान में जाकर उन्होंने वहाँ के पंडितों के साथ धर्म चर्चा की। वो रात स्थानीय विश्रामागार में बिताकर 24 सितंबर को वे अक्षय बल नामक स्थान की ओर रवाना हुए। मार्ग में अवंतीपुर के निवासियों ने अत्यंत आग्रह पूर्वक उन्हें एक अत्यंत प्राचीन पांडवों का मंदिर दिखाया। किंवदंतियों के अनुसार ये मंदिर पांडवों के समय का है।
0: स्वामी जी ने घूम घूम कर उस सुंदर मंदिर का गठन, उसकी नक्काशी और पत्थर पर खुदाई से बनी जाली का काम देखा। मंदिर पुराना था। स्वामी जी के साथ लाटू महाराज भी थे। दोनों में अक्सर नोकझोंक और हंसी मजाक हुआ करती थी। मंदिर देखने के बाद लाटू महाराज ने स्वामी जी से पूछा,
3: क्यों, क्या ख्याल है, मंदिर कितना पुराना होगा?
1: ये तो कम से कम 2000 साल पहले बना होगा। ये नक्काशी का काम अति दुर्लभ है।
3: क्यों, ऐसा क्या है इस मंदिर में? और तुम कैसे कह सकते हो कि ये 2000 साल पुराना है?
1: तुम ठहरे अनपढ़ गंवार, तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो आगे बढ़ो, और हो भी अगर विद्वान तो मेरे जैसे मूर्ख को समझ नहीं सकते।
0: सब लोग हंस पड़े।
2: दोनों में गहरी दोस्ती भी थी। श्रीनगर में वे लोग एक हाउस बोट में रहने गए। लाटू महाराज ने देखा कि बोट पर मांझी लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा,
3: ए नरन, ए तुम जाओ उस हाउस बोट में रहने, मैं नहीं जाऊंगा।
1: क्यों, चलो ना, बहुत मजा आएगा, झील में तैरेंगे, ऐसा और कहीं मिलेगा नहीं।
3: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
1: बात क्या है, साफ साफ कहते क्यों नहीं?
3: इन नावों में मांझियों के परिवार भी रहते हैं, इन औरतों के साथ एक ही नाव पर मैं नहीं रह सकता भाई।
1: ओह तो ये बात है, अरे तू अकेले थोड़े ही रहेगा, मैं हूँ ना, मेरे रहते तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
0: लाटू महाराज आश्वस्त होकर बोट में रहने के लिए तैयार हो गए।
2: काश्मीर और श्रीनगर स्वामी जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा है,
1: इस प्रदेश की जो प्रशंसा सुनने में आती है वो सत्य है, इतना सुंदर स्थान दूसरा नहीं है, और लोग भी देखने में सुंदर हैं। यहाँ के सौंदर्य की सब बातें लिखकर क्या होगा, मेरी समझ में यही एकमात्र स्थान योगियों के अनुकूल है। मैंने काफी भ्रमण किया है, परंतु ऐसा देश मेरे देखने में नहीं आया।
2: वहाँ के सौंदर्य पर मुग्ध होकर भी स्वामी जी लिखना नहीं भूले कि काश्मीर के लोगों का जीवन स्तर काफी नीचा है, पर हाँ पूरे भारतवर्ष के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। पत्र में लिखित अन्य ज्ञातव्य बातें ये हैं कि स्वामी जी ने काश्मीर के द्रष्टव्य स्थानों के अवलोकन और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु 1 महीने तक पानी में भ्रमण करने का संकल्प किया था। काश्मीर में उनके संगी थे सदानंद, कृष्णलाल और लाटू निरंजन, दीनू और खोका। उन्होंने निश्चित किया था कि पहाड़ से उतरते ही वे दल के परवर्ती 4 लोगों को कलकत्ता वापस भेज देंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य संभव नहीं है, बल्कि 20-25 दिन के भीतर शुद्धानंद, सुशील और हरिप्रसन्न को उन्होंने अम्बाला भेज देने को लिखा था।
1: इस समय राजा साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनके मंझले भाई सेनापति यहाँ है। उनकी व्यवस्था में एक व्याख्यान का आयोजन चल रहा है, जैसा होगा बाद में लिखूंगा। 2 दिन के अंदर यदि हो तो मैं ठहरूंगा, नहीं तो भ्रमण करने निकल पड़ूंगा। सेवियर मेरी में ही है, टांगों के झटकों से उनका शरीर बड़ा ही अस्वस्थ हो गया है। काश्मीर सरकार ने अपना एक बजरा मुझे उपयोग करने को दिया है, ये काफी सुंदर तथा आरामदायक है। उन्होंने जिले के तहसीलदारों को भी आदेश जारी कर दिया है। हमें देखने के लिए लोग सदल बल यहाँ आ रहे हैं, और हमें सुखपूर्वक रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है सब कर रहे हैं।
0: श्रीनगर लौटने के बाद स्वामी जी का पुनः जनसाधारण के साथ मिलना जुलना तथा आनंदपूर्ण वार्तालाप आदि चलने लगा। बीच बीच में वे संभ्रांत लोगों के घर से भोजन के लिए निमंत्रण भी पाते थे। ऐसे अवसर पर गृहस्थगण प्राचीन रीति से उनके प्रति अतीव सम्मान व्यक्त करते तथा यत्न पूर्वक सारी व्यवस्था करते। एक बार एक अभिजात परिवार से निमंत्रण पर वहाँ संवेद ब्राह्मण पंडितों ने पुष्प वर्षा की तथा मालाओं से विभूषित कर उनका स्वागत किया, और भोजनोपरांत साथ साथ आकर उनके निवास स्थान तक पहुँचा गए।
2: इस तरह की घटनाओं से ये समझा जा सकता है कि स्वामी जी अपने देशवासियों की कैसी हार्दिक श्रद्धा पाने में समर्थ हुए थे, और इस घटना के साथ पूर्ण वर्णित दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के उनके तथा कथित बहिष्कार किए जाने वाली घटना से तुलना करने पर ऐसा लगता है कि जिनके दिमाग में प्रगति को रोकने की दुर्बुद्धि का उदय होता है, वे लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितने ही प्रकार के दुराचरण में लिप्त हुआ करते हैं।
0: क्रमशः उनके कश्मीर से विदा लेने का समय आ पहुंचा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही उन्होंने श्रीनगर से नाव में प्रस्थान किया और वुलर झील को पार करते हुए बारामूला में जा पहुंचे। वहां से तांगे में सवार होकर 8 अक्टूबर की शाम को वे मरी आए। यहां पर उनका अपने पूर्व रचित पंजाबी तथा बंगाली अनुरागियों के साथ पुनर्मिलन हुआ। सेवियर दंपत्ति तब भी वहीं थे, उनके साथ भी भेंट हुई। 14 अक्टूबर की रात को स्थानीय लोगों ने उनका अभिनंदन किया, और इसके उत्तर में उन्होंने एक मनोहारी भाषण दिया। उस समय वे निवारण बाबू के मकान पर ठहरे थे और सभा भी वहीं हुई थी।
2: मरी से 10 अक्टूबर को अपने पुत्र द्वारा उन्होंने ब्रह्मानंद को सूचित किया था कि हरि प्रसन्न संभवतः शीघ्र ही अंबाला पहुंचेंगे, क्योंकि सेवियर यथाशीघ्र हिमालय में पूर्व कल्पित आश्रम की स्थापना करने को उत्सुक हैं। भूमि चयन और गृह निर्माण आदि विषयों में हरि प्रसन्न महाराज को विशेष अनुभव था। पहले वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके थे। उसी पत्र में श्री माता जी को 200 रुपए भेजने का अनुरोध भी है। उसी दिन एक अन्य पत्र में वे स्वामी अखंडानंद को एक अनाथ आश्रम स्थापित करने के लिए उत्साहित करते हुए लिखते हैं,
1: मुसलमान लड़कों को भी लेना होगा, परंतु उनके धर्म को नष्ट मत करना। हिंदू मुसलमान ईसाई आदि सभी जातियों के लड़के लो, परंतु प्रारंभ में धीरे धीरे, अर्थात उनके खाने पीने की थोड़ी अलग व्यवस्था हो और धर्म की जो सामान्य बातें हैं वही उन्हें सिखाना।
0: स्वामी जी के मन में उन दिनों कश्मीर में एक केंद्र स्थापित करने की इच्छा भी थी। श्रीनगर के 1 अक्टूबर को मार्गरेट नोबल को लिखित उनके पत्र में है,
1: तुम्हारे समक्ष में कश्मीर का वर्णन करने का प्रयास नहीं करूंगा। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि केवल इस भूस्वर्ग के अलावा कोई भी प्रदेश छोड़कर आने में मेरा मन दुखी नहीं हुआ। यदि संभव हुआ तो राजा को सहमत करके यहाँ पर एक केंद्र स्थापित करने का यथासंभव प्रयास कर रहा हूँ।
0: जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह से भेंट के दौरान संभवतः उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, परंतु प्रताप सिंह उस समय ब्रिटिश राज के नाराजी के फलस्वरूप सिंहासनच्युत होने के कारण वस्तुतः कुछ नहीं कर पाए थे। उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य स्थानों में भी उनकी केंद्र स्थापित करने की इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने आलम बाजार मठ से सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को पंजाब एवं राजपुताना में बुलवाया था, परंतु उनके जीवन काल में कहीं भी केंद्र स्थापित नहीं हो पाया। तथापि जो बीज वे उस धरती पर बो आए थे वो अमर था और बाद में वो अंकुरित होकर फला फूला और अब भी हो रहा है। अस्तु 16 अक्टूबर को प्रातःकाल 9 बजे तांगे पर मरी से रवाना होकर शाम को 5 बजे वे रावलपिंडी जा पहुंचे।
2: 16 अक्टूबर को स्वामी जी के रावलपिंडी पहुंचने पर वहां के वकील लाला हंसराज साहनी ने उनका अपने घर पर सप्रेम स्वागत किया। उस समय उनके साथ केवल स्वामी सदानंद और स्वामी अच्युतानंद ही थे, क्योंकि इसके पूर्व ही वे निरंजनानंद, अद्भुतानंद, सचिदानंद और कृष्णालाल को जयपुर भेजने की व्यवस्था कर चुके थे। वकील महाशय के घर पर स्वामी जी के आर्य समाज के स्वामी प्रकाशानंद के साथ वार्तालाप करके विशेष आनंदित हुए। उस समय न्यायमूर्ति नारायण दास, भगत राम और भी अनेक शिक्षित लोग वहां उपस्थित थे।
0: यहीं से उनकी व्याख्यानों के द्वारा प्रचार कार्य की शुरुआत हुई। रावलपिंडी में 2 दिन बीतते ही 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे श्रीयुत सुजन सिंह के मनोरम बागीचे में उनसे व्याख्यान देने का अनुरोध किया गया। न्यायमूर्ति नारायण दास के प्रस्ताव तथा लाल हंसराज के अनुमोदन पर सुजन सिंह सभापति बने। सभा में लगभग 400 श्रोता आए थे और स्वामी जी ने 2 घंटों तक हिंदू धर्म पर एक सुदीर्घ, बुद्धितापूर्ण तथा प्रेरक व्याख्यान दिया। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य विषय की व्याख्या तथा समर्थन करते हुए वेद आदि ग्रंथों से अनेक उद्धरण दिए और कभी वे वीर मुद्रा में आत्मा की अनंत महिमा तथा सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख करके श्रोताओं के हृदय में महातेज एवं शक्ति का संचार करने लगे, तो कभी सामाजिक कपटाचार के विरुद्ध कठारे व्यंगों का प्रयोग करते हुए श्रोताओं के बीच हास्य की धारा बहाने लगे। सभा में उपस्थित एक अंग्रेज भक्त ने बाद में बताया था,
4: मस्तक पर तथा गले में फूलों की माला से सुशोभित स्वामी जी अपने अभ्यास के अनुसार कभी मंच पर टहलते तथा कभी पत्र पुष्प व मालाओं से मंडित एक खंबे का सहारा लेकर व्याख्यान दे रहे थे। गैरिक वस्त्रों तथा कमरबंद से पोषित होकर उस समय वो किसी यूनानी देव मूर्ति के समान लग रहे थे। फिर पगड़ी पहने अधिकांश श्रोताओं के जमीन पर बैठे रहने और डूबते सूरज की लालिमा से पूरा दृश्य अद्भुत सुंदर हो उठा था।
2: इन दिनों स्वामी जी प्रचार कार्य में कितने व्यस्त थे, इसकी झलक देने के लिए हम स्वामी अच्युतानंद की डायरी से कुछ अंश सुनाते हैं।
3: अरे 17 अक्टूबर को हंसराज का मकान प्रातः काल आगंतुक सज्जनों के साथ चर्चा, तदुपरांत भोजनार्थ छावनी में निमाई बाबू के घर गमन, वहाँ एकत्र बंगाली लोगों के साथ वार्तालाप और लगभग 3 बजे वहां से लौटे। हाँ, अरे थोड़ा विश्राम करने के बाद व्याख्यान देने के लिए सृजन सिंह के घर उद्यान में गमन किया और भाषण के बाद निवास स्थान पर वापस लौटकर एक व्यक्ति को उन्होंने साधन रहस्य पर उपदेश दिया और रात को भगत राम की कोठी पर निमंत्रण था और साथ में न्यायाधीश प्रकाशानंद हंसराज भी गए और वहाँ भोजन किया और वहां से रात 10 बजे अपने निवास स्थान पर लौटे। रात के 3 बजे तक प्रकाशानंद के साथ चर्चा की।
0: उन दिनों की घटनावली हमें विभिन्न लोगों के संस्मरण और डायरियों से पता चलती है। रावलपिंडी में वे कई दिनों तक रुके और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। उनके अगले कुछ दिनों का कार्यक्रम ऐसा रहा।
2: 18 अक्टूबर के दिन प्रातः काल भी राय नारायण दास, बाबा क्षेम सिंह के पुत्र और प्रकाशानंद के साथ चर्चा हुई। आहार के उपरांत विश्राम करने के बाद उन्होंने बताया कि पिछले दिन से उनके सिर में दर्द है और इस समय काफी बढ़ चुका है, फिर भी वे हंसते हुए ही बातें करते रहे, बाहर के लोग कुछ समझ ही न सके। संध्या के पूर्व उन्होंने जज साहब और क्षेम सिंह के पुत्र द्वारा लाई गई बग्घी में भ्रमण किया। रात में उन लोगों के साथ ही भोजन किया और आर्य समाज एवं मुसलमानों के संबंध में अनेक शंकाओं का समाधान किया। रात के 11 बजे वे अपने निवास स्थान पर लौटे।
0: 19 अक्टूबर को प्रातः काल उन्होंने सेवियर दंपत्ति के निवास पर जाकर उन लोगों के साथ बातचीत की। बाद में प्रकाशानंद के साथ स्थानीय बंगाली लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित कालीबाड़ी में जाकर प्रसाद ग्रहण किया और भोजन उपरांत एक सिख सज्जन के साथ काफी देर तक धर्म चर्चा की। इस चर्चा के दौरान अनेक बंगाली सज्जन भी उपस्थित थे। संध्या के बाद उक्त कालीबाड़ी में ही स्थानीय प्रवासी बंगाली लोगों की एक छोटी सी सभा में स्वामी जी ने स्वदेश के कल्याण के उपायों के विषय में अनेक मनोहर उपदेश दिए। रावलपिंडी में उनके इस प्रवास के सुयोग से अनेक लोग हंसराज के मकान अथवा सेवियर दंपत्ति के निवास स्थान पर उनसे मिलकर वार्तालाप करते तथा उनके उपदेश सुनकर कृतार्थ हो जाते। ऐसे प्रसंग उठने पर स्वामी जी को समय का बोध नहीं रह जाता था और अन्य लोग भी बाकी सब कुछ भूलकर उनकी बातें सुनते रहते, इसीलिए ये बैठक काफी लंबी हुआ करती थी। इनके बैठकों के दौरान कुछ भावुक लोगों के अजीब व्यवहार भी कभी कभी दिख पड़ते थे। रावलपिंडी से प्रस्थान के दिन 20 अक्टूबर मध्याह्न भोजन के पश्चात वे कुछ जिज्ञासुओं तथा मित्रों के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय एक बंगाली सज्जन के अनुरोध पर स्वामी जी के एक गुरु भाई वहां एक फिटन गाड़ी लेकर आए और बताया कि वे सज्जन बीमार हैं तथा स्वामी जी का दर्शन करने के इच्छुक हैं।
1: हाँ हाँ चलो भाई, माफ करना, मुझे जाना होगा। चलो कहाँ चलना है? प्रकाश तुम भी चलो।
5: स्वामी जी प्रणाम। मैं उठ चल नहीं सकता, इसीलिए आपको यहाँ आने का कष्ट दिया।
1: नहीं भाई, कष्ट किस बात का, तुम बीमार हो।
5: स्वामी जी, मेरे मन में भगवान और धर्म को लेकर कई प्रश्न उठते रहते हैं। मैं जीवन भर धर्म के पथ पर चला हूँ, ये मेरी दुर्गति क्यों हुई? मुझे तो भगवान पर

0: रात का भोजन समाप्त कर स्वामी जी कालीबाड़ी गए और कश्मीर के महाराजा का आमंत्रण स्वीकार कर जम्मू जाने के लिए रात के 12 बजे ट्रेन में सवार हुए।
1: 21 अक्टूबर को 12 बजे जब वे जम्मू स्टेशन पर उतरे तो एक राज अतिथि के अनुरूप उनका स्वागत हुआ और राज्य की ओर से सत्कार विभाग के प्रमुख श्री महेश चंद्र भट्टाचार्य ने अपने पुत्रों के साथ उनकी देखभाल का भार ले लिया। अगले दिन स्वामी जी राजकीय पुस्तकालय देखने गए और बाद में उन्होंने महेश बाबू के गुरु स्वामी कैलाशानंद आदि अनेक पंजाबी सज्जनों के साथ धर्म चर्चा की। महेश बाबू के साथ कश्मीर में एक मठ स्थापित करने के विषय में भी बातचीत हुई।
0: 22 अक्टूबर को 12 बजे वे राजकीय बग्घी में सवार होकर राजा प्रसाद में एक और महाराजा के साथ भेंट की। इस मुलाकात के समय महाराजा के दो भाई तथा राज्य के कई प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वामी जी के अपने लिए निर्दिष्ट आसन पर बैठे जाने पर महाराजा ने वार्तालाप आरंभ करते हुए संन्यास का प्रसंग उठाया और स्वामी जी ने उसका समुचित उत्तर दिया। क्रमशः भावी नाचार तथा निरर्थक अनुष्ठानों की बात उठी और स्वामी जी ने अकाट्य युक्तियों के आधार पर बता दिया कि किस प्रकार भारतवासी धर्म के मूल तत्वों के प्रति अज्ञानी रहकर केवल बाहरी क्रियाकलापों से चिपके रहने के कारण क्रमशः अपना बल, वीर्य एवं स्वतंत्रता खो चुके हैं और लकीर के फकीर होकर अंधविश्वासों को धर्म के आसन पर स्थापित कर सैकड़ों वर्षों से दूसरों का दासत्व स्वीकार कर बैठे हैं और उसमें पीछे जा रहे हैं।
2: आजकल वास्तविक पाप आचरण के कारण कोई समाज से बहिष्कृत नहीं होता, परंतु भोजन आदि के विषय में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर मानो समाज के सम्मुख घोर संकट उपस्थित हो जाता है। आजकल समुद्र यात्रा करने पर तरह तरह की आलोचनाएं होती हैं। वे भूल जाते हैं कि श्री रामचंद्र समुद्र पार करके ही लंका गए थे। आजकल ब्रह्म देश, श्रीलंका, बाली, मलाया, थाईलैंड आदि देशों में बहुत सारे भारतवंशी वाणिज्य व्यापार में लगे हुए हैं। वे उन देशों में कैसे पहुंचे? समुद्र पार करके ही ना, उनकी तो जान नहीं गई। भारतीयों को बाहर निकलना होगा। दुनिया का भ्रमण किए बिना वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती।
1: अंत में यूरोप और अमेरिका आदि देशों में वेदांत प्रचार की उपयोगिता और सफलता की बात समझाते हुए अपने कार्य की धारा एवं उद्देश्य आदि का वर्णन करते हुए उन्होंने सबको बताया कि देश के कल्याणार्थक वे अपनी मुक्ति की अभिलाषा त्याग कर बल्कि नरक भी जाने को प्रस्तुत हैं और वे किसी भी बाधा विपत्ति के भय से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगभग 3 बजे ये वार्तालाप समाप्त हुआ। कहना न होगा कि महाराजा स्वामी जी के तेज, साहस, पांडित्य, प्रतिभा भविष्य के लिए अद्भुत कार्य योजना, स्वधर्म एवं स्वदेश के प्रति प्रेम, उदार दृष्टिकोण और अपूर्व वाग्मिता का परिचय पाकर विशेष रूप से संतुष्ट हुए थे। उसी दिन स्वामी जी बग्घी में सवार होकर छोटे राजा के नए भवन में गए। राजा ने उनका सप्रेम स्वागत किया और थोड़ी देर तक उनके पास बैठकर उनके उपदेश सुने।
0: अगले दिन सियालकोट से कुछ लोग आए और स्वामी जी से वहां जाने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसी दिन शाम को उन्होंने जम्मू की जनता के सम्मुख जो व्याख्यान दिया उस पर महाराजा इतने आनंदित हुए कि उन्होंने स्वामी जी से

0: व्यक्ति चाहे जितना भी गुणवान या धनवान क्यों न हो, वंशगत जाति को मानने से वो अपनी जाति का परित्याग नहीं कर सकता। अतः उसके गुण तथा धन का कुछ न कुछ अंश उसकी जाति को भी मिलता है। गुणवान जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता।
1: उन्होंने अपने बचपन का उदाहरण देते हुए कहा कि वे दरिद्रों की बस्तियों में जाकर उनकी भलाई का प्रयास किया करते थे। वैसे इस तरह की बातें स्वामी जी सबके सामने नहीं बोलते थे, केवल अंतरंग संगियों के मजलिस में ही कभी कभी कह डालते।
2: 29 अक्टूबर को वे राजा राम सिंह से विदा लेने गए और उन्हें बताया कि सियालकोट के मित्रों के दबाव के कारण उन्हें वहां जाना पड़ेगा और ज्यादा देर करना संभव नहीं। राम सिंह यह समाचार सुनकर दुखी हुए, परंतु उन्हें विदा करने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे जब भी जम्मू या कश्मीर आए तो राज का आतिथ्य स्वीकार करें,
1: और स्वामी जी सियालकोट की तरफ चल पड़े।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भारत भारती का। आज इसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं अर्चना कोचार्य और उनके साथी। तो बिना देर किए सुनते हैं बुंदेली गायन की ये प्रस्तुति।
1: मैं हृदय से चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए लीजिए अपनी बुंदेलखंड की माटी का ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ।

0: सुन लीजिए, प्रस्तुत है दूसरा गीत लांगुरिया
1: कि कायरो भी।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूं गुलाम अब्बास खान, क्लासिकल और गजल गायक, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। मेरे मुल्क भारत माता को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराया। हमारा मुल्क सलामत रहे और इसकी सलामती के लिए जो सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं वो हमारे फौजी हैं। मैं अपने तमाम फौजी भाइयों की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारे मुल्क के फौजी सलामत रहें और इस मुल्क में चैन व अमन कायम रहे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको,

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है साक्षरता गीत, क्योंकि लोकगीत का उद्देश्य ही यही है जो आम जन सोचते हैं।

कार्यक्रम भारत भारती में अभी आप आनंद ले रहे थे आलह गायन का। कलाकार थे जयंत विश्वकर्मा और उनके साथी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम सुनो कहानी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी भूत। कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद।

मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वो कचहरी में 15 रुपए मासिक पर नौकर हुए, फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी, 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर ये कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल था, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया उसने 3 महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया, और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वो सच्चे पत्नी परायण पुरुष थे। साधारणतः महफिलों में वैश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी कार्य उन्हें व्यर्थ जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो वो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांती को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, बस एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी, उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं, और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती हैं, उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती, लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियां पहन के ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते, कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने ये दान न दिया उसका तो जन्म ही वृथा गया। आखिर ये लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। ये बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी ही सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खेल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती, उससे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मजा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी
मार खाओगी। और बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस तरह दीवान खाने में खूब कह कहे उठते। वकील साहब कभी इतने वात्सल्यमय न थे, जो बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते। बिन्नी बेटी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी, इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी ने कहा, ना बताऊंगी। मंगला ने कहा, कह दे बेटा, जी जी की बेटी हूं। पंडित जी ने कहा, तू मेरी बेटी है बिन्नी कि इनकी? बिन्नी ने फिर जवाब दिया, ना बताऊंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा, अब हम लोग आंख बंद किए बैठे हैं, भाई बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई। पंडित जी ने कहा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, अब ना कहना कि मेरी बेटी है, सुन रही हो? मंगला ने कहा, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न मंगा दूंगी। बिन्नी ने कहा, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई भी बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी झट से कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। एक महीना भी न गुजरने पाया था कि वो फिर ससुराल गए और बिन्नी को ले आए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वो चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए।

आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना कठिन। नौका पर सभी यात्रा करते हैं, जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी, अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया, जन्म पत्र मिल गए, बानक बन गया, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्दैव, कहां तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे, और कहां निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए वो परलोक सिधार गई। संध्या घिर आई थी, मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे बहुएं, पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी, कोई किसी से न बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए वो उस कमरे में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूं, बुरा न मानना। बिन्नी, बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी ने कहा, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उसमें कुछ भी काट छाट मत करना। पंडित जी ने कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, सुनो, उसे हमेशा बुलाते रहना, तीज त्योहार में कभी कभी मत भूलना उसे। पंडित जी ने जवाब दिया, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, अच्छा सुनो, इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी ने कहा, इस साल कैसे होगा? मंगला ने जवाब दिया, ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित जी ने कहा, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला ने फिर कहा, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। और पंडित जी ने कहा, कर दूंगा। और इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित, बिल्कुल तितर बितर हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन कचहरी ही नहीं जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से भी अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासमय उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती थी। वो उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वो कुछ खा न लेते वो कुछ न खाती थी। गर्मी के दिन थे ही, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा चला करती।
और जब तक वो सो न जाते तब तक वो भी सोने न जाती। वो जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते और वो तुरंत उनके सिर में तेल डालती, यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़ कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का ये अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वो गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंधेश्वरी के प्रति जब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वो उनसे पिता पुत्री के भाव को सहज और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वो भाव दिन दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वो एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदया बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वो वही पिता के तुल्य भैया थे। वो पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता, किंतु पुरुषों में ये अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती होती जाती है। त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वो तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करते हैं वो किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और अपनी इस उच्छृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब ना समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वो विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। बिन्नी ने कहा, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित जी ने कहा, ले आना, अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूं। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है, वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया है। नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने मुझे प्राण दान दिया है। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी ने कहा, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूं। पंडित जी ने कहा, क्यों, तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी? बिन्नी सकुचाती हुई बोली, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित जी ने कहा, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित जी ने कहा, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूं, जब तक जिंदगी है
जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई, तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया है? मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी कोई खबर लेने वाला नहीं होगा, ये घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे ये घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहां क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह को तुमने पूरा किया, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी ने कहा, क्या इस साल रुक नहीं सकते? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित जी ने कहा, अपने बस की बात नहीं है, वो लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, बहुत जल्दी मचाए तो आप कह दीजिएगा अब नहीं करेंगे, उन लोगों के जो जी में आए करें, यहां कोई उनका दबैल बैठा हुआ है। पंडित जी ने कहा, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी ने तुरंत जवाब दिया, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित जी ने कहा, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? ये दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है, अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी ने जवाब दिया, दुख सुख में काम ना आऊंगी तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वो बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थीं। उन्हें अपने अंगों में फिर से जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वो सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वो मेरी पुत्री है तो नहीं? इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने, ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहां आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से ये संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंधेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूं और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है, मैं ना रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे और कौन जाने साधु सन्यासी न हो जाएं, घर में कैसे मन लगेगा? वो पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी, उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था, घंटे दो घंटे बैठकर वापस चले आते। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी, उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आया। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा वो अपने घर को ही रहेगी, फिर चौबे जी से नाता ही टूट जाएगा। वो इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित जी ने कहा, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास ने कहा, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है,
पंडित जी ने जवाब दिया, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता। फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास ने कहा, पूछने को तो हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं।

0: रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह लगती है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह से है ना बेटी, यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रच गया। मानो मनाते रहते हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर आए। विंधेश्वरी ने कहा, उन्हें याद करते करते बहुत रोया करते हैं, चली आई हूं ना, न जाने कैसे होंगे। माता ने कहा, मुझे भी तो यही डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर न हो जाए। विंधेश्वरी ने जवाब दिया, मुझे भी यही डर लगता है, इसी से तो मैंने मना कर दिया कि अभी जल्दी क्या है शादी की। माता ने कहा, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंधेश्वरी ने जोर से कहा, ए हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला है और मैं भी उन्हें पिता। चुप रह पगली, कहने से क्या होता है, माँ ने दलील दी। विंधेश्वरी ने कहा, अरे अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता ने कहा, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं आता। विंधेश्वरी ने बेचैन होकर कहा, क्या कहती हो अम्मा, उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूंगी। और वो भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी तो हो कोई। माँ ने कहा, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, बस तू राजी हो जा। याद रख, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं है। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी कम से कम 70 साल की है। देखने सुनने में भी वो 100-200 के आदमी हैं। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषण का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में विंधेश्वरी ने कहा, अम्मा मैं जानती हूं कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। मैं ये भी जानती हूं कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही माँ।
1: चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था।

विंधेश्वरी आज वधु बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वो चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सजधज आज देखने योग्य है। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई संवरी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंधेश्वरी आभूषणों से लदी हुई, भारी जोड़े पहने, फर्श पर सिर झुकाए बैठी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल एक संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूं, उनके कंधों पर बैठी हूं, उनकी पीठ पर सवार हुई हूं, कैसे उन्हें मुंह दिखलाऊंगी। अगर मैं पिछली बातें सोचूं तो ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे जिसके लिए मैंने पुत्री बनना स्वीकार किया। वो पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंधेश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कि कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली, मूर्ति की तरह खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की ये निर्दय लीला, ये क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? विंधेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी। आज वो व्यंग्य से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गईं और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वो दो कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी, सदेह, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी देखो देखो वो क्या है। बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा, कुछ न था। फिर कहा, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी ने कहा, अब गायब हो गई, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बिन्नी ने कहा, बहन? चौबे जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ वही थी, खिड़की से अंदर झांक रही थी। देख देख, मेरे तो रोई खड़े हो गए। विंधेश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहां नहीं रहूंगी। चौबे जी ने कहा, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं, मुझे धोखा हुआ होगा। बात ये है कि वो इसी घर में रहती थी ना, यहीं सोती थी, इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो गई। ये कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह, सजीव, साकार मंगला। अब उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार भी न था, उसमें हास्य भरा हुआ था। मानो वो इस दृश्य पर हंस रही हो, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी
फिर वही बात हुई। वो देखो मंगला खड़ी है। विंधेश्वरी चीख कर उनके गले से चिमट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी ने कहा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी भैया जी। तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है भैया जी। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ करवाऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी, तुमसे क्या कहूं, मालूम होता है, होगा। उस बात को जाने दो, यहां बड़ी गर्मी पड़ रही है। अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों ना चले। विंधेश्वरी ने कहा, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं करता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना, मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित जी ने कहा, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है, फिर समझ में नहीं आता ये स्वरूप क्यों कर दिखाई देता है। मैं सच कहता हूं बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर ये दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों में सिर टकरा रहा होता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंधेश्वरी ने कहा, मंसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, मकान भी मिलते हैं, मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वो कोई मकान ठीक कर रखेंगे वहाँ। बात पूरी भी न होने पाई थी कि न जाने कहाँ से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, भय से थर थर कांपते हुए बोले, बिन्नी यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाजें आ रही हैं, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है, बिन्नी बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। ये ध्वनि सहस्रों कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही आवाज आ रही थी। बिन्नी ने रो कर पूछा, कैसी आवाज थी। पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, कहते हुए लज्जा आती है। बिन्नी ने कहा, जरूर जरूर बहन जी की आत्मा है, जरूर उनकी आत्मा है। बहन मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चाहा था। पंडित जी ने कहा, बिन्नी फिर वही आवाज आ रही है, फिर वही आवाज आ रही है बिन्नी। हाय ईश्वर, मैं सुन नहीं सकता, मैं कहाँ जाऊं, मेरे तो रोम रोम से वही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी बिन्नी बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ये कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा वो भागने लगे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वो गिर पड़े, उन्हें मूर्छा आ गई। विंधेश्वरी भी दौड़ी, वो चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी भूत। इसके साथ ही सुनो कहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।

निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाणी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। कि तुम कवैया हो गम।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में, तो कुछ खिलौना लेके जाती है

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: सबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। सबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया।
1: अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट देखत देखत,
0: ए राम कब आओगे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कभी की है,

0: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 124 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं उषा और छंद है त्रिष्टुप।
4: उषा उच्छन्ति समिधाने अग्ना उदंत सूर्य उर्विया।

0: देवी उषा अंधकार का नाश करती हैं और सूर्य देव के समान अति तेजस्विता को धारण करती हैं। ये सूर्यदेव हमें उपयोगी धन तथा मनुष्यों और मनुष्येतर प्राणियों को जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करें, अर्थात देवी उषा के आने के बाद हम मनुष्यों, गौ, अश्वादि पशुओं के लिए आने जाने के रास्ते खुल जाएं। अमिनति दैव्यानि व्रतानि प्रमिनति मनुष्या युगानि ईयुषीणा मुपमा शश्वतीना मायतीनाम प्रथमोषा व्यद्यौत। ये देवी उषा अनुशासनात्मक नियमों का पालन करने वाली, मनुष्यों की आयु को लगातार कम करने वाली हैं। निरंतर आने वाली विगत उषाओं के अंत में तथा भविष्य में आने वाली उषाओं में यह सर्वप्रथम प्रकाशित होती हैं। एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी ज्योतिर्वसाना समना पुरस्ताद् ऋतस्य पंथा मन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति। स्वर्गलोक की कन्या रूपी ये देवी उषा प्रकाश रूप वस्त्र धारण करने वाली, श्रेष्ठ मन वाली तथा प्रतिदिन पूर्व दिशा से आती हुई दिखाई देती हैं। जिस प्रकार विदुषी नारी सत्य मार्ग से जाती हैं, उसी प्रकार दिशाओं में अवरोध न पहुंचाती हुई ये देवी उषा जाती हैं। उपो अदर्शी शुंध्युवो न वक्षो नोधा इवा विरकृत प्रियाणी अद्मसन्न ससतो बोधयंती शश्वत्तमागात पुनरेयुषीणाम। शुद्ध पवित्र वक्षस्थल के समान देवी उषा समीप से ही दिखाई देती हैं। नई वस्तुओं का निर्माण करने वाले के समान ही देवी उषा ने अपने किरण रूपी अवयवों को प्रकट किया है। जिस प्रकार गृहस्थ महिलाएं सोए हुए परिवार जनों को जगाती हैं, वैसे ही मनुष्य में आने वाली उषाओं में सर्वप्रथम ये देवी उषा दोबारा जगाने के लिए आ गई हैं। पूर्वे अर्धे रजसो अप्त्यस्य गवाम जनित्र्यकृत प्रकेतुम व्युप्रथते वितरम वरीय ओभा प्रणन्ति पित्रो रूपस्था। विस्तृत अंतरिक्ष लोक के पूर्व दिशा भाग में रश्मियों को उत्पन्न करने वाली देवी उषा ने प्रकाश रूपी ध्वजा को फहराया है। द्युलोक भूलोक रूपी माता पिता के पास रहकर दोनों लोकों को प्रकाश से परिपूर्ण करती हुई ये देवी उषा विशिष्ट तेजस्वी प्रकाश से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करती हैं। एवे देशा पुरुतमा दृशे कम ना जामिम न परि वृणक्ति जामिम अरेपसा तन्वा शाशदाना नार्भादीशते नमहो विभाति। विस्तृत होने वाली ये देवी उषा सुख व आनंद के लिए जिस प्रकार विरोधी का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार आत्मीय जनों को भी अपने प्रकाश से वंचित नहीं करती। प्रकाश रूपी निर्दोष शरीर से प्रकाशित होने वाली देवी उषा जिस प्रकार छोटे से दूर नहीं होती, उसी प्रकार बड़े का त्याग नहीं करती, अपितु छोटे बड़े का भेद किए बिना दोनों को प्रकाशित करती हैं। अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचि गर्ता रुगिव सनये धनानाम जायेव पत्य उशति सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सह। बिना भाई के बहन जिस प्रकार निराश्रित होने पर वापस अपने माता पिता के पास चली जाती है, अथवा जिस प्रकार कोई विधवा धन में हिस्सा पाने के लिए न्यायालय में जाती है, उसी प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके सूर्य रूप पति से मिलने की इच्छुक ये देवी उषा मुस्कराती हुई अपने किरण रूपी सौंदर्य को प्रकट करती हैं। स्वसा स्वस्रे ज्यायस्ये योनि मारे गपैत्यस्याह प्रति चक्ष्येव व्युच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्यांज्यंते समनगा इव व्राह। जिस प्रकार छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के लिए स्थान रिक्त कर देती है, वैसे ही रात्रि रूपी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन देवी उषा के लिए मानो अपने स्थान से हट जाती हैं। सूर्य देव की रश्मियों से अंधकार को हटाती हुई ये देवी उषा उत्सव में जाने वाली स्त्रियों की तरह अच्छी प्रकार चलने वाली किरण समूहों के समान अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। आसाम पूर्वा सामहसु स्वसृणामपरा पूर्वामभ्येति पश्चात ताह प्रत्नवन्न व्यसीर नूनमस्मे रेव दुच्छन्तु सुदिना उषासः। जो उषा रूपी बहिने पहले चली गई हैं, उन दिनों के बीच में अंतिम देवी उषा के पीछे से एक एक नवीन देवी उषा क्रम से आती हैं। वे उषाएं पूर्व की तरह नवीन दिन अर्थात नई उषाएं भी हमारे लिए निश्चित ही प्रचुर धनयुक्त श्रेष्ठ दिवस को प्रकाशित करती रहें। प्रबोधयोषः प्रणतो मघोन्य बुद्ध्यमानाः पणयः ससंतु रेवदुच्छ मगवद्भ्यो मघोनि रेवतस्तोत्रे सूनृते जारयन्ति। हे धनवती उषे, आप दाताओं को जगाएं, न जागने वाले लोभी व्यापारी सोते रहें। हे धनवती उषे, धनवानों के निमित्त धन देने के साथ यज्ञीय भावना की प्रेरणा भी प्रदान करें। हे सुभाषिणी उषे, संपूर्ण प्राणियों की आयु कम करने वाली आप स्तोताओं के निमित्त अपार वैभव से युक्त होकर प्रकाशमान हों। अवेय मश्वै द्युवति पुरस्ताद् द्युङ्क्ते गवा मरुणा नामनीकम् वि नूनमुच्छादसति प्रकेतुर् गृहं गृहमुप तिष्ठाते अग्निः। तरुणी स्त्री के समान ये देवी उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित हो रही हैं। इन्होंने किरणों रूपी लाल वर्ण के अश्वों को अपने रथ में जोता हुआ है। ये देवी उषा निश्चित ही विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। उसके प्रकाश रूपी ध्वजारोहण के साथ ही घर घर में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है। उत्ते वयश्चिद्वसते रपप्त नरश्च ये पितुभाजौ व्यष्टौ अमासते वहसि भूरि वाममुषो देवी दाशुसे मर्त्याय। देवी उषा के प्रकाशित होते ही पक्षीगण अपना घोंसला त्याग देते हैं। मनुष्य भी अन्न की कामना के लिए प्रेरित होते हैं। देवी उषे आप गृहस्थ जीवन में रहकर यज्ञ और दानदाता मनुष्य के लिए प्रचुर धन संपदा प्रदान करें। अस्तोढ्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे विवृधध्व मुषति रुषासः युष्माकं देवी रवसा सनेम सहस्रिणं च शतिनं च वाजम्। हे स्तुति योग्य उषाओं, हमारे इस स्तवन से आपकी प्रार्थना संपन्न हो रही है। सभी उषाएं प्रगति की कामना से हम सभी प्रजाजनों को समृद्ध करें। हे देवत्व संपन्न उषाओं, आपके संरक्षण साधनों से हम सैकड़ों और हजारों प्रकार के धन धान्य से संपन्न सामर्थ्य शक्ति अर्जित करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 124 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

परमात्मा को जो प्रसन्न कर सकता है वह संसार को भी प्रसन्न कर सकता है। प्रभु की कृपा होने पर संसार स्वयं अनुकूल हो जाता है।

इसी रचना के साथ आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। ताराग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई का।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

हम भारतवासियों के लिए भारत मात्र एक भूभाग नहीं है। हमारा भारत हमारी अनुभूतियों में धड़कता है, हमारी सांसों में बहता है। हमारा भारत हमारी आत्मा का संगीत है। यही कारण है कि देश से जुड़ी हमारी भावनाएं जब भी घनीभूत होती हैं, हम मुखर कंठ से कह उठते हैं जय हिंद। पराधीन भारत में जय हिंद का ये नारा हमारी आजादी का स्वप्न था। आज ये नारा विभिन्न अवसरों और राष्ट्रीय पर्वों में हमारे राष्ट्र प्रेम की चरम अभिव्यक्ति बन जाता है और हमारे वीर सैनिकों की जुबान पर जय हिंद का ये नारा दुश्मन के लिए ललकार बनकर सजता है। और माना जाता है कि जय हिंद के इस नारे को गढ़ने वाले वो महान देशभक्त थे चंपक रमन पिल्लई। उनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उनका अधिकांश जीवन जर्मनी में बीता। उनका नाम क्रांतिकारियों की उस सूची में आता है जिन्होंने विदेशी सरजमी पर रहकर भारत की आजादी के लिए सघन प्रयास किए। उन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत से ब्रिटिश राज की समाप्ति हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। चंपक रमन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर सन 1891 को भारत के तिरुअनंतपुरम में हुआ था। ये एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी पिल्लई और माता जी का नाम नागम्मल था। उनके पिता हालांकि तमिल थे लेकिन पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के कारण तिरुअनंतपुरम में ही आकर बस गए थे। थैकोट के मॉडल स्कूल से चंपक रमन पिल्लई ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और यहीं से हाई स्कूल की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनकी भेंट ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक सर वॉल्टर स्ट्रिकलैंड से हुई जो वनस्पतियों के नमूने लेने तिरुअनंतपुरम आया करते थे। ऐसे ही एक बार जब वो यहां आए तो उन्होंने चंपक रमन पिल्लई और उनके चचेरे भाई पद्मनाभा पिल्लई को अपने साथ आने को कहा और दोनों भाई उनके साथ हो लिए। हालांकि पद्मनाभा पिल्लई कोलंबो से ही लौट आए लेकिन चंपक रमन पिल्लई सर वॉल्टर स्ट्रिकलैंड के साथ यूरोप चले गए। ऑस्ट्रिया में सर वॉल्टर स्ट्रिकलैंड ने उनका दाखिला एक स्कूल में करवाया और स्कूली पढ़ाई के बाद चंपक रमन पिल्लई ने एक तकनीकी संस्थान में प्रवेश लिया ताकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकें। इस तरह तिरुअनंतपुरम में जन्मा एक जीवन नए फलक पर विस्तार पाने लगा क्योंकि उसे तो अपनी भारत भूमि के लिए बहुत कुछ करना था।

चंपक रमन पिल्लई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यंत प्रभावित थे तथा तिलक जी के विचारों ने ही उन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। यूरोप के अपने जीवन में वो इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में रहे। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। सितंबर सन 1914 में उन्होंने इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन किया। वो इसके अध्यक्ष हुए और ज्यूरिख में इसका मुख्यालय स्थापित किया। इसी समय के आसपास जर्मनी के बर्लिन शहर में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी नाम से प्रवासी भारतीयों का भी एक गुट तैयार हो रहा था, जिसमें वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, ए रमन पिल्लई, तारक नाथ दास, मौलवी बरकतुल्ला और वीरेंद्र सरकार जैसे देशभक्त शामिल थे। अक्टूबर सन 1914 में चंपक रमन पिल्लई बर्लिन गए और वहां इस बर्लिन कमेटी से जुड़ गए। उन्होंने मजबूती के साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य से बर्लिन कमेटी को अपनी प्रो इंडिया कमेटी के साथ जोड़ दिया। ये कमेटी यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखती हुई भारत की आजादी के लिए सक्रिय हो गई। लाला हरदयाल भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। थोड़े ही समय में इस इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की शाखाएं एम्स्टर्डम, स्टॉकहोम, वॉशिंगटन के साथ ही यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में स्थापित हो गईं। भारत की स्वाधीनता हेतु अनेक प्रयास आरंभ हुए और ये विचार हुआ कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध का ये समय है और ब्रिटिश साम्राज्य कुछ कठिनाइयों में नजर आ रहा है, तो ऐसे समय में क्यों न रणनीतिक चाल चली जाए, विदेशी मदद से भारत की आजादी का प्रयास किया जाए। उस समय ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन था जर्मनी। इस तरह जर्मनी की मदद से भारत की आजादी के प्रयास की योजना बनाई गई। गदर पार्टी और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी दोनों के इस प्रयास को अंग्रेजों ने हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से पुकारा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में जर्मनी को खुद भी साथियों की तलाश थी और बात बन गई। जर्मन फॉरेन ऑफिसर्स और भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर दिसंबर 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारत सरकार का गठन कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप इसके राष्ट्रपति हुए, मौलाना बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और चंपक रमन पिल्लई विदेश मंत्री बने। योजना बनी कि 20,000 तुर्क और जर्मन योद्धा काबुल पहुंचेंगे और ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे और इसके बाद गदर आंदोलन के साथी भारतीय फौज में विद्रोह करा देंगे। पूरे जोश के साथ योजना की तैयारी शुरू हो गई और सबके मन में भारत की आजादी का विश्वास बढ़ने लगा।

काबुल में भारत की अंतरिम सरकार में चंपक रमन पिल्लई की गतिविधियां पूरे जोश के साथ आरंभ हुई। इसी बीच समय ने करवट ली। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई और अंग्रेजों ने इन सभी क्रांतिकारियों को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद चंपक रमन पिल्लई यूरोप में ही रहे। वो एक टेक्नीशियन का काम करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे। इन सालों में उन्होंने जर्मनी और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिशें भी की। सन 1933 में वियना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी भेंट हुई और दोनों के बीच एक राष्ट्रीय सेना यानी नेशनल आर्मी के गठन की बात हुई। इस बीच चंपक रमन पिल्लई की पहुंच जर्मनी की सरकार के उच्चाधिकारियों तक बन गई। कुछ समय बाद वो जर्मनी की नेशनल पार्टी के सदस्य भी बने और हिटलर के उदय के साथ ही उन्होंने हिटलर से कामकाजी रिश्ते बनाने की कोशिश की ताकि भारत की आजादी में जर्मनी का सहयोग हासिल हो सके। ये ठीक वैसी ही कोशिश थी जैसी आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी, लेकिन जैसे जैसे हिटलर की ताकत बढ़ रही थी उसके बयान भी तीखे होते जा रहे थे। हिटलर ने एक बार कह दिया कि भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और भारत इस बात का उदाहरण है कि एक गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये बात चंपक रमन पिल्लई को चुभ गई और उन्होंने हिटलर को एक पत्र लिखकर कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगे, और माफी के लिए उन्होंने एक नियत तिथि भी तय कर दी थी। हिटलर का जवाब आया, माफी भी आई, लेकिन एक दिन देर से। और आगे के विवाद पर इतिहास अपनी तरह से चर्चा करता है, लेकिन ये घटना ये बताने के लिए और जता देने के लिए काफी थी कि चंपक रमन पिल्लई चाहे दुनिया के किसी भी भूभाग पर रहें, भारत उनके अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था, देश उनके लिए सर्वोच्च था। सन 1931 में मणिपुर की लक्ष्मीबाई से वो बर्लिन में मिले और दोनों का विवाह सम्पन्न हुआ, लेकिन विवाह के थोड़े ही समय बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। इलाज किया गया लेकिन दवाओं का असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से अंतिम समय में वचन लिया कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां भारत लाकर विसर्जित की जाएं। 28 मई सन 1934 को बर्लिन में उन्होंने अंतिम सांस ली। पत्नी ने अपना वचन निभाया, उनकी अस्थियां भारत लाई गईं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अस्थियां कन्याकुमारी में प्रवाहित कर दी गई। ये चंपक रमन पिल्लई की अंतिम इच्छा थी कि उनकी राख को उनके परिवार के मूल स्थान नंजिलनाडु कन्याकुमारी में छिड़का जाए। इस तरह भारत भूमि के लिए जीवन जीने वाला भारत माता का एक सच्चा सपूत भारत की मिट्टी में ही समा गया। नमन ऐसी महान विभूति को।

0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे
2: डॉक्टर संजीव गर्ग जी से, जो कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
3: जी धन्यवाद।
2: सर, मिट्टी का जिक्र हो रहा है, सॉइल का जिक्र हो रहा है और हम सब मिट्टी ही के बने हैं, तो सबसे पहले सर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और किस तरह का आपका सफर रहा था?
3: मैं एक कृषक परिवार और बिजनेसमैन परिवार में मैं जन्मा
2: जी,
3: और मैं मूलतः मुरैना जिला जो कहा जाता है और डाकुओं का क्षेत्र है उसमें मेरा जन्म हुआ
2: जी,
3: और वहाँ की मृदा बहुत ही जो चंबल का बैड जो बोला जाता है
2: जी,
3: उसमें पला। और मूलतः मेरा जो बैकग्राउंड था वो बिजनेस था, बट मैं कृषि से मैं थोड़ा बहुत जुड़ा, तो मैंने कृषि की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा ग्वालियर से हुआ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर से हुआ। उसके बाद मैंने पीएचडी महात्मा गांधी चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय चित्रकूट से की
2: जी।
3: और उसके बाद मैंने विभिन्न जगह, मैं सबसे पहले मैं ब्यावरा राजगढ़ में भी रहा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद मैं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में 3 साल, फिर मैं सीआई भोपाल सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग

0: देश जी जन्मदिन के सम्मान में भी मनाया। उन्होंने मिट्टी के लिए काफी काम किया, जो मिट्टी बचाने के लिए सार्थक थे, और 2002 में ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस ने भी इस तारीख को सिफारिश की
1: जी।
0: और दिसंबर 2013 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एफओनेस ने औपचारिक रूप से इसको मनाने का सेलिब्रेशन किया
1: जी, जी।
0: इस उद्देश्य मिट्टी के संरक्षण के लिए
1: जी,
0: मिट्टी के महत्व के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए, इसका चाहे कटाव हो चाहे पॉल्यूशन हो, सभी प्रकार से मिट्टी से बचाने के उसके उद्देश्य को मनाया जाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एफएओ इस दिवस को मनाने में इसकी क्या भूमिका रहती है?
0: एफएओ इसको मुख्य रूप से पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में इसको प्रमोट करती है कि इसको बचाया जाए और फूड के लिए, क्योंकि हमारा जो खाद्य है
1: जी
0: वो हमारी मिट्टी से ही आता है
1: जी।
0: जब तक हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, पूरे विश्व की मृदा पर ही पूरा मानव जीवन ह्यूमन हेल्थ है वो डिपेंड होती है
1: जी।
0: तो किसका फूड है वो मिट्टी से बचता है, मिट्टी से ही हम मिट्टी को खाते हैं। तो इसमें जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका अहम रोल रहता है, और इसका सेलिब्रेशन के रूप में वो 2014 से पहला सेलिब्रेशन उसको 2014 में किया।
1: सर एक नारा भी है कि होल्ड सोइल इरोजन सेव आर फ्यूचर, तो इन नारों का क्या किस तरह से हमारी लाइफ में हमारे जीवन में महत्व है?
0: बिल्कुल, नारा विशेष रूप से अगर किसी को अवेयर करना है, जागरूक करना है, तो हम कोई ना कोई एक अभियान लेके चलते हैं
1: जी।
0: और अभियान में हम किसी न किसी को वर्ड को चुन के और वो एक नारे के रूप में, हम किसी को जागृत करना है तो हम एक नारा लेके चलते हैं
1: जी।
0: तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को अगर हमें मिट्टी के प्रति जागरूक करना है तो इस अभियान को लेके चलना पड़ेगा। हमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों का चयन करके जिससे लोग जागरूक हो, उनके मन में उसके प्रति जागरूकता आए
1: जी,
0: और एक रिश्ता बने मिट्टी से। क्योंकि तो लोग सिर्फ अभी अपनी लाइफ में क्या पैसा है ना, आजीविका हमने मिट्टी को खेत को बना के किसान ने भी कर लिया है, तो धीरे धीरे इसके प्रति भी प्रेम करें
1: जी।
0: अभी देख रहे हैं कि सॉइल में बहुत सारी वर्निंग हो रही है
1: जी,
0: हैवी पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हैवी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो अनबैलेंस फर्टिलाइजर्स हो, इरोजन हो कहीं भी हमने सॉइल को किसी प्रकार से, क्योंकि तो नेचुरल रिसोर्स है
1: जी।
0: और नेचुरल रिसोर्स का अत्यधिक दोहन भी हो रहा है, हमने कई पहाड़ काट दिए, कई कुछ कर दिया
1: जी।
0: तो सॉइल को उसको बचाना बहुत ही अहम हमारा रोल है, जैसे हमें कुछ कैंपेनिंग लेके चलना पड़ेगा जिससे पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, हमारे भारत देश में
1: जी
0: के प्रति लोग जागरूक हो, चाहे वो शहर की पॉपुलेशन हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र
1: जी जी।
0: तो इसको ऐसे कुछ नारे हमको लेके चलना पड़ेगा जिससे हम लोगों को, किसानों को अवेयर।
1: अच्छा सर, सर एक बड़ा अहम सवाल यह है कि जो सॉइल पॉल्यूशन है उसको योगदान देने में कौन से प्रमुख जो कारक वो कौन कौन से हैं, और इसे रोकने में इंसान या व्यक्ति किस तरह से अपना योगदान दे सकता है?
0: सॉइल्स में हमारी चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक हो, अन्य बहुत सारे कारक हैं जो धीरे धीरे हमारे सॉइल्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स भी हो, क्योंकि हैवी पेस्टिसाइड और हैवी फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डालने से हमारी सॉइल कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड पॉल्यूशन हो रही है
1: जी,
0: दूषित हो रही है। दूषित होने का कारण कि उसमें माइक्रोब्स की संख्या कम होना और हमारे जो न्यूट्रिएंट थे वो कम होना
1: जी, जी, जी।
0: प्लास्टिक का मिलना, प्लास्टिक पॉलिथिन, कुछ एग्रीकल्चर ऐसी प्रैक्टिस भी हैं जो हम कहते हैं बैड प्रैक्टिस
1: जी, जी, जी।
0: उनके आने से भी हमारी जो सॉइल है, मृदा है, वो धीरे धीरे दूषित हो रही है। कुछ हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो हमने शहरों का कचरा लिया और हमने डाल दिया और उड़ के वो गाँव में आ गया
1: जी।
0: कुछ हमारी ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री भी है जो पॉलीथिन में बहुत सारा पैक करते हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र में आ जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में उसको फिर कहीं ना कहीं डालते हैं और वो पॉलीथिन हमारे खेतों में धीरे धीरे जा रही है
1: जी।
0: तो ऐसे कुछ प्लास्टिक है, कुछ इंडस्ट्रियल वेस्टेड मटेरियल है, शहरों का कचरा है, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनके कारण भी हमारी सॉइल जो है वो दूषित हो रही है
1: जी, जी। किस तरह से रोका जा सकता है और एक लोग अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं जागरूकता के लिए और इसमें सुधार आ सके?
0: बिल्कुल, लोगों को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। कभी भी हमको अगर बाजार में, मार्केट में जाना है तो कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा हम कपड़े की पॉलिथिन, कागज की पॉलिथिन, इनका उपयोग करें
1: जी।
0: किसान भाइयों को भी ज्यादा से ज्यादा, जो गांव में हम शहर से कोई भी सामान ला रहे हैं तो कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का बैग्स या अन्य जो हमारे सॉइल को या हमारे जीवांश पदार्थ है, खाद है, विदेशी खाद है, उनको दूषित ना करें
1: जी।
0: हमारे घरों पर पता रही वो पॉलिथिन जा रही है, तो किसान भाई भी मार्केट से जो सामान लेके आ रहे हैं उसको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कागज की पॉलिथीन, कपड़े की पॉलिथीन उसमें लाए
1: जी।
0: एक दूसरा काम कि हमको विशेष रूप से जो हमारी सॉइल्स को पॉलिनेट कर रहे हैं
1: जी,
0: पॉल्यूशन कर रहे हैं जो उसमें प्लास्टिक सोल, उनको हम डीकम्पोज करें
1: जी,
0: है ना। और हम नगर निगम है, नगर पालिका है, इनमें हम जो है उसका सही सॉल्यूशन करें। ऐसा नहीं हमने उठा के जहाँ हमारा गोबर का इकट्ठा हो रहा है और वहीं हमने पॉलीथिन भी डाल दी, कांच भी डाल दिया और अन्य कोई भी सिस्टम वो भी डाल दिया जो डिकम्पोज हो ही नहीं सकता या कई सालों में होते हैं, और वो हमने उठा के फिर खेतों में डाल दिया
1: जी,
0: नदियों में पानी में चला गया, वो जमीन में पहुंच गया कहीं दूसरी जगह, उसमें हमने पानी दिया, कहीं कैनाल है, अन्य चीजें हैं, बहुत सारे हमने पेस्टिसाइड हैं जिसमें जीवांश पदार्थ या अन्य माइक्रोब्स को वो डैमेज कर रहे हैं, संख्या कम कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें भी हम नहीं स्प्रे करें, तो अवॉइड करें उनको। बहुत सारे फर्टिलाइजर, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डालने से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी खत्म हो रही है
1: जी।
0: तो ऐसे करके हमें इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, जहां तक कोशिश है वो करें
1: जी।
0: हमें कम से कम पॉलीथिन का और इनका तो हमें बिल्कुल करना ही पड़ेगा, एक ही जगह स्थान पर इकट्ठी करें और उसको हम डीकम्पोज करें। हमें घूरे पे या खेत पे कहीं कोई बच्चे हैं, बच्चों को भी हम अवेयर करें कि भाई गांव में तो किस अक्सर ये होता है बच्चे कुछ भी लाए
1: जी
0: और उन्होंने पॉलीथिन फाड़ी और वहीं फेंक दी
1: जी, जी।
0: और वो उड़ के पता चला गांव के घूरे पे चली गई, घूरे से वो खेत में चली
1: गई,
0: तो इससे बहुत सारी हमारी जमीन में हमारी मृदा का बहुत दूषित हो रही है और बहुत सारी चीजें उसमें जमीन
1: में, मतलब लोगों में जागरूकता जरूरी है और वहीं से शुरुआत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से ही हम अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं हमारी मृदा इससे बहुत दूषित हो रही है और ये हमें एक्टिव नहीं करना है, चाहे कोई भी किसी प्रकार की पॉलीथिन हो, प्लास्टिक हो, प्लास्टिक का कंटेनर हो, तो पता चले कि वहां हम नहीं डालें, ऐसा स्थान पर इसको इकट्ठा करें और किसी भी कबाड़े वाले को रिसाइकिल करें, रिसाइकिल की जगह जाए वो रिसाइकिल हो। गवर्नमेंट को भी इस पर फोकस करना चाहिए कि प्लास्टिक को रिसाइकिल ज्यादा से ज्यादा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में उसको रिसाइकिल करना चाहिए, पॉइंट बनाना चाहिए पंचायत स्तर पर, नगर परिषद स्तर पर, नगर निगम स्तर पर कि वहां वो प्लास्टिक को खरीदें,
1: धूलें,
0: प्लास्टिक पॉलीथिन है, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस करने की आवश्यकता है जिससे वो खेतों में और वहां ना जाए।
1: सही बात,
0: क्योंकि बहुत ज्यादा खेतों में पॉलीथिन अगर गई तो एक दिन हमारे मृदा बिल्कुल ही दूषित हो जाएगी।
1: सर एक सवाल और है कि सतत मृदा प्रबंधन पद्धतियां क्या हैं, जैसे न्यूनतम जुताई, फसल चक्र, जैविक पदार्थ जो होते हैं इनका उपयोग, और ये क्यों आवश्यक होते हैं?
0: बहुत सारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है फार्मर्स को
1: जी
0: वो गुड ही करना चाहिए, जिसे हमें जितनी जुताई की आवश्यकता है
1: जी,
0: हमें जिस क्रॉप के लिए कहें कि एक बार हमें कल्टीवेटर करना है तो एक बार ही करें। अधिक कल्टीवेशन करने से भी हमारी सॉइल कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है। डिस्टर्बेंस मतलब हम जितनी ज्यादा सॉइल को डिस्टर्बेंस करेंगे, जुताई करेंगे खेत उतना ही ज्यादा सॉइल महीन होगी।
1: अच्छा अच्छा,
0: उसकी पोर स्पोर कम होगी
1: जी, जी।
0: जब पोर स्पोर कम होंगे तो हमारी मृदा जो हम कहें बहुत सिंपल भाषा में सीमेंट जैसी हो जाएगी
1: जी, जी, जी।
0: सीमेंट बहुत ही महीन होती है
1: जी,
0: और जब महीन कोई चीज होगी तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी
1: जी,
0: उसका ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं हमारी मृदा है वो अनफर्टिलिटाई होगी
1: जी,
0: है ना, उसकी उर्वरता शक्ति खोएगी। और अगर और ज्यादा महीन हुई तो हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की
1: जी
0: वो धीरे धीरे कम होगी, कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरा सीपेज जो नीचे हमारा वाटर जाता है वो नहीं जाएगा
1: जी,
0: और बाढ़ आने की स्थितियां बढ़ेंगी
1: जी, जी, जी।
0: तो हमें मृदा की जुताई, जितनी हमारी कोई क्रॉप है उसको कितनी आवश्यकता है
1: जी, जी।
0: एक बार कल्टीवेटर चलाना है, दो बार चलाना है, तीन बार चलाना है, उतना ही एस पर अनुशंसित
1: जी,
0: ऐसा नहीं कि हमने तीन बार चला दिया खेत नहीं बना, और खेत की कंडीशंस क्या है
1: जी, जी।
0: उसी के अनुसार हमारी किसान भाई खेतों में कल्टीवेटर चलाएं
1: जी, जी।
0: रोटावेटर चलाएं या अन्य और कोई भी इम्प्लीमेंट है तो उस इम्प्लीमेंट को चलाएं।
1: अच्छा,
0: बार बार नहीं चलाएं, बार बार चलाने से हमारी मिट्टी कहीं ना कहीं बहुत महीन होती है और पोर स्पोर अपनी फिजिकल जो होती है वो अपनी होती है।
1: मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं?
0: हम अगर बात करें बहुत ही सिंपल बात करें, अगर रेगिस्तान और हमारी जो फर्टाइल सॉइल है ना, बंजर भूमि और उर्वरक भूमि
1: जी,
0: अगर हम कहें कि बंजर भूमि क्या है
1: जी,
0: तो सिंपल भाषा में माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट
1: जी,
0: जिस मृदा में सॉइल में माइक्रोब्स नहीं है
1: जी
0: और न्यूट्रिएंट नहीं है, वो जमीन बंजर जमीन की है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ। और जिस मृदा में हमारे माइक्रोब्स हैं
1: जी जी,
0: एनिसिव सेल्स माइक्रोब्स हैं
1: जी,
0: और न्यूट्रिएंट है
1: जी जी,
0: न्यूट्रिएंट इज द ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, बोरॉन है
1: जी,
0: ये सब है, तो वो हमारी फर्टाइल सॉइल
1: जी जी जी,
0: और यही माइक्रोब्स उस न्यूट्रिएंट को प्लांट को अवेलेबल करा।
1: अच्छा अच्छा जी।
0: तो प्लांट की ग्रोइंग के लिए
1: जी
0: अहम रोल माइक्रोब्स निभाते हैं
1: जी जी जी।
0: किसी भी क्रॉप के रेसिड्यू डिकम्पोज करने के लिए
1: जी
0: सबसे बड़ा रोल माइक्रोब्स का ही होता है
1: जी,
0: नहीं तो सालों वहां कुछ भी फसल का अवशेष पड़ा रहेगा, अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो उसको वो डिकम्पोज नहीं करेगा। तो मृदा की जीवित रखने के लिए सबसे अहम रोल माइक्रोब्स का और न्यूट्रिएंट्स का।
1: अच्छा अच्छा जी,
0: इतना बड़ा रोल है हमारी मिट्टी के
1: जी,
0: मिट्टी में माइक्रोब्स होने का। बोलते भी हैं एक चुटकी मिट्टी में, एक ग्राम मिट्टी में लाखों की संख्या में जीव होते हैं।
1: सही सही है ना।
0: तो बिल्कुल राइट बात है कि वो हमारी मिट्टी में जीव नहीं होंगे तो वो मिट्टी नहीं होगी।
1: सर अगर आप कोई सुनने वालों को उदाहरण दें, जो विश्व स्तर पर लागू किया गया कोई सफल मृदा संरक्षण का ऐसा अभ्यास हो, ताकि सुनने वाले और बेहतर तरीके से उसको समझ सके।
0: हम कहेंगे पूरे विश्व में
1: जी
0: हरी खाद
1: जी जी जी
0: का अगर उपयोग करें
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी
1: जी
0: जो है
1: जी
0: वो बिल्कुल उर्वरक होगी और उसमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी
1: जी जी,
0: हमारे किसान भाइयों के लिए उत्पादन में भी सहायक होगी
1: जी,
0: और अन्य अन्य असंख्य जो हमारे जीव जंतु हैं उसमें
1: जी
0: उनमें भी वो सहायक होगी
1: जी,
0: क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी मृदा अगर जीवित नहीं होगी तो बायोडाइवर्सिटी को भी सुरक्षित रखना बड़ा
1: जी जी जी जी।
0: तो विश्व स्तर पर अगर ग्रीन मैटेरियल का अगर उपयोग किया जाता है
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से ये बड़ा लाभकारी काम
1: जी होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी जिक्र होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड की ये जो योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए, ये किस प्रकार से सहायक रहती है?
0: मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड हेल्थ योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
1: जी,
0: भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है
1: जी।
0: आज वर्तमान में जो किसानों के लिए
1: जी
0: उनकी मृदा का स्टेटस कहें कि क्या हमारी सॉइल है
1: जी,
0: हम अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितनी है, सीबीसी कितना है, हमारी हाइट कितनी है
1: जी जी जी,
0: है ना, अन्य अन्य प्रकार की हम जांच करा के और हम अपने बॉडी के लिए पता करते हैं। इसी प्रकार से सैम
1: जी
0: कि हमारी सॉइल में किस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए क्या है, क्या हमारी मृदा की स्थिति क्या है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है
1: जी,
0: उसकी भौतिक स्थिति कैसी है, रेत है, लॉमी है, सैंडी है, एल्यूवियल है
1: जी,
0: है ना, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसका पीएच कितना है, ईसी कितना है, नाइट्रोजन परसेंट कितना है उसमें, फास्फोरस कितना है, पोटाश कितना है
1: जी,
0: ये सारी स्थिति हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी अति महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: उनको जानने के लिए सरकार ने कि हमें किस क्रॉप के लिए कितना फर्टिलाइजर डालना है
1: जी,
0: कितना फर्टिलाइजर लगेगा, हर क्रॉप के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन फर्टिलाइजर है
1: जी।
0: तो किसान भाई की हमारी सॉइल में कितना है
1: जी जी,
0: एक सिंपल भाषा में कहूँ, हमारी थाली में दो रोटी रखी हुई और उनको भोजन करना है चार रोटी
1: जी,
0: तो हमें कितनी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, दो रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, कि दो ऑलरेडी हमारी थाली में रखी हुई,
1: सही बात,
0: दो की हमको और पड़ेगी, हम चार रोटी खाते हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार से सॉइल में
1: जी
0: कितने उर्वरक है उसमें मात्रा में
1: जी,
0: और कितने की और आवश्यकता है जो हम क्रॉप फसल को लगा रहे हैं
1: जी जी जी।
0: तो किसान भाइयों को भारत सरकार की जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, फ्री में किसी भी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक ऑफिस में अपना सॉइल सैंपल दे के
1: जी
0: और वहां से अपना सॉइल का स्टेटस चेक करवा सकते हैं
1: जी जी,
0: फ्री कॉस्ट
1: जी जी।
0: और साल में दो बार
1: जी
0: ये भी है
1: जी,
0: खरीफ से पहले
1: जी
0: और रबी से पहले,
1: ठीक है,
0: साल में दो बार फ्री कस्ट, और अपनी सॉइल के हिसाब से क्या मुझे फसल लगानी है, हमारी फसल में क्या क्या हमको डालना है।
1: अच्छा अच्छा,
0: 2014 में ये लागू हुई
1: जी,
0: और उसके बाद से आज तक ये चालू है।
1: सर एक सवाल ये भी है कि शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए शहर मृदा स्वास्थ्य पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को कैसे अपनाया जा सकता है?
0: जो मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है
1: जी,
0: उसका शहरीकरण से क्या प्रभाव है? मैं इतना कुछ समझ पा रहा हूँ।
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो उससे हमारा जो कल्टीवेटेड भूमि है
1: जी जी जी,
0: वो धीरे धीरे कम हो रही है।
1: जी जी,
0: जितनी भी कल्टीवेटेड भूमि है
1: जी,
0: वो हमारी कम होती जा रही है। शहर को हमेशा ये देखना चाहिए कि वहाँ मृदाओं में कचरा ना फैलना, जैविक अपशिष्ट खाद को बनाना
1: जी,
0: है ना, पेड़ लगाना,
1: क्योंकि
0: पेड़ लगाने से हमारी मृदा का कटाव बचता है, और किसी के पेड़ के पौधे पत्ते जब गिरते हैं
1: जी,
0: तो हमारी मृदा के लिए बहुत वो आवश्यक होती है और खाद मिलते हैं
1: जी, जी,
0: और जीवांश पदार्थ मिलता है। वर्षा का जल संरक्षण हमेशा संरक्षण है, वो भी करना चाहिए समय में। आप जहाँ स्टोरेज टैंक है, ड्रेनेज टैंक है, उनमें भी हम संरक्षण करके और सॉइल में वर्षा जल संरक्षण करना चाहिए। मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे प्रयास करना चाहिए कि हमें चेक डैम है
1: जी,
0: है ना, वो बनाना चाहिए। रोड सीमेंटेड रोड है वो कम से कम बनाना चाहिए। उनके आसपास है वो पेड़ खाली रखना चाहिए, कैसे रियाज और जिसमें हम पेड़ लगा सके, पौधे लगा सके, वो करना चाहिए। ये सारी चीजें निश्चित रूप से शहरीकरण में होना चाहिए मिट्टी के लिए
1: जी,
0: और करना चाहिए।
1: सर एक ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एक अहम सवाल है कि मृदा संरक्षण की अगर हम लोग उपेक्षा करेंगे तो क्या इसके परिणाम हम भुगतेंगे, देखने को मिल सकते हैं?
0: बहुत ही आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
1: जी,
0: और निश्चित रूप से किसान भाइयों को और जो लोग सुन रहे हैं
1: ठीक,
0: अगर हम मृदा को उपेक्षित करते हैं
1: जी,
0: तो मानव जीवन बड़ा संकट में आ
1: जी, बिल्कुल
0: है ना
1: जी।
0: कैसे? क्योंकि हमारा फूड, जितना भी फूड है
1: जी,
0: चाहे हमारी बायोडाइवर्सिटी हो, जल, जमीन और वायु
1: जी,
0: ये तीन मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है
1: जी, जी।
0: और अगर हमने उसमें से जमीन को हटा दिया, मृदा को हटा दिया
1: जी,
0: तो हमारा जीवन पूरा बायोडाइवर्सिटी विश्व का हो चाहे भारत का हो
1: जी,
0: उसमें संभव नहीं हो
1: जी।
0: तो मृदा हमारे लिए बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट है। अगर हमने इसको अवहेलना की
1: जी,
0: और अगर इसको हमने नहीं देखा, तो निश्चित रूप से हमारी सॉइल को अनफर्टाइल सॉइल होने में समय नहीं लगेगा और हमारा मानव जीवन एक
1: जी।
0: पूरी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, मृदा स्वास्थ्य हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, बहुत सारी स्कीम्स को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर काम कर रही है हमारी सरकार, रोशन कर रही है
1: जी।
0: और बहुत सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सॉइल पे, लेकिन बहुत चाहे पूरी मैपिंग हो, कौन सी कहाँ किस प्रकार की सॉइल है, क्या क्या आवश्यकता है, कहाँ बहुत सा पॉल्यूशन हो रहा है, इन चीजों को लेकर भी बहुत अवेयरनेस आ रही है। तो निश्चित रूप से हमने अगर अभिनय की तो बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
1: एक, एक आम नागरिक जो होता है वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मिट्टी के संरक्षण के लिए कौन कौन से ऐसे काम है, छोटे छोटे काम है जो वो कर सकता है?
0: बड़ी आसानी सवाल है कि अगर हमने पूरे जीवन में 10-20-25 पेड़ लगा दिए
1: जी,
0: क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी ऐसा करते थे
1: जी,
0: और आज जो पेड़ लगे हुए हमारे बुजुर्गों के लगे हुए
1: जी,
0: तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया
1: जी,
0: और अपने जीवन में अगर 10-20-50-100 वृक्ष लगा के और उसका संरक्षण कर लिया, तो मिट्टी के लिए सबसे बड़ा भोजन
1: जी
0: जो मिट्टी का है
1: जी, जी
0: वो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इसी खाद है, यही मिट्टी का भोजन है, यही मिट्टी उनके लिए उर्वरक बनती है
1: जी।
0: तो सबसे बड़ा काम है कि वृक्ष लगा दे हमारी मिट्टी स्वास्थ्य।
1: सर आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का बड़ा इस्तेमाल है, वो बढ़ता ही, मतलब बिना उसके तो लाइफ आजकल है ही नहीं, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए?
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया का भी एक बड़ा उपयोग किया जा सकता है
1: जी।
0: अगर आप कुछ अच्छे वीडियोस हैं, कुछ अच्छे क्लिप्स हैं
1: जी,
0: जो लोगों को जानने के लिए बहुत शॉर्ट
1: जी,
0: और यंग जनरेशन को हम इसमें अवेयर कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें हमको रोल ये करना पड़ेगा कि इसके दुष्परिणाम हमको पहले प्रेजेंट करने होते हैं।
1: अच्छा।
0: आज हम मिट्टी को किससे दूषित कर रहे हैं और उससे क्या हानि हो सकती है आने वाली जनरेशन के लिए, और वर्तमान में
1: जी जी
0: क्या समस्याएं आ रही
1: जी।
0: जैसे हम कहें, आज एक समस्या बड़ी देखने को मिल रही है मेडिकल साइंस में
1: जी।
0: हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो एंटीबायोटिक के साथ में जिंकोविट
1: जी
0: या मल्टीविटामिन टैबलेट पहले लिखता है
1: जी, जी।
0: जो विटामिन्स की, मिनरल्स की जो डिफिशियंसी हमारे शरीर में, मानव शरीर में आ रही है, वो कहाँ से आ रही है?
1: जी जी,
0: हमारे मिट्टी से आ रही है, क्योंकि मिट्टी में डिफिशियंसी है, इसलिए वो जो मिट्टी से ग्रो हो रहा है फूड, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे ग्रेन्स हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, पल्सेस हो, सीरियल्स हो,
1: जी,
0: क्योंकि सारा विटामिन मिनरल्स हमें इन फ्रूट से ही मिलता है।
1: जी,
0: अगर मिट्टी में नहीं होगा तो फूड में भी नहीं आएगा, और फूड में नहीं होगा तो हमारे शरीर में भी नहीं आएगा। सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो हमें मिट्टी में ये सारी चीजें रखना आवश्यक है।
1: जी,
0: मिट्टी में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फूड भी हमारी साइकिल में होगा और हम फिट रहेंगे।
1: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या कुछ भूमिका रहती है इसमें, और क्या कुछ कार्यक्रम भी चलते हैं गाँव में स्टूडेंट्स के लिए जागरूक करने के लिए, और क्या कुछ आप लोग करते हैं?
0: बिल्कुल, कृषि विज्ञान सारे समस्त पूरे भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं।
1: जी जी,
0: और समस्त कृषि विज्ञान केंद्र सॉइल हेल्थ को लेके, चाहे वो उनका टेस्टिंग हो, चाहे नरवाई प्रबंधन हो, चाहे माइक्रोब्स की बात हो, चाहे न्यूट्रेंट्स की बात हो,
1: जी जी,
0: सॉइल हेल्थ को लेके समय समय पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण है, अवेयरनेस कार्यक्रम है,
1: जी,
0: चाहे बायो फर्टिलाइजर्स हो, उस सभी प्रकार के ट्रेनिंग फार्मर्स को अवेयर कराता है गांव में जाकर या ऑन कैंपस कृषि विज्ञान केंद्र में। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र तो 100% जैविक कृषि कर रहा है पूरे नर्मदापुरम में, क्या हम तो पूरे मध्य प्रदेश में ही कह सकते हैं कि ये 100% हमारा पूरा 100% जैविक केंद्र है।
1: जी,
0: किसी प्रकार का हम कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं।
1: जी जी,
0: तो निश्चित रूप से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, समस्त कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी सालों साल टिकाऊ रहे और उपजाऊ रहे, और हमें समस्त पूरे रास्ते का फूड देती रहे।
1: सर, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी आप लोग मतलब वहां पर भी होता है या गांव वगैरह में या शहरों में भी? क्या
0: बिल्कुल, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं वो हम गांव में भी देते हैं और हमारे कैंपस में भी देते हैं, बट लेकिन हमारी सीमाएं हैं।
1: जी,
0: हम नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट जिले में समस्त गाँव में
1: जी,
0: और हमारे यहाँ अपने केंद्र पर भी देते हैं
1: जी,
0: और 5 दिसंबर को भी हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण सैसा हो रहा है, एक सेमिनार कर रहे हैं किसानों को, और जो किसान को सुन रहे हैं वो हमारे केंद्र पर आ सकते हैं, उसके विषय में पूर्व चर्चा करके और किसानों को इसको इसके बारे में भी अवगत करें।
1: सर, अब हम इंटरव्यू को समाप्त करें, आखिर में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक स्थायी मृदा प्रबंधन के लिए आप

0: सकते हैं, जिस प्रकार से हम पेस्टिसाइड्स हैं, जहर हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं
1: जी,
0: जिस प्रकार से हम नरवाई जला रहे हैं
1: जी,
0: तो ये सारी चीजें करना ठीक नहीं है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हम अपनी धरती माता को बचाकर रखें
1: जी,
0: और इसको टिकाऊ रखें, जिससे हमारा जीवन और ये धरती हमेशा चलती रहे
1: जी।
0: फसल चक्र अपनाएं, नरवाई प्रबंधन करें, हरी खाद का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद का उपयोग करें, इन सभी चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से किसान का देश पूरा विश्व खुशहाल रहेगा।
1: हम कोई दिवस आता है तो उस दिन कर लेते हैं सारी चीज, लेकिन रोज इंसान अपनी प्रैक्टिस में इन चीजों को लाए और सब लोग लाएं, बच्चे भी लाएं, बुजुर्ग भी लाएं, बड़े भी लाएं, सब लोग लाएं, शहरों में गांवों में, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है।
0: देखिए, निश्चित रूप से सही कहा कि हर व्यक्ति को इसमें प्रयास करना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि इसमें एक ही किसान का ही नहीं, चाहे शहर हो, चाहे मानव जीवन का हर व्यक्ति, चाहे भले ही वो खेतहार मजदूर ना हो
1: जी,
0: और मतलब खेती वाला करने वाला किसान ही ना हो
1: जी,
0: उसका भी बड़ा अहम रोल है
1: जी,
0: क्योंकि फूड तो कहीं ना कहीं वो जमीन से ही खा रहा है, जमीन से आ रहा है, लेकिन बट हमें पॉलिथिन्स है या हमें अन्य चीजें हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उन चीजों का भी बिल्कुल ध्यान, हर व्यक्ति का इसमें रोल है
1: जी।
0: अगर वो ये कहे कि मेरे पेड़ लगाने से क्या होगा
1: जी,
0: ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे सीड्स वॉल हैं, ले जाके अगर जंगल में ही डाल देंगे या हम पेड़ के किनारे डाल दें
1: जी जी,
0: धीरे धीरे करके हमारा एक चीटी जैसा भी योगदान
1: जी,
0: एक बड़ा योगदान बन जाता है
1: जी जी।
0: लोग सोचते हैं कि यार हमारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा
1: जी,
0: लेकिन हमारे एक पेड़ से अगर हम सारे लोग एक एक पेड़ लगा दें तो आज 150 करोड़ हमारे पूरे भारत में पेड़ लग
1: सकते। सही बात है,
0: तो सभी का एक चीटी का भी योगदान होता है, तो निश्चित रूप से वो बड़ा योगदान हो जाता है और हम सभी का योगदान उसमें करना चाहिए, चाहे पॉलिथिन से मदा साहब की मदा संरक्षण के लिए हम सबको धीरे धीरे प्रयास करके और उसको हमको समझती हो ले जाना।
1: सर, इतने अच्छी बात पर हम इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सर, आपने रेडियो आजाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम। तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम के बहाने इन दिनों हमने प्रवेश किया है योग वासिष्ठ के अमूल्य कथा संसार में। श्री राम की वैराग्य दशा पर चर्चा करते हुए आज हम पहुंच रहे हैं अहंकार और चित्त दोष के विषय तक, जिसमें प्रश्न है कि मनुष्य के सारे दुखों का मूल क्या है। क्या बाहरी परिस्थितियां हमें बांधती हैं या हमारे भीतर छिपा अहंकार और चित्त की अशुद्धियां ही बंधन का कारण बनती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मन के इन्हीं सूक्ष्म दोषों की जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाते हैं, चर्चा अहंकार की जो स्वयं को केंद्र मानकर भ्रम पैदा करता है, और चित्त दोष की जो मन को अशांत, अस्थिर और मोहग्रस्त बनाए रखते हैं, क्योंकि अहंकार और चित्त दोषों के साथ मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं उतर सकता है। तो आइए सुनते हैं आत्म जागरण की वो वाणी जो मन को भीतर से प्रकाशित करती है और जीवन को नई दृष्टि देती है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: योग वासिष्ठ ग्रंथ खुला हुआ है योग संवाद कार्यक्रम में, भगवान श्री राम की वैराग्य दशा है और वो जो कुछ अपनी बात कह रहे हैं उसके बहाने हम सबके प्रश्नों का समाधान उत्तर मिलता जा रहा है। तो आज हम अहंकार और चित्त दोष पर बात करेंगे
2: जी।
1: और मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं

0: हैं कि मनुष्य के जीवन में विपत्ति का क्या कारण बताया गया है योग वासिष्ठ में।
1: राम जी जब संसार भ्रमण पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जब लोगों को देखते हैं
0: जी,
1: तो देखने के बाद जो उनको दिखाई देता है तो वो ये पाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो आपत्ति है या जो विपत्तियां हैं उसका मूल कारण उनको अहंकार दिखाई दिया। और ये गुरु जी से वो कहते हैं, वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैंने ये देखा कि व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर दुख और विपत्तियों को आमंत्रित करता है। और जबकि लोगों को लगता है कि हम अपने विवेक या अपने मैपन से हम दुख और विपत्तियों को दूर कर रहे हैं, जबकि सच ये नहीं है। वो कहते हैं सारे के मूल में जो है वो अहंकार है। अहंकार ही मनुष्य पर आने वाली आपत्ति है जो उसे शारीरिक कष्ट भोगने के लिए मजबूर करती है। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं भी होती हैं। अब आप कभी विचार करिए कि क्या बिना अहंकार के हम सुखी और दुखी हो सकते हैं? अहंकार का मतलब हुआ कि जहां आपने कोई आकार ले लिया, चाहे देह का ले लिया और चाहे मानसिक रूप से आपने अपनी कोई विशिष्टता बना ली कि मैं अमुक हूं, या मेरे साथ किसी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आपने पहले से तय कर लिया। ठीक है, आपने जिन परिस्थितियों में ये व्यवहार तय किया उन परिस्थितियों से वो व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है। आपने अपनी मानसिक दुनिया में उस व्यक्ति को वहां रख करके उस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कर ली और जब उस व्यक्ति के पास गए तो चूंकि वो दुनिया मानसिक आपकी थी, वो व्यक्ति उसमें था नहीं और उसने अपनी दुनिया के अनुसार आपसे व्यवहार किया जो आपकी दुनिया से अलग हो सकता है और होता भी है। तो फिर आप दुखी हो गए या आपके अनुसार कर दिया तो आप सुखी हो गए, जबकि सच ये था कि मात्र कोइंसिडेंट था। तो अहंकार मतलब अपने को विशेष मान लेना। अहंकार हमेशा विशेषता की तरफ आपका ध्यान ले जाएगा कि अहंकार का मतलब मैं का आकार, चाहे वो देह हो और चाहे मैं आपके उपाधियों का मैं हो। भाई उपाधियां भी तो मैं बनाती हैं कि मैं ये हूं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो कहते हैं कि सारी आपत्ति और मानसिक जो व्यथाएं होती हैं वो अहंकार से होती हैं।
0: अहंकार से होती हैं। ये भी अद्भुत बात है कि हम सभी जीवन में हैं, संसार को हम सब देखते हैं, यात्राएं हमने भी अनेक की हैं, लेकिन एक किशोर बालक श्री राम जब एक यात्रा करते हैं तो वो किस दृष्टि से संसार को देख रहे हैं।
1: हाँ,
0: अद्भुत बात है ये।
1: 14 साल की उम्र है,
0: लेकिन साल साफ साफ
1: इससे ये देखिए साबित होता, क्योंकि यहाँ पर हम एक बात ध्यान दें कि जैसे गीता की बात हमने की तो गीता में अर्जुन जीव का प्रतीक है, यहाँ राम जी ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म जीव कैसे देखता है ये देख रहा है। ये देखिए कितनी बेबाकी है। इसलिए ये ग्रंथ बड़ा अद्भुत और दुर्लभ है। कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने खुद ही कहा कि ऐसा संसार का कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस योग वासिष्ठ में नहीं है, और अगर समाधान योग वासिष्ठ में नहीं है तो कहीं कोई समस्या भी नहीं है, ऐसी उनकी घोषणा है।
0: जी,
1: तो ये इतना दुर्लभ ग्रंथ है कि ब्रह्म जब इस जगत को देखता है तो कितने सूक्ष्म दृष्टि से देखता है कि उनको जो लोगों की परेशानियां, विपत्तियां, आपत्तियां दिखाई दी वो किसी विषय वस्तु से नहीं, अहंकार से दिखाई दी। और हम लोग आज भी विषय वस्तु को मानते हैं कि ये हमारी विपत्ति का कारण, अहंकार को नहीं मानते।
0: जी। अच्छा, तो फिर अहंकार का त्याग कैसे किया जाए?
1: जी, अहंकार का त्याग, बड़ा सुंदर आपने कहा कि ऐसे अहंकार का त्याग, राम जी कहते हैं कि इस अहंकार का त्याग मैं इस तरह से करता हूं, अपना उन्होंने खुद बताया, कहा कि मैं ना अमुक नाम वाला हूं, ना विषयों में मेरी रुचि है और ना मन ही मेरा है, मैं शांत होकर मन को जीतने वाला महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहता हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि मैं ना अमुक नाम वाला हूं, यानी आपने जो एक नाम, आपका नाम है ही, आपके संबंधों के भी नाम होते हैं, यानी देखें तो आप नाम का ही समुच्चय हैं एक प्रकार से, है ना। किसी पद पर है तो उस पद के नाम से आप नामित हैं कि मैं ये हूं। तो अहंकार उसी नाम को चोट पहुंचाता है। देखा जाए जो नाम आप बन के बैठे हैं, जिस नाम को आपने धारण कर रखा है, उसी धारणा की वजह से आपको दुख सुख होता है। तो कहते हैं कि हमने नाम ही त्याग दिया, तो जब नाम त्याग दिया तो नाम से होने वाला सुख दुख भी खत्म। और थोड़ा सूक्ष्म ये कहते हैं, मैं, मेरी किसी विषय में रुचि नहीं है। आप बिना किसी विषय में रुचि रखे आप सुखी दुखी नहीं हो सकते। रुचि के नाते ही वो विषय मिली तो सुखी हुए, रुचि के नाते ही वो विषय नहीं मिली तो दुखी हुए। अगर रुचि नहीं था तो न सुख था न दुख था
0: जी,
1: है ना। तो देखा है तो वो कहा कि मेरी किसी विषय में रुचि ही नहीं है, तो ये भी उन्होंने अनासक्त भाव पैदा किया वहां
0: जी।
1: और कहते हैं न मन ही मेरा है, ये जो मन जो ये तमाम जो मतलब अहंकार की रचना करता है या मन ही अहंकार बन के घूम रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की हम लोग बात करते ही है वेदांत में, तो मैंने मन का जो सबसे कंडेंस फॉर्म है वो अहंकार है। तो कहते हैं जब मन ही मैं नहीं हूं तो फिर अहंकार होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अहंकार का जो त्याग है वो इसी तीन सूत्रों से हो सकता है, न मैं अमुक नाम वाला हूं
0: जी,
1: अपनी उपाधि त्याग दें, और न किसी विषय में रुचि रखें। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि विषय में रुचि, इसका अर्थ उदासीनता है। पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा
0: जी,
1: क्योंकि उदासीनता कई बार हमारे राग की वजह से आती है, इस उदासीनता की बात यहाँ नहीं है
0: जी, जी, जी।
1: रुचि का न होना मतलब राग का न होना, ये है निष्कामता। निष्कामता का मतलब उदासीनता है। निष्कामता एक बहुत ऊंची अवस्था है। जैसे हम लोग कई बार प्रेम प्यार के झमेले में फंस जाते हैं और हम अपनी आसक्ति को प्रेम का नाम दे देते हैं, जबकि प्रेम आसक्ति नहीं है। प्रेम देखें तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपकी कोई कामना ही नहीं होती, और आसक्ति बिना कामना के नहीं होती। इसीलिए आसक्ति अक्सर वासनात्मक होती है और प्रेम वासना से मुक्त होता है, परम पवित्र होता है। तो ये जरा समझने जैसा है। तो वैसे ही ये उदासीनता कि न मैं कोई मेरी रुचि है और न मन ही मेरा है, तो जब ये स्थिति आएगी तो आपका अहंकार ऐसे ही निर्मूल हो जाएगा, क्योंकि यही तीन अहंकार को खड़ा करते हैं, मन मेरा है, मेरी इसमें रुचि है और मेरा ये नाम है। तो आप देखें तो ये पूरा अहंकार का संगणित रूप खड़ा
0: जी,
1: हो गया
0: जी, जी।
1: तो त्याग इन्हीं से राम जी ने कर दिया
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: कहते
0: जी।
1: हैं ऐसे ही आदमी भी कर सकता है।
0: अच्छा, मानसिक चिंताओं को दूर करने का क्या उपाय है?
1: मानसिक चिंताओं को दूर करने का उपाय अहंकार का त्याग है, क्योंकि मानसिक चिंताएं जो उसी से हैं, तो निश्चित ही उसका त्याग करके अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती है। यानी जैसे अच्छा अहंकार का मूलोच्छेदन करेंगे आप, तो वो क्या है? वो है अविद्या। जैसे अविद्या बस ही आपने किसी नाम को किसी विषय को, मैं कहता हूं कि जिस विषय में आपकी रुचि है वो विषय जब नहीं था तो क्या आप नहीं थे, या रुचि हमेशा बनी रहेगी क्या? नहीं बनी रहेगी। तो एक तरह से देखें तो अगर आपको ज्ञान हो गया, वास्तविकता का ज्ञान हो गया, जो विद्या की शरण आपने ली, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर, हनुमान जी के बारे में कहते हैं। विद्यावान और विद्वान दोनों में अंतर है। विद्यावान होने के बाद अविद्या का मतलब कहते हैं ना विद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या का नष्ट होना ही अहंकार का मूलोच्छेदन है, क्योंकि अहंकार की जननी अविद्या है। जी
0: अच्छा, जो विवेकवान पुरुष है वो अहंकार को किस रूप में देखता है?
1: ये सुंदर सवाल किया आपने। विवेकवान पुरुष जो है अहंकार को अतिशय दुख रूप देखता है।
0: अच्छा,
1: जैसे जो विवेकवान नहीं है वो भी दुख तो नहीं चाहता। जैसे हम जिन भी वस्तुओं या विषयों के साथ हमारा दुख का अनुभव है, उन विषय वस्तुओं से हम अपने को विरत रखते हैं, दूर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमें दुख देता हो, उसके आने की खबर मिलने पर हम उससे मिलना नहीं चाहते, या कोई बहाना कर देते हैं कि हम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव क्या है कि इस आदमी ने मुझे दुख दिया था तो इस बार भी दुख देगा। ठीक है, तो जो हमारे अंदर जो उससे दूर रहने का भाव आया, दुख के नाते आया, तो ये कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष है वो अहंकार को ही दुख का मूल मानता है। वो कहते हैं कि ये जो अहंकार ही है यही अतिशय दुख रूप है, तो वो अहंकार से हमेशा अपने आप को बचाता है। अहंकार से बचाने का अर्थ न मैं अमुक नाम वाला हूँ, न मेरी अमुक वस्तु में रुचि है, और न मन ही मेरा है, यही अहंकार से बचने का उपाय है। तो हर पल वो अपनी इस जागरूकता को बनाए रखता है, जैसा कि राम जी बना के रखे हुए हैं, और वो जो उनके वैराग्य की स्थिति दिखाई दे रही है वो उसका वर्णन कर रहे हैं जी।
0: अच्छा, चंचल चित्त से जो ये जगत है, संसार है, वो किस प्रकार का दिखाई देता है?
1: चंचल चित्त से जो ये संसार है ना, आपको ये विषयों के चिंतन के क्षोभ में हमेशा घुमाता रहेगा, जो चित्त की चंचलता है। आप देखिए, जब चित्त क्या करता है, बार बार क्षणभंगुर जो विषय हैं, आप कभी भी, हम कहते हैं कुछ मत करिए, योग वासिष्ठ जो कह रहा है, और आप अपने अनुभव को देखिए, क्योंकि राम जी ने भी लोगों के व्यवहार को ही देखा। हम एक बार अपने व्यवहार का आत्मन्वेषण करें तो हम ये पाएंगे कि जो ये चंचल मन है, ये कहीं कोई भी इसे अनुकूलता प्राप्त नहीं होती। चंचल चित्त जो है ये कभी भी अनुकूल स्थिति नहीं देगा, क्योंकि अनुकूलता में भी प्रतिकूलता ढूंढने की इसकी प्रवृत्ति होगी, है ना, जैसे हम प्रतिकूलता देख रहे हैं तो हम अनुकूलता खोज रहे हैं, जब अनुकूलता में आए तो प्रतिकूलता। इसके संदर्भ में आपको एक उदाहरण दूंगा मैं कि जैसे आपने कल्प वृक्ष की कथा सुनी होगी
0: जी,
1: कि एक व्यक्ति जाता है एक पेड़ के नीचे और बहुत थका है, कहता है बड़ी गर्मी है, थोड़ी हवा चलती तो हवा बहने लगती है, ठंडक आती है तो फिर उसे भूख का एहसास होता है, कहता है भोजन मिल जाता तो भोजन भी आ जाता है, फिर ऐसे कहते हैं अब तो थोड़ा विश्राम करना बनता है, थोड़ी नींद आ जाती तो सो भी जाता है, फिर जागता है तो वो सारे दृश्यों को याद करता है कि ये जो जो भी मैंने इच्छा की सब पूरी हो गई, क्या है कहीं कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं है और कहीं ऐसी शक्ति तो नहीं है जो मुझे ही मार डालेगी, तो फिर मार भी डालती है। तो ऐसे कल्पना एक है
0: जी।
1: तो ये जो चित्त है ये या जो चंचल चित्त है वो इसी तरह का है। आप देखेंगे कि वो सुख के साथ साथ दुख भी खोजने में माहिर है, दुख कहीं और से नहीं आता। इसीलिए जो विवेकवान लोग रहे हैं वो कहते हैं कि अगर आपने सजगता पूर्वक जीवन जीना सीखा, यानी होश के साथ आप बाहोश होके जीने लगे, तो आप अपने चित्त के उन स्मृतियों को कभी भी नहीं जागृत करेंगे जिन स्मृतियों से आपको दुख हुआ था या होता है। और आप जब भी दुखद स्मृतियों के साथ आप होते हैं तो आप देखिए संसार में फिर सुख खोजना आपके लिए मुश्किल होता है। और जो आजकल आज सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में आप देखते हैं वो क्यों आता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जीवन को बचाने का अब कोई आधार शेष नहीं बचा, तो ऐसे में जीवन मिटा देते हैं। और इसके पहले जब उनके पास जीवन जीने के आधार होते हैं तो जीवन जी रहे होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो वो हमेशा से वो अलर्ट रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं कि कोई उनको मैंने कोई ऐसी चीज, जैसे हम कहते हैं अपने दरवाजे पर हम घर की सफाई करते हैं, तो ऐसे वो मन को चित्त को इतना साफ रखने का प्रयास करते हैं कि उसमें दुखद स्मृतियां ना आने पाए जिसकी वजह से वो दुख का सानिध्य कर पाए।
0: जी अच्छा शशिकांत जी, मैं चाहती हूँ कि अब हमारे सुनने वालों को आप ये बताएं कि व्यक्ति को दीनता का जो अनुभव है क्यों होता है, क्या कारण है इसका?
1: व्यक्ति के दीनता का अनुभव चंचल चित्त उसका कारण है, चित्त की चांचल्यता उसकी दीनता का कारण है। चित्त कभी भी आप, क्योंकि आप देखिए जिस चित्त में आपको अपनी दीनता का बोध हुआ है कभी वही चित्त आपको सर्वश्रेष्ठता का भी बोध कराता है। जब कभी कोई दूसरा व्यक्ति आपको आपकी दीनता के ताने कसे तंज दे तो उस समय आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि आपको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, और आप जो ये बात बोल रहे हैं ये आप शायद ये बात बोलने के लायक भी नहीं हमारे सामने, तब आप अपने उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं।
0: जी, जी।
1: तो चित्त में उत्कृष्टता का भाव कहां से आता है, आप ही लाते हैं। यानी अगर वो चित्त की चांचल्यता न हो तो निश्चित ही आप हमेशा उस उत्कृष्टता के साथ जी सकते हैं, लेकिन चित्त की चांचल्यता ही आपको दीन भी बनाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो लोग चित्त पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो जिसे इंद्रिय जयी हो जाते हैं, है ना, जिते इंद्रिय जिसे कहा जाता है वो लोग होते हैं। और इंद्रियों में सबसे जो प्रभावशाली इंद्रिय है जिसको उभयेंद्रिय भी कहते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्रदान करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म के लिए आपको उत्सुक करती हैं, तो ऐसे ही मन जो है, मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों का कारण है, इसलिए मन को उभयेंद्रिय कहते हैं, इसलिए सबसे प्रभावशाली इंद्रिय है वो, और उस पर जो काम करता है वो समझिए वो विजय प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो जो लोग मन से हार जाते हैं वो समझिए फिर उनको किसी भी चीज के लिए खड़ा खड़पना मुश्किल होता है, जिसके लिए अर्जुन की दशा है। और यहाँ राम जी मन से हारे नहीं है, मन के साथ उनके जो मन ने उनके संसार का जो सच देखा है उस सच का वो कारण लोक कल्याण के लिए वो प्रकट करना चाहते हैं कि लोग सच्चाई जान सकें कि ये अहंकार या चित्त ही सारे दोषों की वजह है। अगर हम इसको वास्तव में बोध में ला पाएंगे तो हम दोषों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे।
0: तो मन के क्षोभ का कारण भी यही है।
1: जी जी, देखिए विषयों के चिंतन से मन क्षोभ को प्राप्त करता है। यह मन मंदराचल के आघात से उछलती हुई क्षीर सागर की दुग्ध राशि के समान दशों दिशाओं में दौड़ता और भटकता फिरता है। सोचिए आप, ये उपमा दिया है इन्होंने इस ग्रंथ में कि ये किस तरीके से, मतलब ये मन शांति को नष्ट करता है। तो इस प्रकार जो है मन बार बार आपको संसार में भगाता है, तो इस मन को अगर ठीक से हम समझ पाएं तो मन को समझ पाना ही मन से मुक्ति है। एक्चुअल में मन से लड़ना नहीं है, लोग बात क्या करते हैं, मन का विरोध करना शुरू करते हैं, विरोध से तो और भी आप उसे शक्ति देते हैं और भी वो प्रभावशाली तरीके से आपका विरोध करता है। जब मन का विरोध आप करते हैं तो मन का एक, मन दो भागों में बढ़ जाता है, एक लड़ाई करता है आपसे और एक उसके विरोध में खड़ा होता है। कहते हैं मन को समझ लो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जी
0: अच्छा, देखिए हर इंसान सुख की खोज में है संसार में, है ना, सबको सुख की आकांक्षा है, लेकिन शाश्वत सुख जो है उसका अनुभव क्यों नहीं हो पाता है?
1: देखिए, शाश्वत सुख का अनुभव इसलिए नहीं हो पाता है कि चित्त जो है उसके लिए चित्त में एकाग्रता का भाव होना बहुत आवश्यक है, और शाश्वत सुख विषयों से विरत होने पर प्राप्त होता है। शाश्वत सुख जो है वो विषयों में प्राप्त नहीं होता। विषयों में हमेशा, आप कभी अनुभव को ही देखें तो किसी भी विषय के साथ आप शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। कुछ देर के बाद आपका उस विषय से राग मिट जाता है
0: जी,
1: ठीक है। तो ऐसे में शाश्वत सुख विवेक के द्वारा होता है, और विवेकवान लोगों ने ये कहा है कि प्राप्त विषयों से विरत हो जाना ये शाश्वत सुख है, जिसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में प्रत्याहार कहा है
0: जी,
1: कि इंद्रियां जैसे विषयों का आहार करती हैं, विषयों का आहार करके ही राग द्वेषात्मक भाव के साथ व्यवहार करती हैं, ऐसे ही जब विषयों से वो अंतर्मुखी होती हैं, प्रत्याहार, प्रतिप्रसव जिसको कहा उन्होंने, यानी प्रतिप्रसव का मतलब हुआ कि वो फिर जन्म नहीं ले रहा है चित्त, चित्त के अंदर चांचल्यता जन्म नहीं ले रही है। तो ऐसे में जब आप चित्त से विषयों का त्याग करते हैं, विषयों से विरत हो जाते हैं, तो आपको शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। वही परमानंद है, वही आनंदमय स्थिति है
0: जी,
1: आपकी
0: जी,
1: जहां जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आनंद और सुख के बीच के भेद में ये बात कही जाती है कि सुख शाश्वत नहीं होता,
0: आनंद शाश्वत होता है।
1: हम लोग कई बार पर्यायवाची में इसका प्रयोग कर लेते हैं
0: जी। अच्छा, मन का मूल स्वभाव क्या है ये जरूर हमारे सुनने वालों को आप बताएं।
1: देखिए, मन का मूल स्वभाव जो है ना, ये जो है चंचल इसकी वृत्ति है, कहीं ये स्थिर नहीं होता, चिंताओं को जन्म देता रहता है। इस तरह से जो मन का मूल स्वभाव है वो हमेशा विचलित होते रहना और विचलित करते रहना है। स्थिरता इसका मूल स्वभाव नहीं है। और ये जो हम लोग कहते हैं ना कि मन को शांत करो, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शांत रहना मन का स्वभाव नहीं है। जो अभी हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि मन से मनन करके अमनी दशा को प्राप्त हो जाओ, ये स्थिति है। तो जो अमनी दशा जो है वो मन की दशा नहीं है, वो मन से मनन करके मन से मुक्त हुआ जाता है, फिर मन वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। तो ऐसे में मन को शांत करने का जो उपाय है वो मनन है, चिंतन है, चिंता नहीं है। और चिंता हमेशा विषयों के साथ रत होने पर होता है, विषयों से विरत होने पर चिंता नहीं होता। विषयों से विरत होके चिंतन होता है, और विषयों से रत होकर चिंता होती
0: है।
1: जी, चिंता और चिंतन का ये फर्क है। और कहते भी हैं कि चिता और चिंता दोनों एक जैसी है,
0: एक जैसी
1: है ना। चिंता जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद जलाती है। तो ऐसे में चिंता यही है तीनों ताप जिसमें जीव जलता है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, जिसको हम लोग भागवत में कहते हैं ना, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो वो श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण के चित्त को देखिए, राम जी के चित्त को देखिए, कि राम जी ने जगत के चित्त को जब देखा तो कहा ये चित्त ही सारे दोषों का कारण है जी।
0: अच्छा, संसार का सबसे महान कठिन कार्य क्या है?
1: संसार का सबसे कठिन कार्य है मन को वश में करना, ये कह सकते हैं ना, ये सबसे कठिन कार्य है। वैराग्य प्रकरण में देखें आप तो बहुत तरह के ऐसे आपको दृष्टांत आएंगे जो बार बार मन के वशीभूत हो जाने के कारणों पर बात हो रही है
0: जी।
1: तो मन को वश में कैसे कर लिया जाए, ये कठिनतम कार्यों में से राम जी ने कहा ये एक है, जो मैंने जगत को देखा, गुरु जी से कह रहे हैं कठिनतम कार्यों से, क्योंकि सारा जगत जो है मन के वश में है, और मन के वशीभूत होकर वो मरकट नाचें नर मरकट की नाई, गोस्वामी जी कहते हैं बंदर की भांति कूद रहा है, उछल कूद, बंदर से तुलना की गई चित्त की, तो कूदता रहता है इस डाल से उस डाल। तो ऐसे ही मन को वश में करना सबसे कठिनतम कार्य है। इसको कबीर साहब भी कहते हैं कि जैसे तन का जोग तो सब कर लेते हैं, मन का जोग कोई विरला करता है। तो मन का जोग है मन को वश में करना।
0: जी। अच्छा, तीनों लोकों की जो सत्ता है उसका क्या कारण है?
1: तीनों लोकों की सत्ता का मूल कारण है चित्त। इसमें ये कहते हैं भगवान राम कि चंचल चित्त को वश में कर लेना इससे भी कठिन कार्य है। संपूर्ण पदार्थों का चिंतन करने वाला जो ये चित्त है, इस चित्त को अपने वश में करना, कहते हैं कि ये चित्त ही जो है ये तीनों लोकों की सत्ता को प्रकट करता है। और हम देखिए हम लोग कैसे हैं कि हम लोग तीनों लोकों की सत्ता को मान करके ही जगत में व्यवहार करते हैं, यानी पूरे जगत का व्यवहार जो हो रहा है वो चित्त के कारण हो रहा है
0: जी।
1: तो ये चित्त का दोष है कि अगर चित्त के दोष को आप समझ सकें तो ऐसे में जो मोक्ष की बात की जाती है वो तीनों लोकों से मुक्त होने की बात यही हो सकती है, बसरते चित्त की वास्तविक स्थिति या चित्त के सत्य को हम जान पाए और जान करके उसे अपने जीवन में अंगीकार कर सकें।
0: तो मैं चाहती हूँ कि चलते चलते हमारे सुनने वालों को आप अहंकार से मुक्ति की जो बात, अहंकार को त्यागने की जो बात थी, वो कैसे त्यागा जा सकता है, एक बार एक दोबारा आप बता दें। और चित्त दोष, मन को स्थिर करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, एक बार आप बता।
1: देखिए, चित्त बिना अहंकार, चूंकि चित्त का आधार जो है वो अहंकार है, अहंकार का मतलब होता है कि जहां आपने कोई आकार, कोई उपाधि ग्रहण कर ली है, कोई चुनाव आपने कर लिया है और उस विशेषता के साथ आपने अपने को परिच्छिन्न कर लिया है, अलग कर लिया है। तो जैसे ही आपके अंदर खंडित होने की बात आती है, ये जगत एक अखंड भाव में है, आप देखें तो जैसे वसुधैव कुटुंबकम जब ऋषि ने कहा तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी वसुधा को आपके अस्तित्व का उसने कारण माना कि आप अगर हैं तो वसुधा अगर विभिन्न जीवों के साथ जो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है उस जैव विविधता की वजह से आपका होना है। तो चित्त में आप जब इस बात को ठीक से उतार लेते हैं या कह सकते हैं ये निर्द्वंद रूप से ये बात आपके चित्त में समा जाती है तो आप चित्त के दोषों से प्रभावित नहीं होते। चित्त का दोष भी कहना उसे मतलब कहें आप, लेकिन चित्त के दोषों से प्रभावित न होने का उपाय है चित्त के दोषों को जान लेना। जैसे किसी चीज को आप जान करके उससे अपने आप को बचा सकते हैं। और रही बात आपने कहा अहंकार की, तो कहते हैं अहंकार का जो मूल कारण उन्होंने बताया कि मैंने वो नाम, जिस नाम की उपाधि ले रखी है हमने, उस उपाधि का त्याग किया। और अब देखें तो हम कहते हैं जीव ने उपाधियों के नाते ही अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध से अपने को वंचित कर लिया, क्योंकि वो है तो ब्रह्म ही, लेकिन जो नाम रूपात्मक उपाधियां हैं उन उपाधियों ने उसे आवरण से ढक दिया, जैसे बादल ने सूर्य को ढक दिया
0: जी।
1: तो ऐसे में वो उपाधियां छोड़ दें। दूसरी बात, विषयों में जो रुचि है उस रुचि का त्याग करें, क्योंकि विषयों की रुचि कभी विषयों से पुष्ट नहीं होती
0: जी।
1: क्योंकि रुचि समाप्त होती तो आज तक बहुत सारे विषयों का हमने सेवन किया लेकिन रुचियां तो कभी खत्म नहीं हुई, लगातार वो बढ़ रही है, नए नए विषयों की तरफ भाग रही है तो और प्रज्वलित हो रहा है वो। तो वो कहते हैं एक तो ये है, और दूसरा सबका जो मूल कारण मन है, उस मन को भी मैंने त्याग दिया कि ये मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं, ये भी अहंकार के विसर्जन का एक मूल कारण है
0: जी।
1: इसको फिर उन्होंने कहा कि अब योग में आ जाइए तो योग में कहते हैं ये अविद्या है, मैं मन हूं या मैं अमुक नाम रूप वाला हूं या अमुक अमुक मेरी रुचि और अरुचि का विषय है, ये सब जो है अविद्या के कारण जन्म लेता है
0: जी।
1: तो अहंकार की जननी अविद्या, और अविद्या से ये जो चित्त की चंचलता, विषय में आकर्षण, विषय में द्वेष, राग द्वेषात्मक जो वृत्ति है, इन वृत्तियों का जन्म होता है। तो ऐसे में इनका त्याग करके हम अपने जीवन को शांत कर सकते हैं और संतुष्ट रह सकते हैं।
0: तो बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की है। आज हमने योग संवाद कार्यक्रम में अहंकार और चित्त के दोष पर बातचीत की। आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में अहंकार और चित्त के दोष पर ये बातचीत उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें मुझे। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार, नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बातें होती हैं कहने के लिए कि शायद एक सत्र के या पूरे एक वर्ष में भी कहते रहें तो वे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, और साथ में मुझे एक और आदेश भी दे दिया गया था कि अपनी कविता भी सुनानी है, तो 10-12 मिनट में अपनी बात कह करके 3 मिनट में अपनी कविता सुना करके कोशिश करूँगा कि जो कहना चाहता हूँ उसके कुछ सूत्र आपके समक्ष रख सकूँ। जब हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बात, चूँकि बहुत सारे युवा भी आए हैं, तो एक बात ठीक से समझनी होगी कि हम भारत में संस्कृति की इतनी बात क्यों करते हैं। भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है। संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधाराएं वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, या भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास मंडी द्वीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे, और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वही वैसी तरह से रात गुजारते थे, और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का, उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यहाँ नहीं। अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए ये सिद्ध भी हो गया कि ये 5000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5000 साल पुराने हैं या 4000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने, और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर का घर्षण हुआ कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई और जहाँ धरती ऊपर उठ गई वहाँ आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के समय मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूँगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है, कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं। भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है, संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है, कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल, इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वह इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तब मुझे पता चला कि एक कल्चरी राजवंश था। इस कल्चरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था, लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चरी राजवंश की जो राजधानी थी, जिसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियाँ बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अलहण देवी। वो लगभग कल्चरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि राज्य बच जाए। और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के, उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी जो, इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय। ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कोल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में, और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कोल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए, एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर अब वर्तमान में, तो राज्य नहीं बचा, जब आक्रमण अधिक होने लगे तो वहाँ लाखों करोड़ों प्रतिमाएं थी, सबने सोचा कि ये आएंगे और आक्रांता आएंगे और इन प्रतिमाओं को तोड़ेंगे, तो हर खेत में गड्ढे खोदे गए और उन लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को उन गड्ढों में दबा दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ, तो मैंने तेवर में जाकर के जो पहला दृश्य देखा, वहाँ कोई भी आदमी, ये मैं आपको कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2006 में मैं उपन्यास लिख रहा था, और जब मैं तेवर में गया, जो मैंने पहला दृश्य देखा, वहाँ हर खेत में से मूर्तियाँ निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं, अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है। हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते। नर्मदा आपसे कहती है, इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है, वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रहा हूँ। तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मैंने मुझे आदेश दिया गया था इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एक कारण और शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं सामवर तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एकार्णव हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे, हाथ वही दिन रात चलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल, तृषा तृषित है शेष देन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल, तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग्दिगंत है, दिग्दिगंत दिग्दिगंत दिग्दिगंत दिग दिग दिगंत है काल प्रलय घन घोर गहन दिग दिगंत तक घोर गहन लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रिषा त्रिषित है शेष देन दग दग दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गट गट गट गट गट गट अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो एकारणो तो एकारणो के निवृत्त मेरे में निष्ठ चेतना चल स्थिर में गंज लीन रस्ते लीन है परसनाथ थिर चेर स्थिर में जल जल जल जल जल जल जल जल जल जल अनंत उलझ पर जल जल जल जल अनंत जल जल अनंत काल प्रलय घन घोर गहन है दिग दिगंत तक घोर गहन लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रिषा त्रिषित है शेष देन दग दग दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गट गट गट गट गट गट अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो रहो न तब भी रहो न तब भी रहो न तब भी रहो नर्मदा प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा शुभम वरेण्य सदा सर्वदा नर्मदाति पुण्य नर्मदा हरिनिनाद शम शम निनाद शंभू निनाद जलधार सर्वदा शिव स्थापन हृदय हृदय हर हर हर हर हर मात नर्मदा। कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो नर्मदा काल नहीं बाधा प्रवाह में मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे बहु निरंतर बहु नर्मदा बहु निरंतर बहु नर्मदा नर्मदा नर्मदा नर्मदा। बहुत
2: शुक्रिया। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य। विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां 24 मई को 3 दिवसीय संतवाणी समारोह का समापन हुआ।

0: इस मौके पर दो प्रस्तुतियां हुई। पहले भक्ति पदों का गायन हुआ अनुषा शर्मा का।
1: तो हम आग्रह करते हैं अनुषा जी से अपने भक्ति पद गायन का आरंभ करें।
2: नमस्कार, आज की प्रस्तुति में संत कबीर तुलसीदास जी एवं संत एकनाथ सूरदास जी ऐसे सभी संतों की एक एक प्रस्तुति मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजन श्रोतागण सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी की आज्ञा से मैं अपना गायन शुरुआत करता हूँ।

0: और यह है भक्ति गायन आरती अंगलीकर टीकेकर का।
1: ये जो पुराने लोगों ने ये जो कंपोज भी किए हैं भजन अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल से, तो ये एक राजस्थानी स्टाइल में जो है, 2 मिनट के लिए सुनाती हूँ फिर अवधारणा।

0: संहिता को उन्हीं की रचनाएं जो ऐसी कंधे से निकलती हैं तो दर्शकों का सुनने वालों का मन मीरा सा हो ही जाता है। ऐसा लगता है कि ये स्वर ये संगीत कानों तक ही नहीं बल्कि अंतरात्मा तक उतर जाता है। सभी संगीतकारों का बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार।
1: ये थी रेडियो रिपोर्ट संतवाणी समारोह के समापन दिवस की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

0: आजाद हिंद के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मेरा नाम है इतिहास और मैं उन व्यक्तित्वों को कभी भुलाई नहीं भूल पाता जिन्होंने गुलामी के दौर में यह विश्वास हमेशा बनाए रखा कि हम हमेशा गुलाम नहीं रहेंगे और जो सोचा वो कर भी दिखाया।
1: ये तारीख भी सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। मैंने हमेशा उन यादों को तारीख के साथ इतिहास के पन्नों में उतारा है जो ये समझकर शहीद हुए थे कि ईश्वर ने हमें केवल देश को आजाद करने की ही जिम्मेदारी दी है।
0: तारीख, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी युग की प्रथम शहीद महिला की, जो मुक्ति संग्राम में आत्मविसर्जन के लिए हमेशा भयानक विष पोटेशियम साइनाइड लेकर के साथ चलती थी।
1: जी हाँ इतिहास, हम बात कर रहे हैं प्रीति लता वादेदार की।
0: आजादी की लड़ाई के इतिहास में प्रथम शहीद महिला के रूप में गोलपांडा चटगांव की बेटी प्रीति लता वादेदार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। 5 मई सन 1911 को गोलपांडा चटगांव में जन्मी प्रीति लता के पिता जगबंधु वातेदार चटगांव म्युनिसिपैलिटी में हेड क्लर्क थे। 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। प्रीति लता की माता प्रतिभा भी देशभक्त और शिक्षा प्रेमी थी। बचपन से ही प्रीति लता में देश प्रेम की भावना बलवती हो उठी। उनके पिता कहते थे, मेरी यह बिटिया एक दिन चटगांव की सरोजनी नायडू बनेगी, और उन्होंने कर भी दिखाया।
1: किंतु जलियांवाला बाग की कहानी सुनकर प्रीति लता के मन में भी बंगाल के अन्य युवाओं की तरह ये भावना घर कर गई थी कि सशस्त्र संग्राम ही स्वाधीनता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए जब 1928 में प्रीति लता ने प्रवेशिका परीक्षा पास कर ढाका के ईडन कॉलेज में प्रवेश लिया तो बंगाल के क्रांतिकारी दल श्री संघ की नेत्री लीला राय के दल में शामिल हो गई बिना किसी भय के और कहा,

0: प्रीति लता के साथ उसकी प्रिय सहेली कल्पना दत्त भी कलकत्ता से चटगांव आकर के महिला सम्मेलन में शामिल हो गई। उन दिनों चटगांव क्रांतिकारी दल का संचालन महानायक मास्टर दा यानी सूर्य सेन कर रहे थे। प्रीति लता और उसकी सहेली की दिली इच्छा उनके दल में शामिल होने की थी, पर उस समय क्रांतिकारियों के दल में महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता था, अतः उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाए। इसी बीच प्रीति लता ने ढाका विश्वविद्यालय से आईए पास करके कलकत्ता के बैथुन कॉलेज में बीए में प्रवेश ले लिया।
1: ठीक उसी समय 18 अप्रैल 1930 की रात इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने जिले के सभी शस्त्रागारों पर कब्जा कर मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में भारत की प्रथम गणतांत्रिक सरकार की घोषणा कर दी और सभी नर नारियों छात्र छात्राओं का देश की आजादी के लिए काम करने का आह्वान किया।

0: इसके बाद की घटनाओं ने युवक युवतियों को गहरे से प्रभावित किया। इस समय प्रीति लता और कल्पना दत्त का प्रभावित होना भी स्वाभाविक ही था। जलालाबाद का पहाड़ युद्ध, अमरेंद्र के आत्म उत्सर्ग, कालारपुर के खंड युद्ध, चंदन नगर की लड़ाई, ढाका में लोमेन की हत्या, चांदपुर में तारणी मुखर्जी हत्याकांड आदि घटनाओं ने उनके मन में भी क्रांतिकारियों के गोरिल्ला युद्ध का हिस्सा बनने की ललक तीव्र हो उठी।
1: उस समय चटगांव के क्रांतिकारी दलों के स्थानीय छात्र नेता मनोरंजन राय कलकत्ता में थे। उन्हें कलकत्ता से काफी मात्रा में एसिड चटगांव पहुंचाने का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए उन्हें लड़कियों की जरूरत थी, क्योंकि खुफिया पुलिस पुरुषों पर नजर रखती थी, लड़कियों पर नहीं। प्रीति लता और कल्पना दत्त ने इस अवसर को भुना लिया और उनके दल में शामिल हो गईं। अब उन्हें मातृभूमि के लिए काम करने का रास्ता मिल गया था।
0: इसी दौरान प्रीति लता की भेंट क्रांतिकारियों की मददगार गुनुबुआ से हुई, जिनकी सहायता से उसकी भेंट चटगांव में क्रांतिकारी और मृत्यु दंड से दंडित रामकृष्ण विश्वास से जेल में हुई। रामकृष्ण विश्वास को 4 अगस्त 1931 को अलीपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले 40 बार प्रीति लता और उनकी मुलाकात हुई थी। विश्वास ने प्रीति लता की क्षमता पहचान कर उससे कहा था, जितनी जल्दी हो सके मृत्यु शपथ लेकर के किसी काम में लग जाओ। और प्रीति लता ने प्रतिउत्तर में कहा था, मैं आज ही आपकी शपथ लेकर कहती हूँ, मैं काम करते करते अपने कार्य क्षेत्र में ही अपने आप को उत्सर्ग कर दूंगी। क्या हुआ अगर मर गए।

0: सन 1931 में ही प्रीतिलता और कल्पना दत्त को मास्टर दा, निर्मल दा, तारकेश्वर दस्तीदार, शैलेश्वर चक्रवर्ती और काली किंकर के दल में शामिल कर लिया गया। इसी वर्ष बीए पास करने के बाद 1932 में प्रीतिलता चटगांव के नंदन कानन उच्च बालिका विद्यालय में प्रधान अध्यापिका हो गई। साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। शीघ्र ही उसे सशस्त्र संग्राम का अनुभव भी मिल गया, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया। साथ ही भारी गोलाबारी के दौरान प्रीतिलता के साथी निर्मलदा और अपूर्व सेन शहीद हो गए।
1: सन 1932 की जुलाई में उन्हें यह खबर मिली कि चटगांव के सभी उच्च अधिकारी यूरोपियन क्लब में इकट्ठे होकर के मदिरा पी रहे हैं और नशे में नाच रहे हैं। बस फिर क्या था, योजना बनाई गई कि सभी को वहीं ढेर कर दिया जाए। क्रांतिकारी शैलेश्वर चक्रवर्ती के नेतृत्व में 10 अगस्त 1932 को आक्रमण की योजना बनी, पर वह सफल नहीं हो पाई। शैलेश्वर ने असफल होने पर विष खाकर के आत्मसर्ग कर लिया।
0: आखिर इस योजना को सफल बनाने का दायित्व प्रीतिलता के नेतृत्व में महिला प्रभाग को सौंपा गया। 24 सितंबर 1932 को आक्रमण का दिन निश्चित हुआ। प्रीतिलता के नेतृत्व में आक्रमण सफल हुआ। सारा इलाका घायलों की चीख पुकार से दहल उठा। गोलाबारी में प्रीतिलता भी घायल हुई थी, किंतु उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए अपने सभी साथियों को निश्चित स्थान पर मिलने का कह जाने का आदेश दे दिया। घायल प्रीतिलता के साथ केवल कालीदा थे। 500 गज चलने के बाद प्रीतिलता की हिम्मत जवाब दे गई।
1: तब उन्होंने कालीदा से कहा कि इससे पहले कि अंग्रेज सिपाही आ पहुंचे, आप अपना साइनाइड मेरे मुंह में डाल दीजिए, और वे बेहोश होकर के गिर पड़ी। कालीदा ने प्रीतिलता की आज्ञा के अनुसार साइनाइड उसके मुंह में डाल दिया और प्रीतिलता ने शपथ के अनुसार आत्म आहुति दे दी, जैसे कह रही हो, विदा करो माँ, अब तो हम जाते हैं।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति की ही उपज है और सभ्यता के विकास के साथ ही हमने अपने हर प्रश्नों हर समस्या का समाधान भी इसी प्रकृति से ही तो प्राप्त किया है। विशेष रूप से यदि भारतीय ज्ञान और परंपराओं की बात की जाए तो सदियों से हमारी यही विचारधारा रही है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव, उनके निर्माण में प्रकृति के 5 तत्वों जिन्हें की पंच महाभूत जाता है, इन्हीं का हाथ है। तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी इन्हीं तत्वों से संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज बनी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। और इन्हीं 5 तत्वों पर टिका है हमारा स्वास्थ्य भी।

0: चिकित्सा सेवा सम्मान से विभूषित किया गया है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: आज हम इस कार्यक्रम में आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की परंपरा रही है, उसमें हमारे स्वास्थ्य के संबंध में क्या प्रावधान है और इसमें प्रकृति की क्या भूमिका है।
1: आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है
0: जी।
1: हम जितने भी भारतीय लोग हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, यह सारा का सारा ज्ञान प्रकृति से ही अर्जित किया हुआ है। हमारी सारी परंपराओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। हमारे यहाँ एक सेंटेंस कहा जाता है, जैसा जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा वैसा इस पिंड में है। तो जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज हो रही है, वही चीजें रिफ्लेक्ट हमारे शरीर में, हमारे किसी भी पिंड में भी वही चीज हो रही है। मतलब हमने उनको एकाग्र किया है कि प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ हमारा कैसा एकाकार है। आपने मूल तत्व इसमें बता ही दिए हैं, जो हमारे पंच महाभूत होते हैं
0: जी।
1: जो पंच महाभूत में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है
0: जी।
1: यही हमारे तत्वों के, हमारे शरीर के, हमारे सृष्टि का मूल आधार है
0: जी।
1: इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। हम लोक भाषा में भी बोलते हैं ना, सामान्य रूप से ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा
0: जी।
1: ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जब हम दिनचर्या में, लोक भाषा में आराम से बोलते हैं। और यही इसका सार है कि जो पंच महाभूत है उसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पंच महाभूत में ही हमारी सब्जियां भी उग रही है
0: जी।
1: हमारे पेड़ पौधे भी है, इसी जल का उपयोग भी हमारे शरीर में हो रहा है। हमारे शरीर का जो रिक्त स्थान है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी श्वास प्रश्वास को हम प्राण बोलते हैं
0: जी, प्राणवायु,
1: प्राणवायु
0: जी।
1: यह प्राण को ही हम वायु के रूप में हम देख रहे हैं। आकाश महाभूत से जो हमारा अंदर अंग है, जो खाली स्थान है
0: जी,
1: जो आमाशय है, पक्वाशय है, ऐसे जो स्टमक वगैरह है, इनमें जो होलो स्पेस है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है।
0: अच्छा।
1: जो वायु हम सांस ले रहे हैं यह हमारे प्राण को, वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे शरीर में जितना रक्त है, लसीका है, जो भी चीजें जो द्रव रूप में, तरल रूप में बह रहा है, वो हमारे सारे जल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
0: अच्छा।
1: और हमारी मांस है, हड्डियां हैं, यह हमारे सर्वे जो है वो सब का सब पृथ्वी महाभूत को ये कर रहा है। और साथ में रह गई बात अग्नि की, तो अग्नि जो हमारी पाचन अग्नि है, हम बोलते ही है कि हमारे शरीर में जठरा अग्नि होती है, हमारा खाना जो पचता है वह अग्नि के माध्यम से ही पचता है।
0: जी।
1: हमारी जितनी मेटाबॉलिज्म होती है वो 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में बता के रखी हैं।
0: 13 प्रकार की अग्नियां,
1: 13 प्रकार की अग्नियां। तो जठरा अग्नि के साथ में हमारे सारे धातुओं का पोषण करने वाली, हम आज के समय में जो मेटाबॉलिज्म वगैरह बोलते हैं, यह सारा का सारा अग्नि के स्वरूप में हमारे ज्ञान परंपरा में उसको वर्णित किया है।
0: अच्छा।
1: और उत्तर उत्तर एक के बाद एक धातु पूरी तरह से जब सम्यक रूप से समान अवस्था में बनी रहेगी तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। मतलब हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से बताया है कि ये जो पंच महाभूत है
0: जी।
1: या हम आयुर्वेद के हिसाब से जो दोष सप्त धातु वगैरह सभी लगते हैं, इनकी सबकी साम्य अवस्था, ये सब एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो ही हम स्वस्थ कहलाएंगे।
0: अच्छा।
1: ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज बढ़ी है कम हो, वो चीज जो होती है इसके सम्यक रूप से, हमारे इसमें कहा भी गया है कि जब हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, जब हमारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हो
0: जी,
1: है ना, हमारी मानसिक स्थिति सम्यक हो और हमारी आध्यात्मिक भी, हम भारतीय
0: अच्छा।
1: परंपरा में आध्यात्म को भी मानते हैं, तो इनका जब सम्यक रूप से समान अवस्था जब रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ की परिभाषा ही ऐसी दे के रखी है।
0: अच्छा।
1: स्वस्थ रहने के लिए सबका बैलेंस कॉम्बिनेशन होना
0: बेहद
1: जरूरी है, बेहतर है
0: जी।
1: और एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय हम पे 6 चीज की काम करती हैं, 6 तत्व काम करते हैं
0: जी।
1: जिसमें हमारे माता के भाव होते हैं, पिता के भाव होते हैं, उसी के साथ में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव होता है
0: जी।
1: जो मन का जो हमारा प्रभाव, जब ऐसी हमारी मानसिक स्थिति होती है
0: जी जी,
1: उसका भी प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ में जो जीवात्मा है वह अपने कुछ गुणधर्म लेके आती है, तब जाके एक जीव का
0: निर्माण होता है,
1: निर्माण होता है और उसमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनता है और इसके कारण वह अस्तित्व में रहता है। यह सारा का सारा कॉम्बिनेशन, यह सारा कार्य जो है वो पंच महाभूत से बने हुए शरीर पर ही हो रहा है।
0: अच्छा। तो सर, यहाँ पर एक प्रश्न मन में ये उठता है कि ये जो 5 तत्व हैं वो क्या हर मनुष्य में समान अनुपात में होते हैं या इनके अनुपात भी मनुष्य मनुष्य में अलग अलग होते हैं?
1: बिल्कुल सहज रूप से इसमें हर मनुष्य में इसके अनुपात में थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए हमको मनुष्यों में विभिन्नता मिलती है।
0: हाँ, अच्छा, मतलब रंग रूप जो है या हमारा स्वभाव है,
1: स्वभाव है, रंग रूप है, उनकी आदतें हैं, उनका आकार प्रकार है ना, उनके बाल, उनके अंगों का सब स्वरूप जो है, यह सारा का सारा उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे ही रहता है।
0: अच्छा।
1: और वो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन रहेगा तब वो अस्तित्व में आएगा।
0: जी, तो ये तो बात हो गई पंच महाभूतों की, जिनकी हमारे शरीर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, हम बने ही इन्हीं पंच तत्वों से हैं। एक और टर्म आती है आयुर्वेद में त्रिदोष की, वात, पित्त और कफ। तो ये जो त्रिदोष हैं, पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि इन्हें त्रिदोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोष से हम आम इंसान तो दोष यानी कुछ एक कमी समझते हैं। और फिर उसके बाद एक बात ये आती है कि क्या इन त्रिदोषों का भी इन पंच तत्वों से कुछ संबंध है?
1: निश्चित रूप से
0: जी,
1: जो मूल तत्व है वो तो पंचमहाभूत ही है।
0: जी जी,
1: इसको जब हम शरीर रचना के रूप में देखते हैं तो हमारे त्रिदोष होते हैं, सप्त धातु होते हैं और तीन मल,
0: जी
1: ऐसे करके हमारे शरीर में मुख्य घटक आते हैं, समझ में आते हैं। ये जो तीन दोषों की बातें की गई है
0: जी,
1: ये बहुत स्पष्ट रूप से ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इसको धातु भी कहते हैं।
0: अच्छा,
1: है ना
0: जी।
1: लेकिन जब इनका प्रमाण कुछ कम ज्यादा होता है या बढ़ जाए या घट जाए तो ये उन स्त्रोतों को, शरीर के सिस्टम को, धातुओं को जब वो उसमें दोष उत्पन्न करते हैं इसके कारण इनको दोष कहा गया है।
0: अच्छा,
1: इन दोषों के लिए जो हम गलती करते हैं सामान्य रूप से एक डायरेक्शन की, यार कफ बढ़ रहा है तो कफ को सुखा दो, है ना
0: जी।
1: पर गले के लिए कफ जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर कफ का ही स्थान है
0: जी।
1: तो जहाँ कफ की आवश्यकता है उसकी है, तो उसको हमको सुखाना नहीं है, इसलिए मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया कि आपको सम्यक अवस्था रखना है, उसको एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में ही रखना है। तो कफ के प्रमाण को सम्यक करना, उसको बैलेंस करना,
0: यानी हमें जितना जरूरी है उतना होना
1: उसके होना चाहिए
0: जी, ना कम ना ज्यादा,
1: ना कम ना ज्यादा, और उस व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए।
0: अच्छा, यानी हमारा स्वभाव और हमारे शरीर की जो गुणधर्म है उस पर भी ये चीज निर्भर करती है।
1: निर्भर करेगी
0: जी,
1: ये स्वाभाविक है हमारे प्रकृति में। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों की शरीर कदकाठी अलग होती
0: जी,
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: हमारे जो साधारण देश होता है वहाँ की कदकाठी अलग होती है, और जो गर्म देश रहते हैं वहाँ के लोग, तो उनके खान पान में भी उसके कारण अंतर आ रहा है, उस जगह के हिसाब से तुलना, उसको बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ये जो विभिन्नताएं आपको दिख रही है, ये विभिन्नताओं का प्रैक्टिकली हमको अप्रोच रखना चाहिए, इसलिए हमको हमारी बुद्धि लचीली रखनी चाहिए।
0: अच्छा, बिल्कुल सही बात है।
1: हम जब रिजिड होते हैं तो हम फिर गलती करते हैं कि यहाँ ऐसा ही है, तो हमको वो सारी गणनाओं के साथ में अपने आप को अपनी गणना करनी चाहिए।
0: तो सर, अब प्रश्न यही आता है कि यदि ये त्रिदोष हैं और हमारे शरीर में इन तीनों की उपस्थिति है, अब इन तीनों का बैलेंस कैसे बना रहे?
1: एक विषय को बता देता हूँ कि हमारा जो वात दोष है, वात, पित्त और कफ, ये तीन तत्व है। वात मतलब वायु, पर ये जो वायु बोल रहे हैं इसमें वायु तत्व और आकाश तत्व इनका सम्मिलित रूप है।
0: अच्छा, यानी पंच महाभूतों में से,
1: पंच महाभूत में से
0: आकाश जो और जो वायु है वो वात को बनाते हैं,
1: वात को बनाते हैं
0: जी, ठीक है।
1: इसमें जो पित्त होता है वह अग्नि और जल इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और जहाँ पे पृथ्वी महाभूत है वहाँ पे जल और पृथ्वी,
0: अच्छा,
1: जो हमारा कफ है
0: जी,
1: कफ दोष है। तो कफ कैसा होता है? थिक होता है, चिकट होता है
0: जी।
1: हमारा शरीर ही सबसे पहले मिट्टी से बना है ना, तो मिट्टी, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत मिलने के बाद जो कफ होगा
0: जी,
1: उससे ये पिंड बनेगा। एक सरल सा उदाहरण देता हूँ, मिट्टी का घड़ा बनता है तो सबसे पहले मिट्टी और जल को मिला के
0: पेस्ट सा बनेगा,
1: हाँ, उसको एक गुथेंगे तो एक ठोस आधार बनेगा
0: जी।
1: फिर हम उसके ऊपर उसको चके के ऊपर रखेंगे, फिर उसका गतिमान करेंगे, तो वायु से उसके आकार का निर्माण होगा। उसको हम धीरे धीरे गति देने के बाद उसको आकार देंगे, आकार देने के बाद उसकी खाली जगह, भरी जगह जो आकार होगा
0: जी,
1: उसके बाद में हम उसका पचन करेंगे, उसको अग्नि में, उसको
0: पकाएंगे,
1: इस अस्तित्व में रहने के लिए जो उसका पाचन होगा, उसकी क्रियाएं रहेंगी, तब जाके एक मटका अस्तित्व में। ऐसी प्रकार से हमारे शरीर में भी वात, पित्त, कफ का, कि वात के कारण हमारे जो सारे प्राण, श्वास, मैंने बोला था अंगों का निर्माण होगा, और पिंड जब तक रहेगा, पिंड को आकार देने का कार्य वात करेगा,
0: वात,
1: और उसके मेटाबॉलिज्म, उसके पोषण का, उसमें हर समय जो चलने वाली जो क्रियाएं हैं उसको पाचन करके निर्मित करने के लिए हम पित्त का कार्य करेंगे।
0: तो यानी वात, पित्त और कफ,
1: ये
0: पंच तत्वों की देन है,
1: देन है,
0: और इन्हीं का बैलेंस जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बना के रखता है,
1: स्वास्थ्य बना के रखता है। इसमें हमारे अंगों में भी जो विभाजन किया हुआ है
0: जी,
1: जो गले के ऊपर आपका जो छाती वाला कफ जैसा है, और कंठ और सिर, ये हमारे कफ को रिप्रेजेंट करता है।
0: अच्छा,
1: ये कफ का है
0: जी।
1: जो आपके नाभि के आसपास का एरिया मध्य शरीर है हमारा, यह पित्त को रिप्रेजेंट करता है, और कमर से नीचे का हिस्सा वात को रिप्रेजेंट करता है।
0: जी।
1: ऐसे ही हमारा दिन की साइकिल है, ब्रह्म मुहूर्त हमारा जो दिन निकलने के पहले का जो समय है वो वात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन निकलते समय हमारा कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोपहर का समय हमारा फिर पित्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमारा शाम होने वाला समय फिर वात को रिप्रेजेंट कर रहा है।
0: अच्छा।
1: फिर शाम के बाद रात का समय जो है वो कफ को, और मध्य रात्रि जो है वो पित्त को। ऐसा हमारा डिवाइडेशन वात पित्त कफ के हिसाब से किया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हमने जो पैरामीटर बनाया, पंच महाभूत मूल आधार है, लेकिन वात पित्त कफ के हिसाब से हमने उसका व्यक्ति के शरीर में भी डिवाइडेशन किया हुआ है, दिनचर्या दिन में भी उसका डिवाइडेशन किया है, और वर्ष में भी डिवाइडेशन किया हुआ है।
0: अच्छा, वर्ष में किस तरह से सर?
1: वर्ष में हमारे 12 पूरे महीने होते हैं, उसमें 6-6 महीने का साइकिल, उसको दो हिस्सों में बांटा है, आदान काल विसर्ग काल।
0: अच्छा।
1: सरल भाषा में हम समझे तो हम पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति आती है
0: जी,
1: मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं
0: जी,
1: यहाँ से हमारा शरीर घटना शुरू होता है।
0: अच्छा।
1: और जुलाई के माह में कर्क संक्रांति आती है
0: जी,
1: जब भगवान दक्षिणायन होते हैं, तब हमारा शरीर वहाँ से बनना शुरू होता है।
0: अच्छा।
1: तो ये 6 महीने हमारा शरीर घटता है, 6 महीने हमारा शरीर।
0: तो सर, जो आप ये बोल रहे हैं शरीर का घटना या शरीर का बढ़ना, इससे क्या अभिप्राय है?
1: शरीर का घटना या बढ़ना से अभिप्राय यह है कि हमारी जितनी भी वाइटल एनर्जीज हैं, हमारी अग्नि है ना, वही पचन का कार्य कर रही है ना
0: जी,
1: तो वो धीरे धीरे कम होते जाती है। जैसे हम मकर संक्रांति के बाद जब हमारा शरीर पूरी तरह से बलवान होता है, तो जो फाल्गुन महीना आता है, जो होली का समय है
0: जी,
1: उस वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ का सबसे ज्यादा आधिक्य होता है,
0: तो
1: हमारा कफ प्रकोप का समय बता के रखा है।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में हमारा कफ, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कफ धीरे धीरे शमन होने लगता है
0: जी।
1: उसके बाद में हम जो वात का समय है वो वर्षा ऋतु है।
0: अच्छा।
1: उस समय हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है और हमारा शरीर कम हो रहा है, हमारी अग्नि सबसे कम है, हम अपने शरीर में सबसे कम इम्यूनिटी वाले टाइम में जो है वो वर्षा ऋतु
0: में,
1: इसलिए आपने देखा होगा हमारी अग्नि भी कमजोर है उस समय, इसलिए हमारे मैक्सिमम उपास वो उस कालखंड में आते हैं।
0: संक्रमण का काल भी वही है,
1: संक्रमण का काल भी वही है, तो मूवमेंट भी कम होना चाहिए, और इम्यूनिटी वाइज हमने ऐसे पैरामीटर्स बनाए कि आप उससे सुरक्षित रह सके। तो हम कम खाना खाते हैं, सुपाच्य खाना खाते हैं और हल्का खाना खाते हैं। वैसे ही जैसे शरद ऋतु आती है, तो नवंबर दिसंबर के महीने में जब शरद ऋतु, तो शरद पूर्णिमा हमारा एक ऐसा माइलस्टोन है जब हम दूध को औटा औटा के गाढ़ा करके पीते हैं। मतलब कर्क संक्रांति के बाद धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ना शुरू होती है, तो पहला माइलस्टोन हमको मिलता है शरद पूर्णिमा का।
0: अच्छा
1: जी। कि हमारी अग्नि अब बढ़ गई
0: है,
1: अब आप गरिष्ठ भोजन भी आप कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से फिर हम वहां से भारी अन्न लेते हैं और हमारा शरीर, हम हेल्दी सीजन बोलते हैं ना, इस समय जो भी खाइए वो पच जाएगा।
0: हाँ।
1: आपके शरीर को लगेगा
0: जी। ठंड की ऋतु में ही जैसे बहुत फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, घी खाइए,
1: आपका खाना पूरा सारे षड्रसात्मक होके, उसको पूरा बलिष्ठ होके, उसमें सारे न्यूट्रिशन हो, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी।
0: अच्छा, जी,
1: सामान्य ऋतु के हिसाब से, और इस समय हमारे शरीर का निर्माण होगा। तो शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का काल है, ऐसा हमारा डिवाइडेशन हो गया। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप है, वर्षा ऋतु में आपका वात का प्रकोप है, और जो शरद ऋतु है उसमें पित्त का प्रकोप
0: जी। यानी सर, यदि हम दिन देखें तो उसके अलग अलग कालखंड में वात, पित्त और कफ का प्रभाव अलग अलग है। महीने देखेंगे या वर्ष देखेंगे या ऋतुएं देखेंगे, तो उसमें भी हमको वात, पित्त और कफ का अलग अलग प्रभाव है। और शायद यही हमारे खान पान में भी हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हम किस मौसम में किस तरह की चीजें लें, या फिर दिन में और रात में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए।
1: निश्चित रूप से अभी वर्तमान में आपके पास में ऐसे लोगों की बढ़ोतरी होगी कि सर देखिए मैं इतना संभल के रहता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो भी बीमार हूँ।
0: जी
1: तो मैं उनसे वही आग्रह करता हूँ कि जब मौसम बदला तो अपने अपने कपड़े बदले, तो मौसम बदला तो अपने अपना आहार क्यों नहीं बदला,
0: जैसे सर्दी
1: मतलब
0: में हम स्वेटर यूज कर रहे
1: यूज
0: हैं
1: कर रहे हैं
0: या गर्मियों में पतले
1: गर्मियों
0: कपड़े यूज कर रहे हैं, सेम ऐसे ही हमें हमारा आहार भी
1: में आहार
0: मौसम के
1: भी
0: अनुसार
1: करना चाहिए।
0: बदलना चाहिए।
1: हाँ, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको ये परिवर्तन करना ही चाहिए। हमारी दिनचर्या में, हमारी ऋतुचर्या में, हमारे शास्त्र में बता के रखा है
0: जी
1: कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। प्रकृति
0: जी
1: हमारे हाथ में नहीं है, उसको वो अपने गति से चल रही
0: चल
1: है,
0: रही है जी।
1: उसमें ऋतुएं बदल रही है, उसके स्वरूप है, उसके मापदंड सामने आ रहे हैं। हमको हमारे शरीर को उसके अनुसार
0: ढालना
1: बदलना है।
0: होगा जी।
1: देश काल में हमको कुछ कुछ अंतर मिलते हैं, इसलिए कई बार हमको पता चलता है कि इस सीजन में ये लोगों का एडॉप्ट काम करने के तरीके में और वहाँ के काम करने के तरीके में अंतर है, क्योंकि वो देश का प्रभाव है। तो इसीलिए मैंने बोला कि लचीली बुद्धि के साथ अगर आप एकदम से रिजिड हो जाएंगे तो
0: जी
1: फिर कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ऋतु और उसके हिसाब से तालमेल बिठाना।
0: अब सर ये तो बिल्कुल ऊपरी बातें हो गई आयुर्वेद से संबंधित।
1: बिल्कुल
0: तो आप जो दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे, हम उसी पर आते हैं कि हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए।
1: दिनचर्या भी जो हमारी दोषों के हिसाब से ही होनी चाहिए,
0: अच्छा, वात पित्त और कफ के
1: वात
0: हिसाब
1: पित्त
0: से।
1: कफ
0: जी।
1: हमने डिवाइडेशन करके रखा हुआ है। अब एक सहज प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए।
0: हाँ जी।
1: इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है यह वात दोष का समय है।
0: अच्छा।
1: हमारे शास्त्र में स्पष्ट बताया हुआ है कि हमारे शरीर में जो पित्त है, जो कफ है, हमारी जो 37 धातुएं हैं, वो सब के सब पंगु है। इसको जो मूवमेंट देना है वो वात करेगा।
0: अच्छा।
1: तो जब आपके शरीर के मूवमेंट को, उसको गति देने का कार्य करना है, तो वात के कालखंड में वह गति देने का कार्य सबसे उत्तम रीति से हो सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: अर्थात जब हम जो धातु या जो व्यक्ति जिस समय बलवान है उससे उसी का कार्य कराना चाहिए।
0: सही बात है। जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: सरल सहज भाषा में, तो जब हमारा वात बलवान है तो हमको वात का कार्य कराना चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो जब हमको गति देने का कार्य है इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे यहाँ वात भी 5 प्रकार की है, पित्त भी 5 प्रकार के है और कफ भी 5 प्रकार के। ये उनके कर्मों के हिसाब से डिवाइडेशन है।
0: अच्छा। जी।
1: तो वात में हम बोलते हैं ना, हम पूजा करते हैं तो उसमें प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा।
0: जी।
1: तो इसमें जो अपान वायु है वो अपने शरीर से मल भाग को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको एक वेग आएगा और हमारा जो मल है उसको निष्कृषण करने में हमको सहायक
0: सहायता होगी।
1: होगी।
0: जी।
1: इसीलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसी तरीके से सोने का भी समय, रात्रि के समय हम जल्दी खाना और जल्दी सो जाना। जब हमारा पित्त का समय चल रहा है
0: जी।
1: और वात का समय, तब हमको शरीर को रेस्ट दे रहे हैं।
0: जी।
1: रात के खाने के बाद 100 कदम चलना, क्योंकि उसके बाद हमारा सारा शरीर शिथिल होने वाला है और
0: जी
1: फिर हमको सोना। ऐसा एक संतुलन बनाने का
0: जी
1: कार्य दोषों में बता के रखा हुआ है।
0: तो सर दिनचर्या में जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, अब उसके बाद हमारी एक आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए।
1: हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद हमारे इसमें जो नियम बताया हुआ है
0: जी
1: कि हमको शौच के लिए जाना है। सबसे पहला कर्म मैंने बताया कि
0: जी
1: ब्रह्म मुहूर्त के बाद
0: जी
1: हमको जो इच्छा है, तो उठने का क्या नियम बताया है, बहुत सरलता से बताया हुआ है कि रात्रि का भोजन पचा है या नहीं पचा है इसका चिंतन करना और उसके बाद में बिस्तर से पैर नीचे करना।
0: अच्छा।
1: कि अगर हमने लेट खाया है ना, तो हमको थोड़ा सा, एक बहुत अच्छा सा उसमें सम्यक रूप से बताया कि आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और सो जाइए,
0: अच्छा जी।
1: है ना। तो ये जो हम थोड़ा सा सोते हैं कि अलार्म बजने के बाद में हमको जो छोटी सी नींद आती
0: नींद
1: है उसकी
0: आती।
1: क्वालिटी अच्छी होती
0: जी
1: है,
0: जी ये तो
1: उसी
0: होता
1: तरीके से
0: है।
1: रात में जब हम इसका चिंतन करके हमको देखते हैं कि पेट थोड़ा भारी लग रहा है या ऐसा है और हम थोड़ा सा सो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी तेज होके फिर आपको हल्कापन शरीर में आता है।
0: अच्छा
1: आप
0: जी।
1: बिल्कुल प्रैक्टिकल इसको देख पाएंगे। और उसके साथ ही सवेरे उठते समय हमारे यहाँ कुछ नियम बताए कि कराग्र वस्ते करना है,
0: जी।
1: मतलब आपको हाथ जोड़ना है, हाथ में
0: हाथों
1: भगवान का आराधना,
0: जी
1: लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और उनको देखना है। उसके
0: जी
1: बाद हमको हाथ को रब करना
0: रगड़ना
1: है,
0: जी
1: रगड़ना
0: जी
1: है। हाथ को गर्म करने के बाद उसको आंखों पे सेक देना है,
0: जी
1: मतलब हमारा शरीर एक सामान्य तापमान पे कार्य करता है, उसको प्रकृति के साथ जब तालमेल आप बिठा लो तब आप धरती पे पैर रखो। तो उसके पहले हम धरती के विषय भी क्षमा मांगते हैं, विनम्रता का भाव लाते हैं, साथ में हम उस टेम्परेचर के साथ एकाकार होने के बाद में बिस्तर से उठ के बाहर जाते हैं, क्योंकि हम रात भर अपने शरीर को ढके हुए रहते हैं
0: जी।
1: और हमारा शरीर का एक तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है
0: जी। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कीजिए सर कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है।
1: ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो बहुत स्पष्ट बता के रखा है कि सूर्य उदय के 48 मुहूर्त पहले।
0: अच्छा जी।
1: मतलब घोर अंधकार वाला जो समय होता है 3:30 से 4 बजे का, 4-4:30 बजे का जो समय रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त वाला है, और उस समय हमको उठना चाहिए। इसमें
0: तो हम अब उठ गए और हम फ्रेश भी हो गए, उसके बाद फिर हमारी क्या दिनचर्या है?
1: इसके बाद में हमको अपना दंत धावन, अपने दांतों को जो मुंह में है, क्योंकि रात भर का जो भी कफ है
0: जी,
1: जो सिक्रेशंस हैं, जो हमने रात को भोजन किया है वो हमारे मुख में है और उस कफ का आवरण है। मैंने फिर बताया कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो कफ का कालखंड होता है।
0: अच्छा।
1: तो अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो सूर्योदय के बाद उठने के बाद आपके मुंह में एक कफ का आवरण मिलेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो कफ के आवरण का प्रमाण बहुत कम हो जाएगा।
0: अच्छा।
1: और आपके जितने मुख के रोग है उसमें कफ का आवरण रहेगा तो ही मुख के रोग बढ़ने वाले हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जिसके कारण हम बोलते हैं कि मंजन करना है। अब मंजन कैसे करना है, तो मंजन के लिए अपने शास्त्र में बताया कषाय चीज, जैसी चीज जो थोड़ी सी रूखीपन लेके आए, जो कफ का शमन करे।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए हमने दतून बताई है ना, हम राख की बात की, तो राख मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो कंडे की राख होती है उसको ऊपर के हटा के जो बीच का जो सफेद राख होती है उसका इस्तेमाल करना, और एकदम महीन
0: महीन जी,
1: है ना? उसको आप जब घुमाएंगे तो वो सारा कफ निकल जाएगा और उससे मुंह में एक सूखापन आपको समझ में आएगा, कफ का आवरण खत्म हो जाए। तो हमको मंजन उससे करके फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए।
0: तो सर जैसे आपने बताया कंडे की राख, और वो भी कंडा जो है वो मतलब बिल्कुल बारीक राख,
1: बारीक,
0: तो हर एक व्यक्ति को तो आज तो उपलब्ध नहीं है या वो अरेंज नहीं कर सकता, तो उसका कोई वैकल्पिक उपाय है?
1: वो एक प्रकार है, हमने उसका एक उदाहरण दिया था, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जैसे बबूल,
0: हाँ,
1: हम बोलते हैं
0: नीम
1: बबूल
0: है।
1: नीम है, बबूल है, इनके जो दांत होती है, आपका वज्रदंती है,
0: अच्छा
1: है ना?
0: जी जी,
1: इनका उपयोग होता है ना? तो ऐसे जो औषधि द्रव्यों के जो चूर्ण होते हैं उनके माध्यम से हम अपना मंजन कर सकते हैं। और एक सरल सा है कि हमारे यहाँ पहले मुख स्वच्छता में खाना खाने के बाद, पंगत में बैठने के बाद नमक से भी,
0: हाँ, जी, जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: नमक जो रहता है वो कफ के आवरण को हटा देता है,
0: हटा देता है जी।
1: पहले इसका लोगों ने मना किया, फिर टूथपेस्ट में नमक की मार्केटिंग करने लगे, तो वो आपको उस कफ के आवरण को हटाने वाली जो चीजें हैं उनको अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप अपने मुख को स्वस्थ रख पाएंगे। और ऐसा करना है कि वो इतने कड़े ना हो कि आपके मसूड़ों को और दांतों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए जितना सॉफ्ट और जितना महीन होगा उतना उसका ध्यान रखना है।
0: सर एक चीज और आती है कि ज्यादातर ऐसा आता है कि सुबह उठकर आपसे जितना भी पानी पीते बने कम से कम एक ग्लास आप पानी पिए, तो ये क्या दिनचर्या में होना चाहिए हमारे?
1: निश्चित रूप से हमारे यहाँ उषापान ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है।
0: अच्छा जी।
1: उषापान मतलब शरीर के तापमान का गुनगुना पानी हमको पीना है, ना ठंडा पीना है ना गर्म पीना है। प्रकृति के हिसाब से, जिसकी जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से हमारे पानी का प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, पर 1 लीटर एक गिलास से 2-3 गिलास तक पर्याप्त है, इससे अच्छा। ज्यादा पानी की
0: आवश्यकता
1: एक वयस्क व्यक्ति को
0: जी। तो ये आदत तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही डालानी चाहिए कि
1: उसके, आजकल बोलचाल में हम बहुत आसानी से बोलते हैं ना कि हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना है।
0: जी जी।
1: तो पानी की रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। तो उसके कारण भी हमको, क्योंकि सवेरे लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फायदा ही करेगा, पर शरीर तापमान का पानी लीजिए।
0: अच्छा, नहीं ना तो बहुत गर्म ना ठंडा। अब हमने मंजन कर लिया, उसके बाद अब दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है?
1: इसके बाद जो है हमको जो है आंखों का, कान नाक, इनकी स्वच्छता भी रखनी चाहिए, स्नान करना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: है ना। स्नान करने से उसका बहुत महत्व है कि उससे आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है।
0: अच्छा।
1: आपके शरीर में लाघवता आती है, प्रसन्नता आती है, और आपका जो फ्रेश तो स्वाभाविक है हमारा जितना आलस्य उससे खत्म होता है, पेट की अग्नि भी दीप्त हो रही है, मतलब हमको उसके बाद भूख भी लगने वाली
0: अच्छा।
1: है, और हमारी दिनचर्या को एक अच्छा मिलना चाहिए। तो शरीर की स्वच्छता, लोकल हाइजीन जो हम मेंटेन करते हैं, जैसा ओरल हाइजीन हमने मेंटेन किया,
0: जी
1: वैसे हमको जितनी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी स्वच्छ रखना चाहिए। और उसको स्वच्छ रखने के बाद स्नान, तो हमारे पूरे शरीर को स्वच्छ रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में हमको निश्चित रूप से जो अल्पाहार, तो उसके पहले हम भारतीय परंपरा में क्या करते हैं कि अपना जितना कार्य रहता है समर्पण से करते हैं, तो पूजा करते हैं या भगवान के सामने अपना शांत मन से जो सवेरे का अल्पाहार हमको करना चाहिए।
0: तो सर अभी तो हम जो चीज देखते हैं कि नाश्ता जो होना चाहिए वो बहुत हैवी हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद लंच जो हो आपका वो, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत आगे खसक गया है, लंच का लंच टाइम जो है वो 1:30 बजे 2 बजे वाला हो गया, तो वो लाइट हो जाए, बट जो सुबह का ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप अल्पाहार बोल रहे हैं, वो बहुत हैवी होना चाहिए। ये सही है ये कंसेप्ट या हमारे हिसाब से गलत है आयुर्वेद के हिसाब से?
1: सही गलत का विषय नहीं है, एरिया एरिया वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे। आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पे परंपरागत रूप से उनका जो सवेरे का नाश्ता रहता है वो बहुत हैवी रहता है।
0: जी जी पराठे, आलू के पराठे,
1: सब चीजें। हमारे यहाँ पे उतना हैवी नाश्ता हम नहीं करते
0: नहीं।
1: लेकिन इसमें सवेरे आपको कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में ही अन्न ग्रहण करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: हमारा कंसेप्ट बहुत सीधा है, हमको दोपहर का जो भोजन है वह 9:10 से लेके 12 बजे के बीच में, मैंने समय का कालखंड थोड़ा सा ज्यादा रखा है, लेकिन हमको इस बीच में हमको कर ही लेना चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो 12 बजे तक अगर आपका भोजन हो जाता है तो वो भोजन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। सादा सा नियम है कि दोपहर का भोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, रात का भोजन दोपहर के भोजन से कम होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: ऐसा एक हमारे यहाँ पे नियम है। दोपहर के भोजन के बाद हमको बाई करवट लेटना है।
0: अच्छा।
1: और रात के खाने के बाद हमको कम से कम 100 कदम चलना है, स्वस्थ रहने का ये नियम है। क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, हमारे शरीर की गति बनी रहती है, रात को हमको शिथिलता के ऊपर, तो खाना खाने के तुरंत इमीडिएट बाद नहीं सोना है, उसके 2 घंटे बाद सोना है
0: जी।
1: तो इस तरीके से हमारा भोजन का नियम है, सवेरे जो है वो कम मात्रा में, दोपहर का जो भोजन है वह थोड़ा सा अधिक मात्रा में, जो हमारी शरीर क्षमता के हिसाब से। और उसका भी नियम ये बताया हुआ है कि आपको जब भी भोजन करना है तो आपको आधा पेट भोजन से, 1/4 भाग पानी से और 1/4 भाग खाली रखना है।
0: अच्छा।
1: ऐसा एक कैलकुलेशन करना चाहिए कि हमको जितनी भूख है उसको हम जब खा रहे हैं तो पेट में इस तरीके की मात्रा हमको अन्न की रखना चाहिए।
0: जिस तरह से आपने दिनचर्या को बताया उसी तरह से आप हमें रात्रिचर्या के बारे में भी बताइए।
1: रात्रिचर्या का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 मुख्य सूत्र दिए हुए हैं। तो निंद्रा का महत्व इसी से सिद्ध हो जाता है। तो जब हम रात को सो रहे हैं तो नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात्रि भोजन के बाद में आपको कम से कम 100 कदम चलना है और 1.5 से 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाना है,
0: भोजन के जी
1: है ना। तो इससे हमारा जो भारीपन होता है पेट का वो भी कम होगा और रात में जो डाइजेशन की समस्या आने वाली है वो नहीं आएंगी।
0: अच्छा।
1: इसके साथ में हमारे यहाँ दिनचर्या में कुछ चीजें जुड़ी हुई थी। जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको पैर के तलवों पे घी और पानी की मालिश करनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: इसको तेल पे जितनी तेजी से उसको रगड़ेंगे उसके कारण हमारे दिन भर के जो पैरों की थकान होती है वो भी कम होती है और हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है। हमारा जो सोने का बिस्तर होना चाहिए वो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, सरल हो, बहुत ऊंची गर्दन, तकिया भी नहीं लेनी है
0: जी।
1: मुख्य रूप से हमको गर्दन पे सहारा देके सोना चाहिए
0: जी।
1: और जब हम सो रहे हैं तो शांत चित्त हो, इसीलिए फिर से बहुत सारे लोग उस समय हमारे इष्ट का ध्यान करते हैं
0: जी,
1: कि
0: जी।
1: आज हमने दिन भर में जो भी गलतियां की है उसकी क्षमा याचना करके हमको फ्रेश होने के लिए। तो जब आपका मन स्थिर होगा तभी आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी
0: जी।
1: तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको सोना चाहिए। तो और हमारे पैरों के मैंने मसाज के बारे में आपको बता ही दिया, आंखों के में भी है कि हमको उसमें आई ड्रॉप वगैरह कुछ डाल लेना चाहिए तो दिन भर का जो हमारे आंखों पे स्ट्रेन है वो ठीक होता है। साथ में रात में सोते समय 1 से 2 बूंद नाक में गाय का घी अवश्य डालें।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हमारा जो नाक है वो हमारे मस्तिष्क का, सिर का द्वार ऐसा कहा गया है।
0: अच्छा।
1: और घी जो होता है वो धी धृति स्मृति आपके मस्तिष्क को ताकत देता है, तो आपके नींद को भी इम्प्रूव करता है और आपके पूरे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं उसको हेल्दी रखने में मदद करता है।
0: अच्छा।
1: तो इस तरीके से हम दिन भर के जितने प्रभाव को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ऐसे सभी चीजों को सम्मिलित करके रात को आराम से बिस्तर पे, नरम बिस्तर पे हमको सो जाना चाहिए।
0: तो सर उसमें भी एक चीज आती है कि बाएं करवट और दाएं करवट का क्या रोल रहता है इसमें?
1: ऐसा नहीं है, वो हर व्यक्ति का अपना अपना पैटर्न होता है।
0: अच्छा अच्छा
1: सीधा सो सकते हैं, दाएं सो सकते हैं, बाएं सो सकते हैं, और रात में व्यक्ति अपने करवट ले, पर वो सुखासन में होना चाहिए, उसके लिए सुख पूर्वक हो, ताकि उसका मस्तिष्क हमारी नींद जिसमें आए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी
0: जी
1: तो हम सम्यक रूप से रहेंगे। साथ ही हमारा जो रात में हम 6 घंटे की नींद हम बोलते हैं
0: जी,
1: तो ये 6 घंटे की नींद में हमारा शरीर को शांत होना चाहिए, मसल्स रिलैक्स हो जाए, अंदर के अंग रिलैक्स हो जाए, और इन नींद के बीच में एक गहरी नींद आती है,
0: जी
1: वो जो नींद होती है वो हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, उसमें हमारे विचारों का उहापोह नहीं रहता है
0: जी,
1: है ना। तो ऐसा जब शांत मन होता है तभी हमारी नींद की क्वालिटी को हम उत्तम मिलते हैं। जब सवेरे उठते हैं तब हमको हल्कापन लगना चाहिए, आसानी से आंखें खुलनी चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए,
0: हम खुश होके उठे,
1: खुश होके उठे, तो हम सम्यक नींद, एक अच्छी नींद जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें सामने हमको मिलती है, इसका चिंतन करना चाहिए।
0: चलिए सर, आपने आज इतनी आयुर्वेद का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है उसे समझाया, हमारी क्या दिनचर्या होना चाहिए, ये जो 5 पंच महाभूत है जिन्हें 5 तत्व जो कहा गया है, उनसे हमारा जो शरीर बना है, उनके साथ जो वात पित्त कफ इनका जो बैलेंस है वो हमारे शरीर में किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण और सार गर्भित जानकारी दी। सर आप यहाँ आए, अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने ज्ञान में से मैं जितना आपके समक्ष बोला हूँ उससे आपके श्रोताओं को स्वास्थ्य का लाभ होगा, यही इच्छा के साथ में आप सभी को प्रणाम।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि स्वास्थ्य लाभ करने के लिए स्वामी जी हिमालय की यात्रा पर गए थे। वे अल्मोड़ा से उत्तर प्रदेश होकर पंजाब गए और फिर कश्मीर की तरफ चल पड़े। सेवियर दंपति भी उनके साथ जाने वाले थे, पर श्रीमान सेवियर की तबीयत बिगड़ जाने पर वे दोनों मरी में ही रुक गए। उन्होंने अगली यात्रा के लिए स्वामी जी को 800 रुपए भिजवा दिए, परंतु स्वामी जी ने अपने एक दोस्त से कहा,
1: योगेश, हम लोग तो फकीर हैं, इतने रुपए लेकर क्या करेंगे, रहने से ही खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा होगा कि आधा ही लेकर बाकी लौटा दूं, इतने से ही मेरे तथा मेरे संगियों के भ्रमण का खर्च पूरा हो जाएगा।
2: मैरी से तांगे पर सवार होकर 8 सितंबर को वे बारामुल्ला पहुँचे और वहाँ तांगे को छोड़कर तुरंत ही श्रीनगर जाने के लिए नाव में चढ़ गए। कई मायने में ये नौका भ्रमण बड़ा ही आनंददायी था। 10 सितंबर को श्रीनगर पहुंचकर वे लोग कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश श्री ऋषिवर मुखोपाध्याय के घर अतिथि बने। मुखोपाध्याय महाशय ने अपने स्वभाव सुलभ, अतिथि परायणता के चलते स्वामी जी के लिए हर प्रकार की सुविधा की व्यवस्था कर दी। इसी सुअवसर का लाभ उठाकर वहाँ के निवासियों ने भी उनके विद्वतापूर्ण, उदार और सरल वार्तालाप को सुनकर स्वयं को धन्य माना।
0: 13 सितंबर को वे राजप्रसाद देखने गए। वहाँ दो उच्च पदस्थ राज कर्मचारियों ने उनका सप्रेम स्वागत किया और उनमें से एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें बताया कि राजा के भाई तथा सेनापति राजा राम सिंह अगले दिन उनका दर्शन पाने के उत्सुक हैं। तदनुसार अगले दिन उन्होंने महाराजा के भाई राम सिंह के साथ भेंट की। महाराजा उस समय जम्मू में थे। राम सिंह ने स्वामी जी के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करते हुए उन्हें कुर्सी पर बैठाया और स्वयं मित्रों एवं कर्मचारियों के साथ नीचे बैठे। वहां पर स्वामी जी ने धर्म, हिंदुओं की विभिन्न समस्याओं और उनकी उन्नति के उपाय के विषय में 2 घंटे तक महत्वपूर्ण तथा मनमोहक चर्चा की। इस पर मुग्ध होकर राम सिंह ने कहा कि वे भी स्वामी जी की योजनाओं को रूप देने में यथासाध्य सहायता करने को प्रस्तुत हैं।
2: श्रीनगर के अनेक साधु, पंडित, विद्यार्थी, राज कर्मचारी और जिज्ञासु लोग स्वामी जी के व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर उनके निवास स्थान पर आया करते थे। प्रातः और संध्या के समय प्रायः ही धर्म चर्चा और उसके बाद संगीत आदि होता था। शंका समाधान के लिए आने वाले अधिकांशतः कश्मीरी या पंजाबी लोग होते थे, इसलिए चर्चा हिंदी या अंग्रेजी में हुआ करती थी। सभी आगंतुक उनसे वार्तालाप करके संदेह मुक्त एवं खुश लौटते थे। एक बार आने से ही किसी का जी नहीं भरता, पूछने को कुछ न कुछ बाकी रह जाने से, और केवल उनका दर्शन मात्र करने और उनकी मधुर बातें एवं संगीत सुनने के लिए ही लोग बारंबार आया करते।
0: स्वामी जी स्वयं भी भूस्वर्ग कश्मीर की इस सुंदर नगरी के सुंदर परिवेश तथा शीतल जलवायु के बीच रहकर काफी आनंद का अनुभव कर रहे थे। राजा अमर सिंह के वजीर क्रमशः उनके भक्त हो उठे और राजा के आदेश पर उन्होंने स्वामी जी के लिए एक हाउस बोट की व्यवस्था कर दी। इसके बाद से अवसर पाते ही स्वामी जी उस पर घूमने जाते। नैसर्गिक सौंदर्य का भंडार कश्मीर में झील के सतह पर नाव में निवास तथा भ्रमण करने में सचमुच अपना एक अलग ही माधुर्य था। बीच में स्वामी जी नौका में सवार होकर आसपास के स्थानों का भ्रमण भी करने जाते तथा बाजार में घूमते तथा कश्मीरी वाद्य संगीत या गाने कंठ संगीत सुनते।
2: इसी प्रकार 20 सितंबर को उन्होंने पामपुर नामक स्थान पर जाकर वहां केसर के खेत देखे और रात को वहीं रुके। 22 तारीख को उन्होंने अनंतनाग एक और बीज बिहार का मंदिर देखा। अगले दिन पैदल ही मारतंड नामक स्थान में जाकर उन्होंने वहाँ के पंडितों के साथ धर्म चर्चा की। वो रात स्थानीय विश्रामागार में बिताकर 24 सितंबर को वे अक्षय बल नामक स्थान की ओर रवाना हुए। मार्ग में अवंतीपुर के निवासियों ने अत्यंत आग्रह पूर्वक उन्हें एक अत्यंत प्राचीन पांडवों का मंदिर दिखाया। किंवदंतियों के अनुसार ये मंदिर पांडवों के समय का है।
0: स्वामी जी ने घूम घूम कर उस सुंदर मंदिर का गठन, उसकी नक्काशी और पत्थर पर खुदाई से बनी जाली का काम देखा। मंदिर पुराना था। स्वामी जी के साथ लाटू महाराज भी थे। दोनों में अक्सर नोकझोंक और हंसी मजाक हुआ करती थी। मंदिर देखने के बाद लाटू महाराज ने स्वामी जी से पूछा,
3: क्यों, क्या ख्याल है, मंदिर कितना पुराना होगा?
1: ये तो कम से कम 2000 साल पहले बना होगा। ये नक्काशी का काम अति दुर्लभ है।
3: क्यों, ऐसा क्या है इस मंदिर में? और तुम कैसे कह सकते हो कि ये 2000 साल पुराना है?
1: तुम ठहरे अनपढ़ गंवार, तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो आगे बढ़ो, और हो भी अगर विद्वान तो मेरे जैसे मूर्ख को समझ नहीं सकते।
0: सब लोग हंस पड़े।
2: दोनों में गहरी दोस्ती भी थी। श्रीनगर में वे लोग एक हाउस बोट में रहने गए। लाटू महाराज ने देखा कि बोट पर मांझी लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा,
3: ए नरन, ए तुम जाओ उस हाउस बोट में रहने, मैं नहीं जाऊंगा।
1: क्यों, चलो ना, बहुत मजा आएगा, झील में तैरेंगे, ऐसा और कहीं मिलेगा नहीं।
3: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
1: बात क्या है, साफ साफ कहते क्यों नहीं?
3: इन नावों में मांझियों के परिवार भी रहते हैं, इन औरतों के साथ एक ही नाव पर मैं नहीं रह सकता भाई।
1: ओह तो ये बात है, अरे तू अकेले थोड़े ही रहेगा, मैं हूँ ना, मेरे रहते तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
0: लाटू महाराज आश्वस्त होकर बोट में रहने के लिए तैयार हो गए।
2: काश्मीर और श्रीनगर स्वामी जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा है,
1: इस प्रदेश की जो प्रशंसा सुनने में आती है वो सत्य है, इतना सुंदर स्थान दूसरा नहीं है, और लोग भी देखने में सुंदर हैं। यहाँ के सौंदर्य की सब बातें लिखकर क्या होगा, मेरी समझ में यही एकमात्र स्थान योगियों के अनुकूल है। मैंने काफी भ्रमण किया है, परंतु ऐसा देश मेरे देखने में नहीं आया।
2: वहाँ के सौंदर्य पर मुग्ध होकर भी स्वामी जी लिखना नहीं भूले कि काश्मीर के लोगों का जीवन स्तर काफी नीचा है, पर हाँ पूरे भारतवर्ष के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। पत्र में लिखित अन्य ज्ञातव्य बातें ये हैं कि स्वामी जी ने काश्मीर के द्रष्टव्य स्थानों के अवलोकन और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु 1 महीने तक पानी में भ्रमण करने का संकल्प किया था। काश्मीर में उनके संगी थे सदानंद, कृष्णलाल और लाटू निरंजन, दीनू और खोका। उन्होंने निश्चित किया था कि पहाड़ से उतरते ही वे दल के परवर्ती 4 लोगों को कलकत्ता वापस भेज देंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य संभव नहीं है, बल्कि 20-25 दिन के भीतर शुद्धानंद, सुशील और हरिप्रसन्न को उन्होंने अम्बाला भेज देने को लिखा था।
1: इस समय राजा साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनके मंझले भाई सेनापति यहाँ है। उनकी व्यवस्था में एक व्याख्यान का आयोजन चल रहा है, जैसा होगा बाद में लिखूंगा। 2 दिन के अंदर यदि हो तो मैं ठहरूंगा, नहीं तो भ्रमण करने निकल पड़ूंगा। सेवियर मेरी में ही है, टांगों के झटकों से उनका शरीर बड़ा ही अस्वस्थ हो गया है। काश्मीर सरकार ने अपना एक बजरा मुझे उपयोग करने को दिया है, ये काफी सुंदर तथा आरामदायक है। उन्होंने जिले के तहसीलदारों को भी आदेश जारी कर दिया है। हमें देखने के लिए लोग सदल बल यहाँ आ रहे हैं, और हमें सुखपूर्वक रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है सब कर रहे हैं।
0: श्रीनगर लौटने के बाद स्वामी जी का पुनः जनसाधारण के साथ मिलना जुलना तथा आनंदपूर्ण वार्तालाप आदि चलने लगा। बीच बीच में वे संभ्रांत लोगों के घर से भोजन के लिए निमंत्रण भी पाते थे। ऐसे अवसर पर गृहस्थगण प्राचीन रीति से उनके प्रति अतीव सम्मान व्यक्त करते तथा यत्नपूर्वक सारी व्यवस्था करते। एक बार एक अभिजात परिवार से निमंत्रण पर वहाँ संवेद ब्राह्मण पंडितों ने पुष्प वर्षा की तथा मालाओं से विभूषित कर उनका स्वागत किया, और भोजनोपरांत साथ साथ आकर उनके निवास स्थान तक पहुँचा गए।
2: इस तरह की घटनाओं से ये समझा जा सकता है कि स्वामी जी अपने देशवासियों की कैसी हार्दिक श्रद्धा पाने में समर्थ हुए थे, और इस घटना के साथ पूर्ण वर्णित दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के उनके तथा कथित बहिष्कार किए जाने वाली घटना से तुलना करने पर ऐसा लगता है कि जिनके दिमाग में प्रगति को रोकने की दुर्बुद्धि का उदय होता है, वे लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितने ही प्रकार के दुराचरण में लिप्त हुआ करते हैं।
0: क्रमशः उनके कश्मीर से विदा लेने का समय आ पहुंचा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही उन्होंने श्रीनगर से नाव में प्रस्थान किया और वुलर झील को पार करते हुए बारामूला में जा पहुंचे। वहां से तांगे में सवार होकर 8 अक्टूबर की शाम को वे मरी आए। यहां पर उनका अपने पूर्व रचित पंजाबी तथा बंगाली अनुरागियों के साथ पुनर्मिलन हुआ। सेवियर दंपत्ति तब भी वहीं थे, उनके साथ भी भेंट हुई। 14 अक्टूबर की रात को स्थानीय लोगों ने उनका अभिनंदन किया, और इसके उत्तर में उन्होंने एक मनोहारी भाषण दिया। उस समय वे निवारण बाबू के मकान पर ठहरे थे और सभा भी वहीं हुई थी।
2: मरी से 10 अक्टूबर को अपने पुत्र द्वारा उन्होंने ब्रह्मानंद को सूचित किया था कि हरि प्रसन्न संभवतः शीघ्र ही अंबाला पहुंचेंगे, क्योंकि सेवियर यथाशीघ्र हिमालय में पूर्व कल्पित आश्रम की स्थापना करने को उत्सुक हैं। भूमि चयन और गृह निर्माण आदि विषयों में हरि प्रसन्न महाराज को विशेष अनुभव था। पहले वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके थे। उसी पत्र में श्री माता जी को 200 रुपए भेजने का अनुरोध भी है। उसी दिन एक अन्य पत्र में वे स्वामी अखंडानंद को एक अनाथ आश्रम स्थापित करने के लिए उत्साहित करते हुए लिखते हैं,
1: मुसलमान लड़कों को भी लेना होगा, परंतु उनके धर्म को नष्ट मत करना। हिंदू मुसलमान ईसाई आदि सभी जातियों के लड़के लो, परंतु प्रारंभ में धीरे धीरे, अर्थात उनके खाने पीने की थोड़ी अलग व्यवस्था हो और धर्म की जो सामान्य बातें हैं वही उन्हें सिखाना।
0: स्वामी जी के मन में उन दिनों कश्मीर में एक केंद्र स्थापित करने की इच्छा भी थी। श्रीनगर के 1 अक्टूबर को मार्गरेट नोबल को लिखित उनके पत्र में है,
1: तुम्हारे समक्ष में कश्मीर का वर्णन करने का प्रयास नहीं करूंगा। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि केवल इस भूस्वर्ग के अलावा कोई भी प्रदेश छोड़कर आने में मेरा मन दुखी नहीं हुआ। यदि संभव हुआ तो राजा को सहमत करके यहाँ पर एक केंद्र स्थापित करने का यथासंभव प्रयास कर रहा हूँ।
0: जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह से भेंट के दौरान संभवतः उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, परंतु प्रताप सिंह उस समय ब्रिटिश राज के नाराजी के फलस्वरूप सिंहासनच्युत होने के कारण वस्तुतः कुछ नहीं कर पाए थे। उत्तर पश्चिमी भारत के अन्य स्थानों में भी उनकी केंद्र स्थापित करने की इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने आलम बाजार मठ से सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को पंजाब एवं राजपुताना में बुलवाया था, परंतु उनके जीवन काल में कहीं भी केंद्र स्थापित नहीं हो पाया। तथापि जो बीज वे उस धरती पर बो आए थे वो अमर था और बाद में वो अंकुरित होकर फला फूला और अब भी हो रहा है। अस्तु 16 अक्टूबर को प्रातःकाल 9 बजे तांगे पर मरी से रवाना होकर शाम को 5 बजे वे रावलपिंडी जा पहुंचे।
2: 16 अक्टूबर को स्वामी जी के रावलपिंडी पहुंचने पर वहां के वकील लाला हंसराज साहनी ने उनका अपने घर पर सप्रेम स्वागत किया। उस समय उनके साथ केवल स्वामी सदानंद और स्वामी अच्युतानंद ही थे, क्योंकि इसके पूर्व ही वे निरंजनानंद, अद्भुतानंद, सचिदानंद और कृष्णालाल को जयपुर भेजने की व्यवस्था कर चुके थे। वकील महाशय के घर पर स्वामी जी के आर्य समाज के स्वामी प्रकाशानंद के साथ वार्तालाप करके विशेष आनंदित हुए। उस समय न्यायमूर्ति नारायण दास, भगत राम और भी अनेक शिक्षित लोग वहां उपस्थित थे।
0: यहीं से उनकी व्याख्यानों के द्वारा प्रचार कार्य की शुरुआत हुई। रावलपिंडी में 2 दिन बीतते ही 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे श्रीयुत सुजन सिंह के मनोरम बागीचे में उनसे व्याख्यान देने का अनुरोध किया गया। न्यायमूर्ति नारायण दास के प्रस्ताव तथा लाल हंसराज के अनुमोदन पर सुजन सिंह सभापति बने। सभा में लगभग 400 श्रोता आए थे और स्वामी जी ने 2 घंटों तक हिंदू धर्म पर एक सुदीर्घ, बुद्धितापूर्ण तथा प्रेरक व्याख्यान दिया। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य विषय की व्याख्या तथा समर्थन करते हुए वेद आदि ग्रंथों से अनेक उद्धरण दिए और कभी वे वीर मुद्रा में आत्मा की अनंत महिमा तथा सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख करके श्रोताओं के हृदय में महातेज एवं शक्ति का संचार करने लगे, तो कभी सामाजिक कपटाचार के विरुद्ध कठारे व्यंगों का प्रयोग करते हुए श्रोताओं के बीच हास्य की धारा बहाने लगे। सभा में उपस्थित एक अंग्रेज भक्त ने बाद में बताया था,
4: मस्तक पर तथा गले में फूलों की माला से सुशोभित स्वामी जी अपने अभ्यास के अनुसार कभी मंच पर टहलते तथा कभी पत्र पुष्प व मालाओं से मंडित एक खंबे का सहारा लेकर व्याख्यान दे रहे थे। गैरिक वस्त्रों तथा कमरबंद से पोषित होकर उस समय वो किसी यूनानी देव मूर्ति के समान लग रहे थे। फिर पगड़ी पहने अधिकांश श्रोताओं के जमीन पर बैठे रहने और डूबते सूरज की लालिमा से पूरा दृश्य अद्भुत सुंदर हो उठा था।
2: इन दिनों स्वामी जी प्रचार कार्य में कितने व्यस्त थे, इसकी झलक देने के लिए हम स्वामी अच्युतानंद की डायरी से कुछ अंश सुनाते हैं।
3: अरे 17 अक्टूबर को हंसराज का मकान प्रातः काल आगंतुक सज्जनों के साथ चर्चा, तदुपरांत भोजनार्थ छावनी में निमाई बाबू के घर गमन, वहाँ एकत्र बंगाली लोगों के साथ वार्तालाप और लगभग 3 बजे वहां से लौटे। हाँ, अरे थोड़ा विश्राम करने के बाद व्याख्यान देने के लिए सृजन सिंह के घर उद्यान में गमन किया और भाषण के बाद निवास स्थान पर वापस लौटकर एक व्यक्ति को उन्होंने साधन रहस्य पर उपदेश दिया और रात को भगत राम की कोठी पर निमंत्रण था और साथ में न्यायाधीश प्रकाशानंद हंसराज भी गए और वहाँ भोजन किया और वहां से रात 10 बजे अपने निवास स्थान पर लौटे। रात के 3 बजे तक प्रकाशानंद के साथ चर्चा की।
0: उन दिनों की घटनावली हमें विभिन्न लोगों के संस्मरण और डायरियों से पता चलती है। रावलपिंडी में वे कई दिनों तक रुके और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। उनके अगले कुछ दिनों का कार्यक्रम ऐसा रहा।
2: 18 अक्टूबर के दिन प्रातः काल भी राय नारायण दास, बाबा क्षेम सिंह के पुत्र और प्रकाशानंद के साथ चर्चा हुई। आहार के उपरांत विश्राम करने के बाद उन्होंने बताया कि पिछले दिन से उनके सिर में दर्द है और इस समय काफी बढ़ चुका है, फिर भी वे हंसते हुए ही बातें करते रहे, बाहर के लोग कुछ समझ ही न सके। संध्या के पूर्व उन्होंने जज साहब और क्षेम सिंह के पुत्र द्वारा लाई गई बग्घी में भ्रमण किया। रात में उन लोगों के साथ ही भोजन किया और आर्य समाज एवं मुसलमानों के संबंध में अनेक शंकाओं का समाधान किया। रात के 11 बजे वे अपने निवास स्थान पर लौटे।
0: 19 अक्टूबर को प्रातः काल उन्होंने सेवियर दंपत्ति के निवास पर जाकर उन लोगों के साथ बातचीत की। बाद में प्रकाशानंद के साथ स्थानीय बंगाली लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित कालीबाड़ी में जाकर प्रसाद ग्रहण किया और भोजन उपरांत एक सिख सज्जन के साथ काफी देर तक धर्म चर्चा की। इस चर्चा के दौरान अनेक बंगाली सज्जन भी उपस्थित थे। संध्या के बाद उक्त कालीबाड़ी में ही स्थानीय प्रवासी बंगाली लोगों की एक छोटी सी सभा में स्वामी जी ने स्वदेश के कल्याण के उपायों के विषय में अनेक मनोहर उपदेश दिए। रावलपिंडी में उनके इस प्रवास के सुयोग से अनेक लोग हंसराज के मकान अथवा सेवियर दंपत्ति के निवास स्थान पर उनसे मिलकर वार्तालाप करते तथा उनके उपदेश सुनकर कृतार्थ हो जाते। ऐसे प्रसंग उठने पर स्वामी जी को समय का बोध नहीं रह जाता था और अन्य लोग भी बाकी सब कुछ भूलकर उनकी बातें सुनते रहते, इसीलिए ये बैठक काफी लंबी हुआ करती थी। इनके बैठकों के दौरान कुछ भावुक लोगों के अजीब व्यवहार भी कभी कभी दिख पड़ते थे। रावलपिंडी से प्रस्थान के दिन 20 अक्टूबर मध्याह्न भोजन के पश्चात वे कुछ जिज्ञासुओं तथा मित्रों के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय एक बंगाली सज्जन के अनुरोध पर स्वामी जी के एक गुरु भाई वहां एक फिटन गाड़ी लेकर आए और बताया कि वे सज्जन बीमार हैं तथा स्वामी जी का दर्शन करने के इच्छुक हैं।
1: हाँ हाँ चलो भाई, माफ करना, मुझे जाना होगा। चलो, कहाँ चलना है? प्रकाश तुम भी चलो।
5: स्वामी जी प्रणाम। मैं उठ चल नहीं सकता, इसीलिए आपको यहाँ आने का कष्ट दिया।
1: नहीं भाई, कष्ट किस बात का, तुम बीमार हो।
5: स्वामी जी, मेरे मन में भगवान और धर्म को लेकर कई प्रश्न उठते रहते हैं। मैं जीवन भर धर्म के पथ पर चला हूँ, ये मेरी दुर्गति क्यों हुई? मुझे तो भगवान पर से ही विश्वास उठ गया है। भगवान मगवान कुछ नहीं है, सब झूठ है। आप ही कोई रास्ता बताएं।
0: स्वामी जी द्वारा उन सभी प्रश्नों के एक एक कर युक्तिपूर्ण समाधान कर देने पर उस सज्जन का संदेह दूर हुआ और उन्होंने अपने को कृतार्थ समझा। इसके बाद उन्होंने स्वामी जी तथा उनके संगियों को किंचित जलपान कराकर रात के 8:30 बजे कृतज्ञता पूर्वक विदा किया। इसके बाद हंसराज के घर पर रात का भोजन समाप्त कर स्वामी जी कालीबाड़ी गए और कश्मीर के महाराजा का आमंत्रण स्वीकार कर जम्मू जाने के लिए रात के 12 बजे ट्रेन में सवार हुए।
2: 21 अक्टूबर को 12 बजे जब वे जम्मू स्टेशन पर उतरे तो एक राज अतिथि के अनुरूप उनका स्वागत हुआ और राज्य की ओर से सत्कार विभाग के प्रमुख श्री महेश चंद्र भट्टाचार्य ने अपने पुत्रों के साथ उनकी देखभाल का भार ले लिया। अगले दिन स्वामी जी राजकीय पुस्तकालय देखने गए और बाद में उन्होंने महेश बाबू के गुरु स्वामी कैलाशानंद आदि अनेक पंजाबी सज्जनों के साथ धर्म चर्चा की। महेश बाबू के साथ कश्मीर में एक मठ स्थापित करने के विषय में भी बातचीत हुई।
0: 22 अक्टूबर को 12 बजे वे राजकीय बग्घी में सवार होकर राजा प्रसाद में एक और महाराजा के साथ भेंट की। इस मुलाकात के समय महाराजा के दो भाई तथा राज्य के कई प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वामी जी के अपने लिए निर्दिष्ट आसन पर बैठे जाने पर महाराजा ने वार्तालाप आरंभ करते हुए संन्यास का प्रसंग उठाया और स्वामी जी ने उसका समुचित उत्तर दिया। क्रमशः भावी नाचार तथा निरर्थक अनुष्ठानों की बात उठी और स्वामी जी ने अकाट्य युक्तियों के आधार पर बता दिया कि किस प्रकार भारतवासी धर्म के मूल तत्वों के प्रति अज्ञानी रहकर केवल बाहरी क्रियाकलापों से चिपके रहने के कारण क्रमशः अपना बल, वीर्य एवं स्वतंत्रता खो चुके हैं और लकीर के फकीर होकर अंधविश्वासों को धर्म के आसन पर स्थापित कर सैकड़ों वर्षों से दूसरों का दासत्व स्वीकार कर बैठे हैं और उसमें पीछे जा रहे हैं।
1: आजकल वास्तविक पाप आचरण के कारण कोई समाज से बहिष्कृत नहीं होता, परंतु भोजन आदि के विषय में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर मानो समाज के सम्मुख घोर संकट उपस्थित हो जाता है। आजकल समुद्र यात्रा करने पर तरह तरह की आलोचनाएं होती हैं। वे भूल जाते हैं कि श्री रामचंद्र समुद्र पार करके ही लंका गए थे। आजकल ब्रह्म देश, श्रीलंका, बाली, मलाया, थाईलैंड आदि देशों में बहुत सारे भारतवंशी वाणिज्य व्यापार में लगे हुए हैं। वे उन देशों में कैसे पहुंचे? समुद्र पार करके ही ना, उनकी तो जान नहीं गई। भारतीयों को बाहर निकलना होगा। दुनिया का भ्रमण किए बिना वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती।
2: अंत में यूरोप और अमेरिका आदि देशों में वेदांत प्रचार की उपयोगिता और सफलता की बात समझाते हुए अपने कार्य की धारा एवं उद्देश्य आदि का वर्णन करते हुए उन्होंने सबको बताया कि देश के कल्याणार्थक वे अपनी मुक्ति की अभिलाषा त्याग कर बल्कि नरक भी जाने को प्रस्तुत हैं और वे किसी भी बाधा विपत्ति के भय से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगभग 3 बजे ये वार्तालाप समाप्त हुआ। कहना न होगा कि महाराजा स्वामी जी के तेज, साहस, पांडित्य, प्रतिभा भविष्य के लिए अद्भुत कार्य योजना, स्वधर्म एवं स्वदेश के प्रति प्रेम, उदार दृष्टिकोण और अपूर्व वाग्मिता का परिचय पाकर विशेष रूप से संतुष्ट हुए थे। उसी दिन स्वामी जी बग्घी में सवार होकर छोटे राजा के नए भवन में गए। राजा ने उनका सप्रेम स्वागत किया और थोड़ी देर तक उनके पास बैठकर उनके उपदेश सुने।
0: अगले दिन सियालकोट से कुछ लोग आए और स्वामी जी से वहां जाने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसी दिन शाम को उन्होंने जम्मू की जनता के सम्मुख जो व्याख्यान दिया, उस पर महाराजा इतने आनंदित हुए कि उन्होंने स्वामी जी से अगले दिन भी एक व्याख्यान देने का अनुरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वो भी अनुरोध किया कि स्वामी जी 10-12 दिन जम्मू में रहकर लोगों के कल्याणार्थ एक एक दिन के अंतर पर भाषण दें।
2: भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से व्याख्यान बड़े ही हृदयग्राही और उत्साहपूर्ण हुए थे और अपने वक्तव्य को व्यक्त करने के लिए स्वामी जी ने हिंदी भाषा का इतने सुंदर ढंग से उपयोग किया था कि गुणग्राही महाराजा ने स्वामी जी से उसी भाषा में कुछ लेख लिखने का अनुरोध किया था और स्वामी जी ने वैसा ही किया। उन लेखों को पढ़कर महाराजा ने स्वामी जी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में उन दिनों पंजाब में जो अभाव दिख पड़ता था, इस विषय में भी उन्होंने खेद व्यक्त किया। उस दिन शाम को जो जनसभा हुई थी उसमें महाराजा के आने की बात थी, परंतु वे नहीं आ सके। 28 अक्टूबर को प्रातः भ्रमण कर निवास स्थान पर लौटने के बाद उन्होंने समाज शास्त्र पर चर्चा करते हुए अनेक गूढ़ तत्वों की चर्चा की। उसका सार मर्म इस प्रकार है।
1: सबके लिए भोग के समान अवसर होना चाहिए। वंशगत या गुणगत जाति भेद के अनुसार जो भोग अथवा अधिकार का फर्क रहने के बावजूद उसमें कुछ गुण भी हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति चाहे जितना भी गुणवान या धनवान क्यों ना हो, वंशगत जाति को मानने से वो अपनी जाति का परित्याग नहीं कर सकता। अतः उसके गुण तथा धन का कुछ न कुछ अंश उसकी जाति को भी मिलता है। गुणवान जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता।
2: उन्होंने अपने बचपन का उदाहरण देते हुए कहा कि वे दरिद्रों की बस्तियों में जाकर उनकी भलाई का प्रयास किया करते थे। वैसे इस तरह की बातें स्वामी जी सबके सामने नहीं बोलते थे, केवल अंतरंग संगियों के मजलिस में ही कभी कभी कह डालते।
0: 29 अक्टूबर को वे राजा राम सिंह से विदा लेने गए और उन्हें बताया कि सियालकोट के मित्रों के दबाव के कारण उन्हें वहां जाना पड़ेगा और ज्यादा देर करना संभव नहीं। राम सिंह यह समाचार सुनकर दुखी हुए, परंतु उन्हें विदा करने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे जब भी जम्मू या कश्मीर आए तो राज का आतिथ्य स्वीकार करें,
2: और स्वामी जी सियालकोट की तरफ चल पड़े।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: देश के लिए
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।